लता जी तो कहते हैं कि तुम्हें इतना मानती हैं, लता जी तुम्हें उस्ताद समझती हैं, तुम्हें प्यार करती, ये सब मैं समझती हूँ, उनका बड़ापन है ना। लता तो लता है, लता जी की तरह मेरी नजर में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। लता जी को अल्लाह ने आवाज दी है, इल्म को उनके वालिद साहब से मिला, खुदा की तरफ से उनके कर्म है।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने मन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगी, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चली होंगी। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ।
1: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ और मैं आपके बीच ज्ञान की कुछ बातें लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं, आज का विषय है हमारा, क्या सर्वश्रेष्ठ परमात्मा सर्वव्यापी है? तो आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। बात यह है कि एक दिन एक सुबह हमारे घर के आगे सड़क पर मैंने कुछ लोगों के इकट्ठे समूह को देखे, तो मैंने व्यक्ति से पूछा कि वहां पर क्या हो रहा है। पूछे जाने पर उस व्यक्ति ने मुझे जवाब दिया कि कुछ नहीं मैडम।

उनके 7 साल के बच्चे को किसी ने मजाक में बंदर गधा कह दिया, तो इसे वे क्या की गंभीरता से लेकर झगड़ा कर रहे हैं। तो इस घटना का उल्लेख यहाँ पर मैं इसलिए कर रही हूँ कि हमारे घर के छोटे से बच्चे को किसी ने मजाक में अगर बंदर या गधा संबोधित किया तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और उस सर्वश्रेष्ठ सर्वेश्वर परम पवित्र परम पिता परमात्मा को हम हर जगह सभी जीव आत्माओं में, हम में, तुम में, सुअर में, मगरमच्छ में, कछुए में, सांप में और कण कण में हम व्याप्त मान लेते हैं। क्या ये उचित है? कई सवाल मन में उठते हैं, इस तरह के कई सवाल हमारे मन में उठते हैं। जरा सोचिए, मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार पवित्र आत्मा, पाप आत्मा, महात्मा, धर्म आत्मा, पुरुष, हाँ यहाँ तक कि पुण्य आत्मा, देव आत्मा कहलाता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर एक सर्वोच्च भगवान है तो वो हत्या, लूटमार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार आदि दुष्कृत्य कर सकता है क्या? प्रभु की महिमा सर्वोच्च है, सर्व के कल्याणी परमेश्वर द्वारा इस तरह के नीच कर्म संभव है क्या? यदि हम में परम पिता परमात्मा विराजमान है तो हम मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि का निर्माण करके पूजा, प्रार्थना, नमाज, वंदना इत्यादि क्यों करते हैं? यदि ऋषियों के अंदर भगवान है तो उन्हें भगवान की तलाश क्यों करनी चाहिए? और मन की शांति के लिए हिमालय में भटकना ही क्यों चाहिए? अगर प्रभु हम में ही है तो दुख, दर्द, बीमारी आदि होने पर उनको याद करने की क्या आवश्यकता है? स्वास्थ्य, धन, रोजगार, परिवार की खुशी, शांति और संतोष के लिए हम प्रार्थना क्यों करते हैं? ऐसे कई सवाल मन में अवश्य उठते हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आकर फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए।

तो स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में और हम अपनी चर्चा इसी तरह जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो भगवान को सर्वव्यापी मानना केवल एक अंधविश्वास ही है, फिर परमात्मा को सभी जीवों में उपस्थित मानकर और परमात्मा के कई अवतार मान लेना कहाँ तक उचित है? क्या वो परम पवित्र परमात्मा गंदगी खाने वाले सुअर में भी है, मांस खाने वाले मगरमच्छ में भी है, क्या वे जहरीले सांप में भी है? वास्तव में भगवान को सर्वव्यापी मानना केवल एक अंधविश्वास ही है। क्या वे कोटि कांटों पत्थरों और कण कण में है? हाँ, कण कण में भी है, जिन्हें रास्ते में हम खुद उठा के फेंकते हैं ताकि किसी को लग ना जाए। हाँ, ऐसे ही चर्चा करते हैं, करते हैं, चिंतन करते चले तो यहाँ सिद्ध होता है कि सर्वश्रेष्ठ जो सर्वोच्च परमात्मा को सर्वव्यापी कहना उनका बहुत बड़ा अपमान करना है और उनके अस्तित्व के प्रति असम्मान है। तो यहाँ पर अगर माना जाए कि पंचभूत कहलाने वाले वायु अग्नि जल पृथ्वी आकाश में परमात्मा है तो यह वायु तूफान बनकर अग्नि एक ज्वाला बनकर जल एक सुनामी बनकर पृथ्वी भूकंप बनाकर और क्या करती है? आकाश तत्व प्रदूषण द्वारा दुख क्यों दे रहा है? भगवान कौन है और उनका निवास स्थान कहाँ है? तो उपरोक्त चिंतन में हमें यह एहसास होता है कि सर्वशक्तिमान भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो हमें यह जानना अति आवश्यक है सर्वोच्च भगवान कौन है और उसका निवास स्थान कहाँ है। वेद शास्त्र पुराण

कृपा सागर क्षमा सागर कहकर उनकी महिमा करते हैं। जैसे यह स्थूल जगत शरीरधारियों का घर है, ऐसे ही अशरीरी अकाय अभोक्ता अयोनिज अजन्मी परमात्मा का निवास पांच तत्वों से परे सर्वोच्च घर परम धाम है, जिसे ब्रह्मा महातत्व या मूल वतन या शांति धाम भी कहा जाता है। हम सभी आत्माओं का सच्चा घर ही परम धाम है। तो हम कहाँ के निवासी हैं? परम धाम के हम निवासी हैं। हम आत्माओं का सच्चा घर कहाँ है? परम धाम ही है हमारा सच्चा घर। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर आकर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और आइए सुनते हैं इस गीत को

0: کو چلانے والا ہم کو چلے نہیں, جو اچھوت ہم کو سمجھے تو رکھیے چلے نہیں, جو اچھوت ہم کو سمجھے تو رکھیے چلے نہیں, جو اچھوت ہم کو سمجھے تو رکھیے چلے نہیں.
1: तो स्वागत है आपका फिर से ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में, और हम अपनी आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं. क्या सर्वश्रेष्ठ परमात्मा सर्वव्यापी है? तो भगवान जानी जाननहार है. अगर पिता के गुण स्वभाव और व्यक्तित्व पुत्र में होते हैं तो

पिता जैसा कहा जाता है, मगर पुत्र को ही पिता कहना अमान्य है। अगर हम उस परमात्मा की सर्वगुण शक्तियों को धारण कर लेते हैं तो उन जैसे महिमा योग्य बन सकते हैं, परंतु हमको ही परमात्मा कहना अनुचित है। कहा जाता है कि वैद्यो नारायण हरि, इसका मतलब यह है कि एक चिकित्सक नारायण की तरह है जो बीमारी रूपी आपदा में व्यक्ति की इलाज करता है, मगर चिकित्सक को ही नारायण नहीं कह सकते हैं। जब एक गुरु ने अपने एक शिष्य को एक केला देकर कहा कि उसे इसे वो मतलब उस जगह पर जाकर खाए जहाँ कोई देखने वाला न हो, तब शिष्य ने क्या कहा, भगवान न देखे ऐसा कोई भी स्थान नहीं है। मतलब भाव यही है कि सर्वोच्च भगवान सब कुछ जानने वाला है, जानी जाननहार है, सभी के कर्म विकर्म सुकर्म को जानने में सक्षम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे सभी में विराजमान है। मतलब इसी तरह कहा जाता है जिंदगी हमेशा एक स्कूल की तरह है, एक ऐसा स्कूल जहाँ कोई किताब नहीं होती, न ही कोई शिक्षक होता है, यह एक ऐसा स्कूल है जिसमें सभी शिक्षक भी होते हैं और सभी विद्यार्थी भी हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते हैं और हमेशा सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जिंदगी की इस पढ़ाई में परीक्षा नहीं होती, परीक्षा भी होती है। हर परिस्थिति एक परीक्षा ही तो है जिसमें हर कोई सफल नहीं हो पाता। इसमें सफल वही होते हैं जो अपनी सीखने की प्रक्रिया जारी रखते हैं। कुछ लोग परिस्थितियों से घबराकर क्या करते हैं, हार मान लेते हैं, क्योंकि उनमें सीखने की प्रक्रिया कम होती है, इसलिए हमेशा हारते रहते हैं। अपने आसपास रहने वाले को शिक्षक मानकर हर एक से सीखते रहना ही हमारी सफलता का राज है। हर एक में कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है, आवश्यकता है स्वयं की और दूसरों की विशेषताओं को जानने की, और प्रत्येक व्यक्ति और परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखने की। जब तक जीवन है सीखने की प्रक्रिया जारी रखिए और जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को सफलतापूर्वक पार करिए। जिंदगी की हर राह पर क्या है, एक दौड़ है। जिंदगी का ये तजुर्बा बेतोड़ और बेजोड़ है। तो इसी के साथ हम अपने आज के कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं, और तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। हम बात कर रहे हैं इन दिनों सेल्फ मैनेजमेंट की। बहुत सी मैनेजमेंट की चीजों को समझा था, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट में अभी तक हम अपनी जिंदगी की मैनेजमेंट कर रहे थे, लेकिन सेल्फ को मैनेज करना इन दिनों हम सीख रहे हैं।

0: और बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने जो है वो चीजें निकलती आ रही हैं। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझा कि मैं किस तरह से रिस्पॉन्ड करता हूँ, मेरी एबिलिटी क्या है किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने की, वो मुझ पर डिपेंड करती है। कहीं ना कहीं परिस्थिति हावी होती जब नजर आती है तब मेरा रिस्पॉन्स कैसा होता है उस सिचुएशन को लेकर, ये मेरी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आगे जानते हैं कि सेल्फ को मैनेज कैसे करना है। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सेल्फ को जब हमने आपसे बात करके इस प्रोग्राम के जरिए समझा कि इट गोज डीप इन यू नो, और अंदर का जो थॉट प्रोसेस था मेरा उसको मैनेजमेंट करने की समझी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा और आगे लेकर जाते हैं और कहाँ तक पहुंचेंगे।
1: हमने पहले भी देखा कि सेल्फ मैनेजमेंट हम चार पहलुओं पर करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर रिलेशनशिप्स, फिर हमारे रोल्स एंड हमारे रिसोर्सेस, जितनी हमारे पास शक्तियां हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने फिर पिछली बार देखा सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द आता तो हर एक के पास एक लिस्ट होती है कि वो किन किन लोगों के लिए और किन किन कहें कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। But their own name never comes on the list.
0: Oh, yes.
1: It never comes on the list. And I've been sharing this with a lot of people and then they just stare at you.
0: Mm-hmm.
1: Achha, responsible for the self. Mm-hmm. I thought I was responsible for children, husband, parents and whatever. You know, kai baar you're a social worker, you're responsible for a lot of other people. Or I'm responsible apni team ke liye. ऑफिस में आई एम रिस्पॉन्सिबल कि इतने टाइम में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। तो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर थी और डेफिनेटली क्योंकि सिंसियरिटी हमारी नेचर है तो जिन चीजों के लिए हम जिम्मेवारी लेंगे उन चीजों के प्रति हम अपना पूरा अपनी अपनी कैपेसिटी में, इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन हम अपनी पूरी एनर्जी पूरा अटेंशन उस पर लगाते हैं।
0: और मैक्सिमम लोगों को कहा भी जाता है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, यू नो, वेरी रिस्पॉन्सिबल मैन।
1: एंड जब हम कहते हैं आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, हम यही कह रहे हैं कि आप जो चीज उठाते हैं, जो
0: जिम्मेदारी
1: उठाते हैं, आप उसको बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। लेकिन फिर सबसे पहले जिम्मेवारी, अब क्या हुआ क्योंकि मेरे अपनी स्थिति की जिम्मेवारी वॉज नॉट कमिंग ऑन द लिस्ट, सो उसका रिजल्ट क्या हुआ, वी वर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दैट। सी, आपकी जिम्मेवारी मेरी लिस्ट पर थी तो आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ यू, लेकिन मेरी अपनी जिम्मेवारी, और जहां अपनी जिम्मेवारी भी आती है अगर बात, तो जिम्मेवारी क्या होती, फिजिकल नीड्स कि मुझे अपने शरीर का ध्यान रखना है, मुझे अपने खाना टाइम पर खाना है, ऑल दीज लिटिल थिंग्स, बट मुझे अपने मन की स्थिति रखना है, दिस जस्ट डजंट कम ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट, एंड द ओनली थिंग इज अबाउट पुटिंग इट ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी।
0: इनफैक्ट यू नो व्हाट हैज हैपेंड नाउ, आई थिंक हम सब दर्शक जिस जर्नी पर हैं वो भी हो रहा होगा कि पहले क्या होता था, जो हमें काम करते जाने हैं और कोई चीज जो है वो साथ साथ चलती जा रही है तो हम उसको ध्यान नहीं देते थे और हम उस पर काम अपना काम करते जाते थे
1: क्योंकि वो हमारी जिम्मेवारी है।
0: हाँ,
1: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, क्यों हम बार बार इसको रब इन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है कि जिस चीज को हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेंगे तो हम बाकी चीजों को पूरी तरह से इग्नोर करके उस चीज पर पूरा ध्यान देंगे। लेट्स से मेरा काम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ये टारगेट पूरा करना है, तो आप देखो अगर आपको खाना नहीं टाइम पे मिले कोई बात नहीं, सोने को टाइम पे नहीं मिले कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, क्यों, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन वो सब करने वाला कौन है, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम स्पिरिचुअलिटी में क्या होता, राजयोग हमें क्या सिखाता, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मतलब कहीं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से किनारा तो नहीं हो जाएंगे, या कहीं आप सिर्फ सारा दिन मेडिटेशन तो नहीं कर रहे कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं करेंगे। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर नहीं होंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिस्ट में
0: सबसे पहले मैं आ जाऊंगी,
1: मैं आ जाऊंगी, और मैं बेबी, मैं मतलब मेरी मानसिक स्थिति कैसी है, बिकॉज आफ्टर ऑल हम सब कुछ जो कर रहे हैं इट्स फॉर द डीप डिजायर फॉर हैप्पीनेस एंड लव, तो व्हाई नॉट पुट दैट एज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना हमें आता है, इसलिए वो सीखना नहीं
0: Very
1: है
0: true, you know.
1: पूरी तरह से निभाना हमें आता है, उसके लिए हम कुछ भी त्याग करने के लिए रेडी है वो भी हमें आता है कि एक बार मैंने कहा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई विल डू एनीथिंग टू फुलफिल दैट, दैट्स हाउ गुड वी आर एट दैट। सो सिर्फ उसमें एक ऐड करना है, दैट्स ऑल, कि मन की स्थिति को स्टेबल रखना ये मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये ठीक होगा तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब क्या हो रहा था, काम करना है भले मैं अपसेट हो गई,
0: ओ आदतें हो चुकी है मुझे, हाँ। इतनी आदत

0: क्योंकि मैं अपसेट हूँ, सब कुछ है, लेकिन मुझे काम तो करते जाना ना, मुझे सबके लिए कुछ कुछ जो जो चीजें करनी है वो करते जाना।
1: अब जैसे आपने भी कहा, लेट्स से फैमिली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वर्क एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन दोनों में भी हम प्रायोरिटाइज करेंगे ना तो फैमिली ऊपर आती है। तो सपोज आप वर्क पे गए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सपोज आपको बीच में कुछ मैसेज मिला कि घर पे ऐसा कुछ हुआ है, आपको आना है, तो आप इधर इम्पोर्टेंट भी होगा तो भी इसको आप छोड़कर आप उधर जाएंगे, यू विल टेल योर टीम आई एम सॉरी बट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव टू गो। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत क्लियरली प्रायोरिटाइज होती है।
0: माई प्रायोरिटी इज देयर,
1: प्रायोरिटी तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरे जीवन की क्या प्रायोरिटीज है। तो जैसे फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसे ही मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। तो अब इसमें एटलीस्ट जैसे वर्क और फैमिली को करने में कई बार लोग एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि ऑफिस में भी आज काम है लेकिन आज मेरे बच्चे की भी तबीयत ठीक नहीं है, व्हाट डू आई डू। यू नो, वहां भी जाना बहुत जरूरी है, यहाँ भी रहना बहुत जरूरी है, सो दे काइंड ऑफ गेट इनटू अ लिटिल कॉन्फ्लिक्ट के व्हाट डू दे डू। पर जहां तक अपने प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स नॉट अबाउट टेकिंग आउट टाइम, इट्स जस्ट अबाउट टेकिंग केयर व्हाइल डूइंग एवरीथिंग। इसलिए आप कभी भी इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएंगे कि अपना ध्यान रखो या काम का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो या बच्चों, नो दैट विल नेवर हैपन। सिर्फ करना क्या है, अपना ध्यान रखते हुए इनका ध्यान रखना है,
0: दैट्स ऑल। एंड हैपनिंग यू नो, बिकॉज समवेयर द मोमेंट यू स्टार्ट नाउ व्हाट हैज हैपन्ड विद मी, मेरे साथ, मैं अपने सभी दर्शकों से शेयर करूं कि अगर मैं जरा सा भी कहीं काम जो करती, जैसे मैं प्रोग्राम भी कर रही हूँ, चलिए किसी को काम देते हैं, और पहले क्या होता था, कुछ कुछ कुछ कुछ चल भी रहा है तब भी प्रोग्राम कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। आप अगर कुछ कुछ कुछ कुछ चल रहा है जो, और वो पता नहीं चलता है कि किस चीज ने कहाँ किया, लेकिन वो जब कुछ कुछ चल रहा है तो वो रुक के आप उसी टाइम पे उसको ठीक कर सकते हैं।
1: नाउ इफ यू डू दिस व्हाट विल हैपन द रिजल्ट, पहले भी प्रोग्राम आप कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब आप पहले अपना ध्यान रख रहे हैं फिर प्रोग्राम कर रहे हैं, व्हाट विल हैपन इज यू विल एंजॉय द वर्क मोर एंड यू विल डू मोर जस्टिस टू द वर्क।
0: बिकॉज
1: यू नो, आप यहाँ बैठे हैं लेकिन आपका मन कहीं और है, हाउ इज दैट जस्टिस टू द प्रोग्राम, इट्स नॉट फेयर। तो क्या होता है, जब हम अपना ध्यान नहीं रख पाते तो एक्चुअली इन द ट्रू सेंस हम अपनी बाकी जिम्मेवारियां भी
0: नहीं निभा रहे होंगे। वेरी ट्रू,
1: that we have to somewhere it has to hit me ke you know ke main keh to raha hu, let's say I just asked someone the other day, I said what's your first responsibility, to kaha my children, I said okay very good, what about your children, they said acche school mein dalna, acchi tarah se unko bahut strong banana, ye karna, but nowhere was he talking about making them emotionally strong.
0: बिकॉज वो तो सोचा ही
1: नहीं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं डाला ना, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आया तो ये भी नहीं ध्यान आया कि मेरे बच्चों के प्रति जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें भी ये आता है। हमने सिर्फ देखा कि फिजिकली उनको सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए, एजुकेशन उनको अच्छी मिलनी चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इमोशनली उनको स्ट्रांग बनाना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हु विल डू इट? इज द स्कूल गोइंग टू डू इट? Go and talk to any principal. Are you ready? She says, "Oh, so many children."
0: And nobody knows how to do it also.
1: कैसे करेंगे? हम तो नहीं कर सकते। आप किसी भी स्कूल में प्रिंसिपल या टीचर से मिले, they're only saying क्या करें आजकल के बच्चे, देखो कोई स्कूल में रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है। I actually met a boy in a school, he says, I beat myself. मतलब इस तरह के केसेस प्रिंसिपल्स और टीचर को हैंडल करने पड़ते हैं। सो यस, इट्स बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। एंड ये बच्चा काफी बड़ा था, नॉट के मेरे को इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, एंड जब मैं जिसके साथ नाराज हूँ या जो फ्रस्ट्रेशन है, मैं उनको कुछ नहीं कर सकता, आई बीट माई सेल्फ। लुक एट द सिचुएशंस दे हैव टू हैंडल, नाउ दैट्स अ साइन कि वो इमोशनली बहुत वीक है, वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जहां आज हम इसी इल्यूजन में चल रहे हैं ना कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली फैमिली फैमिली फैमिली में भी चिल्ड्रन, सो आर वी रियली फुलफिलिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर मेरे बच्चे आज इमोशनली वीक है, देन टाइम टू वेक अप, आई एम नॉट फुलफिलिंग माई
0: रिस्पॉन्सिबिलिटी।
1: जब आप अपने इमोशंस पर ध्यान रखना शुरू करेंगे, अपनी स्थिति पर, तो फिर आप अपने बच्चों के भी, you will be able to take care. And if you find your child is going through pain, you can help. लेकिन अगर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट में ही नहीं आता, या अगर आता भी है तो हैंडल करना नहीं आता, तो फिर कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी?
0: वेरी ट्रू। इनफैक्ट दिस इज हाउ बहुत बार पेरेंट्स आते हैं कि वो इस तरह के क्राइसिस में हम क्या करें, तो वो ये कि हमने अगर अपने आप को ही हैंडल करना सीख गए होंगे सो आई थिंक नाउ वी आर बी एबल टू डू ऑल. फिर मैं बाकी सबकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी इमोशनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने का सही परिपेक्ष बता पाऊंगे
1: क्योंकि खुद जब तक नहीं करेंगे आई मीन बोलना बहुत इजी है ना बच्चों को कि ये राइट है ये रॉन्ग है ऐसे नहीं वैसे नहीं बट दे गो थ्रू सो मच कॉन्फ्लिक्ट इनसाइड उनको कितना अंदर दर्द है हु इज गोइंग टू हेल्प. एंड फिर वी से कि स्कूल में काउंसलर है स्कूल में जो काउंसलर है उनसे बात करो. आई मीन स्कूल्स डोंट नीड टू हैव काउंसलर दिस वॉज द रोल ऑफ द पेरेंट. पहले कहाँ था हम जब स्कूल में थे तो वी डेंट हैव अ काउंसलर क्योंकि काउंसलिंग का कार्य तो काउंसलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है. क्यों आज मुझे बाहर एक थर्ड पर्सन के पास जाना पड़ रहा है बिकॉज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड. देन आई एम फाइंडिंग द नीड टू टॉक टू समवन एल्स. तो समवेयर वी नीड टू स्टॉप अपनी लिस्ट फिर से बना लें रिस्पॉन्सिबल एंड एक्चुअली सिट डाउन एंड डू इट. एंड फिर कहीं लगे कि हाँ ये तो बहुत बड़ी मेरी लिस्ट है. और फिर कई बार कई लोग कहते इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बट इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना सिर्फ ध्यान रखना है. और जैसे आपने कहा खुद करेंगे तो बच्चे को कराना
0: आसान हो जाएगा.
1: अच्छा बच्चे को कराना आसान हो जाएगा अपनी टीम को ऑफिस में. आई मेट वन ब्रदर इन अ प्रोग्राम ही इज हेडिंग अ कंपनी नॉट वेरी बिग 40-50 लोगों के. तो इससे पहले तो मुझे इतना गुस्सा आता था एंड मैं ऐसे चिल्ला देता था लेकिन सब मेरे से डर कर चलते थे मेरा पूरा ऑफिस. लेकिन फिर प्रोग्राम देखकर जैसे जैसे अपने पर वर्क किया इससे तब तो मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता. एंड ही वॉज शेयरिंग विद एवरी वन के बिना गुस्से के भी काम हो जाता है यू नो ऑफिस में चलता है. बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट ही केम एंड शेयर ही सेइंग मेरे ऑफिस के बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ अब शेयर करते हैं. दैट वॉज एन आई ओपनर. एंड एवरी वन सेड कि अपनी प्रॉब्लम अपने बॉस के साथ आकर कौन शेयर करेगा नहीं तो यू नो अपने घर की अपने हस्बैंड की हु विल कम एंड शेयर. ही सेज दे कम एंड शेयर एंड समवेयर दे लुक एट मी लाइक दिस नाउ कि कहीं ना कहीं मेरे पास एक आंसर है उनके लिए. जस्ट बिकॉज आपको कोई दिखाई दे रहा है तो आपको जैसे ही कोई ऐसा दिखाई देगा मिलोगे आप जिससे हु इज एबल टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ फर्स्ट यू नो दैट पर्सन विल बी एबल टू हेल्प यू. तो आप देखो पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया. ऑफिस वही है लोग वो हैं लेकिन आपका काम करने का तरीका चेंज हो जाता. तो लेट्स पुट सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द लिस्ट. हैव यू पुट इट ऑन योर लिस्ट? देखो हम एक बिलीफ के साथ स्टार्ट करते हैं. एवरीथिंग विल स्टार्ट विद अ बिलीफ. सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हम दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा अच्छा ले लेंगे. ये एक बिलीफ है लेकिन जैसे आप उसको एक्सपेरिमेंट करते हो now that becomes the truth. And that's why we say take it back, experiment. Reject kar diya, so then nothing works out for you. It's another belief.
0: You know, husband-wife ke case mein bahut hota hai. Unhe ye achha nahi lagta. Unhe mera ye karna achha nahi lagta. Aur isliye main ye karti jaati hu.
1: Bhale karo. Agar karte bhi ho, to pehle apni responsibility lekar ki main khush rahungi wo karte hue, फिर करो. देन इट्स ओके इवन इफ यू नो आई हैव टू डू समथिंग फॉर समवन बट माई फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आई विल स्टेबलाइज माई सेल्फ देन डू इट. नॉट आई विल गो इनटू पेन एंड देन डू इट.
0: मुझे आपके लिए करना पड़ रहा है मुझे उनके लिए करना पड़ रहा है उनके लिए.
1: नॉट वर्थ इट क्योंकि जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो तो दर्द का ही होगा. तो जैसे ही हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ही हमारी एक और जो बात आती वो है डायरेक्शन इन लाइफ. माई सेल्फ डायरेक्शन. कहा जाता द गिफ्ट ऑफ लाइफ इज गिफ्ट ऑफ टाइम. ये जीवन कितने समय के लिए ये है मालूम नहीं. डू वी नो?
0: नो.
1: कितना टाइम? वी डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव. यू नो इट्स लाइक मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय है लेकिन मेरे पास ये चॉइस है कि ये जितना समय मुझे मिला है इसका मुझे क्या करना है. हाउ डू आई हैव टू क्रिएट माई लाइफ. अब ये मुझे जितना समय मिला है मेरे पास दो ऑप्शंस हैं. या तो इसको अपने कंट्रोल में लेकर बहुत क्रिएटिवली जिस तरह का अपना मैं ड्रामा बनाना चाहूं यू नो द वे आई वुड वांट माय रोल टू इवॉल्व आई डू इट. द अदर थॉट इज मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं दूसरे लोग मेरे जीवन को चलाते हैं. तो समय उतना ही मिला है जीवन वो उतनी ही मिली हुई है लेकिन उसको हम कैसे बिताते हैं ये किसकी जिम्मेवारी है?
0: मेरी अपनी.
1: ये भी. तो अगर मैं उस स्मृति से चलती हूँ कि ये सब कुछ मेरे हाथ में है एंड आई कैन क्रिएट. व्हेन विल आई बी एबल टू क्रिएट? क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अभी मुझे बुरा भला कहते हैं लेकिन जब मैं रियलाइज करती हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं अपना सीन अपने अनुसार क्रिएट करते हो, तो भले आप

0: जैसे भी थे, लेकिन अभी अभी मैंने अपना सीन कैसा क्रिएट किया, जिस तरह मैं क्रिएट करना चाहूं, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी सीन, एवरी सीन। अगर आप इस एक्टर पर ध्यान देना शुरू कर दो तो आपकी पूरी जीवन की ये जो यात्रा है वो कौन क्रिएट कर रहा होगा?
1: मैं खुद करूंगी।
0: आप क्रिएट कर रहे हो।
1: दूसरा नहीं लिखेगा मेरी कहानी, दूसरा मेरे डायलॉग नहीं लिखेगा। वेरी ट्रू।
0: लेकिन अगर मैं जीवन इस स्मृति से चल रही हूँ कि वो क्रिएट कर रहे हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर मेरी जीवन की जो पूरी यात्रा चलेगी वो कोई ना कोई और क्रिएट करता है।
1: आपने ऐसा क्यों बोला? आप कौन होते हैं करने वाले?
0: आपने स्पेशली फॉर सिस्टर्स कहते हैं, पहले जीवन उस तरह चली जिस तरह पिता चाहता था, फिर जीवन उस तरह चली जिस तरह पति चाहता है, फिर जीवन उस तरह चली अब जब
1: बेटा।
0: दिस इज अ फीलिंग ऑफ
1: कंप्लीट हेल्पलेसनेस।
0: हेल्पलेसनेस। सो ऐसा व्यक्ति अपने प्रति अंदर कैसे सोचेगा, क्या सोचेगा अपने प्रति? यू नो, इज दैट पर्सन एंजॉयिंग लाइफ? नो, दैट पर्सन इज जस्ट सेइंग कि आई एम लीडिंग माय लाइफ अकॉर्डिंग टू दिस पीपल। सो समवेयर हमें रुक कर सोचना पड़ेगा कि एम आई लीडिंग माई लाइफ अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ और एम आई लीडिंग माई लाइफ अकॉर्डिंग टू अदर पीपल। ये सेंटेंस बहुत सिंपल साउंड कर रहा होगा, बट आई एम टेलिंग यू मेनी पीपल वो एक चीज बोलते हैं, आई हैव नो चॉइस।
1: मैक्सिमम
0: आई हैव नो चॉइस। वो अपनी परिस्थितियों की एक ऐसी ऐसी लिस्ट बना लेंगे, कहेंगे आई हैव नो चॉइस, टेक दिस सेंटेंस आई हैव नो चॉइस एंड एक्सप्लोर। कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपके पास चॉइस नहीं है? क्योंकि जिस बार आपने अपने आप को एक बार पे ये सेंटेंस दिया आई हैव नो चॉइस, मतलब आपके जीवन आपके हाथ से निकल गए।
1: लेकिन मुझे उस सपोज टीचर के साथ पढ़ना ही है जो मुझे बार बार संभव, वो मुझसे नाराज है। बहुत सारे बच्चों के सामने भी ये बात आती है कि टीचर इज नॉट लाइकिंग मी, यू नो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम विद स्टूडेंट्स। तो वो मुझे उसकी क्लास को अटेंड करना ही है, लेकिन वो बार बार मुझे निग्लेक्ट करता है या मुझे पॉइंट आउट करता है, ये बहुत बच्चे बोलते हैं। तो तब इस सिचुएशन में मेरे पास कोई चॉइस नहीं है।
0: क्या चॉइस कौन सी चीज की नहीं
1: कि मुझे उनके पास उन्हीं से पढ़ना ही पड़ेगा।
0: हाँ।
1: मुझे वो सब लेना ही पड़ेगा।
0: हाँ।
1: बट मैं रिस्पॉन्ड क्या करूंगा,
0: वो मेरी चॉइस है। देखो चॉइस, वी आर नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अगेन, अब आपकी जिनसे शादी हुई है अब थोड़ी आप अपनी चॉइस एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, उस केस में भी हम कर देते हैं आजकल। या आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो बॉस है, आपका जो टीम है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट चॉइस देयर। वी आर टॉकिंग अबाउट हर सीन में, हर स्टेप पर रुक कर हमें अपने आप को देखना पड़ेगा कि कहीं भी गलती से भी हम अपने आप को ये तो नहीं कह रहे कि आई डोंट हैव अ चॉइस। ये एक बहुत, क्योंकि फिर एक बार ये सेंटेंस सेट इन हो जाता है तो हम हर सिचुएशन में इसको अप्लाई कर देते हैं। आई हैव नो चॉइस। यू नो, अ सिंपल थिंग लाइक कई ऑफिसेस में कई लोगों को अपने सीनियर के प्रेशर के अंडर कुछ कई बार गलत काम करना पड़ जाता है, या करप्शन या झूठ बोलना या व्हाटएवर व्हाटएवर। अब वो करते हैं, ठीक है, करते हैं, खुद करते हैं, लेकिन करते करते पता है क्या कहेंगे? आई हैव नो चॉइस। कौन कर रहा है? आई एम डूइंग इट। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई एम सेइंग आई हैव नो चॉइस? हम क्या कर रहे हैं?
1: लेकिन मैं अगर नहीं करूंगा तो मेरी नौकरी चली जाती है सपोज,
0: दैट्स ऑल्सो अ चॉइस।
1: हाँ, बट देन मेरे घर पे फिर कैसे हो?
0: नो, इट्स ओके, आप कर रहे हैं। वी आर नॉट सेइंग कि आपको करना है या नहीं करना है, वी आर नॉट डिबेटिंग ऑन दैट। कि आपको करप्शन अगर आपको करनी पड़ रही है, ब्राइब लेनी पड़ रही है ऑफिस की तरफ से, तो आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। क्वेश्चन इज कि आप दोनों में से जो भी ऑप्शन कर रहे हैं,
1: कर तो आप रहे हो ना,
0: वो फिर भी आपकी चॉइस है। अपने आप को ये कहकर नहीं करवाना कि आई हैव नो चॉइस। व्हाई वी आर सेइंग दिस, क्योंकि ये सेंटेंस हमें अंदर ही अंदर खाली कर देता है कि मेरी जीवन मेरे हाथ में तो है ही नहीं, एंड दिस इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस फॉर एनीबडी।
1: नो, बट गिवन द चॉइस आई वुड नॉट लाइक टू लीड माय लाइफ लाइक दिस। दिस इज व्हाट पीपल
0: एक्सरसाइज योर चॉइस देन। एक्सरसाइज योर चॉइस। आई मेट एन ऑफिसर, उनको इट वॉज ऑन अ बिग लेवल डील, तो वो कुछ ऐसे 6 करोड़ की डील थी, एंड उनको कहा गया था कि उनको ऐसे वेंडर से वो लेना है ताकि दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वुड गेट 6 लाख्स आउट ऑफ इट। ही डिडंट डू इट। ओके, ही सेड इट जस्ट डजंट गो वेल विद मी, तो मैं नहीं कर रहा। तो वो सीनियर ने उसी टाइम कह दिया कि यू विल हैव टू पे फॉर दिस व्हाट यू हैव डन। ही सेज ओके, तो नहीं किया। तो अपनी चॉइस उस टाइम एक्सरसाइज

0: I give myself permission to do certain things which actually I internally feel I don't want to do.
1: Again, it becomes very important. इस पर हम और बातचीत करेंगे because कई सारी चीजें अभी हैं जो अगर मैं उतना strong नहीं हूँ अगर तो मैं वो strength कहाँ से लेकर आ सकती हूँ. What is it that can give me strength? You know, there are a lot of things इसके ऊपर जिसपे हम बातचीत कर सकते हैं लेकिन फिलहाल thank you so much आज की बातचीत के लिए. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: आज की इस बातचीत से जुड़ी कोई बात अगर आपके पास आती है तो आपका हम स्वागत करते हैं. आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999934555 0 9873 666 555 0 9999744555. हमारा ईमेल आईडी है om shanti studio@pkmail.org.

अवेकनिंग विद धर्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट से जुड़ी अभी बहुत सी बातें जानना बाकी है और देखना बाकी है कि किस तरह से हम इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com.
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: Assertiveness without generating anger, तभी वो real मायने में assertiveness होगा, क्योंकि assertiveness inner stability। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और stable भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर generate हुआ, चाहे वो suppress कर दिया, लेकिन हम stable नहीं होते हैं तब। You know, तो then I cannot say कि I'm internally stable, but now I'm being assertive। तो internal stability means, you know, no trace ऑफ एंगर, उसको जो पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद रमा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। जीवन जीने की कला को हम सीख रहे हैं लाइफ स्किल्स की इस श्रृंखला में। अपने विचारों को देखा, जाना कि कितनी तरह के विचार होते हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो थॉट्स या विचार हम क्रिएट करते हैं क्या असर डालते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सुश्री शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, एक बड़ा खुलासा हुआ है हमारे सामने है अब खुली किताब की तरह कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। जो भी विचार है, जिस तरह के जितनी तरह के विचार हैं आपने कहा, वो हमारे द्वारा क्रिएट होते हैं। अभी तक हम अवेयर नहीं थे, अब धीरे धीरे पता चल रहा है। ये जो विचार हैं, ये जो थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारे जीवन पे तो डाल रहे हैं असर। अगर है क्या हमारे बॉडी पर भी इनका असर होता है?
1: नहीं, डेफिनेटली पहला असर तो बॉडी पे होता है क्योंकि आत्मा शरीर से रिलेटेड है, तो फर्स्ट इफेक्ट तो बॉडी पर ही है, फिर सारे जीवन पर है, लाइफस्टाइल पर है। और मानते हैं कि शरीर में 75 ट्रिलियन सेल्स है, तो आपका प्रत्येक विचार यह सभी 75 ट्रिलियन सेल्स पर इफेक्ट करता है।
0: बॉडी और ये पर्सनालिटी, दे आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट। तो जो जो हम थॉट कर रहे हैं वो इस शरीर पर, इस पर भी असर डाल रहा है, ऑर्गन पर भी डाल।
1: बिल्कुल, हाँ, थॉट भी डालेगा और जब पर्सनालिटी बनेगी तब तो वो थॉट आपका बार बार रिपीट होगा।
0: हाँ।
1: और उससे अच्छा और जो नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट है वो बढ़ती जाएगी।
0: ओके।
1: बात तो यह है कि वन सिंगल थॉट अफेक्ट्स प्रैक्टिकली ऑल द 75 ट्रिलियन सेल्स ऑफ बॉडी।
0: ओके।
1: है ना, मतलब इतनी इसको अगर हम समझ ले तो दिट्स क्वाइट एन डीप रूटेड थिंग कि भी प्रत्येक विचार पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विचार में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी है तो नेगेटिव इफेक्ट हो रही है, अगर उसमें पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिव इफेक्ट हो रही है।
0: ओके। और ये कैसे डाल रहा है?
1: आत्मा का स्थान नहीं, ब्रेन का एक सेंट्रल पोर्शन है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस को भी माना गया है कि वो दिमाग का भी दिमाग है। तो वहां पर आत्मा निवास करती है और हाइपोथैलेमस इमोशन से सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, और जब एक भी नेगेटिव विचार आया तो हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट

0: होगी और उसका असर फिर सारे शरीर पर होगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस का सारा कनेक्शन ब्रेन के साथ भी है, डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर भी है।
1: ओके, तो मतलब मेरा एक एनर्जी, एक जो थॉट है वो हाइपोथैलेमस को अफेक्ट कर रहा है।
0: हाइपोथैलेमस में कई सेंटर्स हैं। अगर ने आम भाषा का उपयोग करना हो, मेडिकल लैंग्वेज को बाजू में रख दे, तो ये एक स्विच बोर्ड की तरह, जैसे भी एक स्विच आपने ऑन की, फैन स्टार्ट हो गया, दूसरा स्टार्ट किया, गीजर स्टार्ट हो गया, तो ऐसे ही हाइपोथैलेमस में अलग अलग स्विचेस है। एक स्विच पर इफेक्ट हुई तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एसिडिटी
1: अच्छा।
0: बढ़ जाएगी,
1: मतलब कोई एक इमोशन से एसिडिटी बढ़ गई
0: हाँ।
1: दूसरा इमोशन से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तीसरे इमोशन से घबराहट बढ़ गई, ऐसा
0: ये भी हो सकता है। और जो दूसरी बात, विच इज साइंटिफिकली प्रूवन, कि अगर एक सेंटर, हम कहें भी डिफरेंट स्विच हाइपोथैलेमस में है, एक स्विच अगर ऑन हो गई तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट अटैक आ सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, इससे दूसरी स्विच ऑन हुई तो डिफरेंट इफेक्ट्स होगी, और इमोशंस की भी इफेक्ट पॉसिबल है। ये अपने आप में एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है कि कैसे क्रोध की क्या इफेक्ट होगी, लोभ की क्या इफेक्ट होगी, अगर क्रिटिसिज्म हुआ तो क्या इफेक्ट होगा।
1: मेरे ऑर्गन में जो प्रॉब्लम आई है मैंने वहीं तक सीमित रखा, उस दवाई के साथ ही उसको रिलेट किया, या फिर मैंने वो फिजिकल एक्सरसाइजेज और उन तक किया। मतलब व्हाई आई लिव्ड इन दिस फूल्स पैराडाइज, मुझे समझ में क्यों नहीं आया।
2: नो, इट्स नॉट दैट हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आज इस बात की भी अवेयरनेस है कि माइंड इज हैविंग एन इफेक्ट ऑन द बॉडी। ये बात की भी अवेयरनेस है कि अगर आप बॉडी का कितना भी ध्यान रख लें तो भी अगर माइंड हेल्दी नहीं है, सो मेनी यंग प्रोफेशनल्स टुडे आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक्स एट अ वेरी यंग एज। और इनसे अगर बात की जाए तो ये कहेंगे हम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं, हम अल्कोहल भी नहीं लेते, हम हर मॉर्निंग अपनी वॉक पर जाते हैं, हम फिजिकली भी ओबीस नहीं है, कुछ नहीं है। तो लॉजिकली देर इज एब्सोल्यूटली नो रीजन के ऐसे हेल एंड हार्टी एंड जो राइट लाइफ स्टाइल, जो हम कहते हैं ना राइट लाइफ स्टाइल, वो लीड कर रहे हैं, तो फिर इसको इतनी यंग एज में, मिड थर्टीज और समथिंग या अर्लियर देन दैट, हार्ट अटैक हो रहा है। दैट्स बिकॉज वी आर इग्नोरिंग वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि इनका मन कितने टर्मोइल से गुजर रहा है सारा दिन। तो जबकि ये अवेयरनेस आ गई, अब जैसे हम बॉडी का ध्यान रखते थे हमें मन का रखना है, लेकिन हम मन का क्यों नहीं रख रहे थे, क्योंकि हमने कहा वो तो विदाउट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन है। सो वी एक्सेप्टेड स्ट्रेस, सी वी एक्सेप्टेड ये सारी इमोशंस जो आज हम सोच रहे हैं कि वी आर क्रिएटिंग, वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट अर्लियर वी थॉट वी आर नॉट क्रिएटिंग, दे आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। सो इफ आई एम अ कॉर्पोरेट लीडर और इफ आई एम वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल जहां ना दिन है ना रात है, सुबह निकलना है, रात को आना है, फैमिली टाइम नहीं है, स्ट्रेस बहुत है, कॉम्पिटिशन बहुत है, तो दीज इमोशंस आर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, एंड इफ दीज इमोशंस आर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ देन दीज डिजीजेज ऑल्सो
1: आर पार्ट ऑफ माई लाइफ। इनफैक्ट ओहो यस, बिकॉज आई कैन नॉट चेंज,
2: आई कैन नॉट चेंज देम। दे थॉट टू चेंज मीन्स फिर आप अपनी जॉब छोड़ दो या आप अपने एम्बिशंस को कम कर दो, संन्यास नहीं भी तो भी यू नो इफ यू टेल समवन थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ा सा कहेंगे कॉम्पिटिशन इतना है कि अगर मैं थोड़ा भी स्लो हो गया तो। आज लीडर छोड़ो, एक नॉर्मल जॉब के लिए भी, जॉब एक है, लाइन में 100 लोग खड़े हैं जो उस जॉब के लिए रेडी हैं, थोड़ा सा आप स्लो डाउन हो जाओ, द कंपनी विल से ओके यू आर नॉट नीडेड, लेट अनदर पर्सन वॉक इन। सो वी हैव एक्सेप्टेड दैट सिचुएशंस चैलेंजिंग है तो स्ट्रेस तो होना ही है, द बिगेस्ट सो कॉल्ड रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, यू नो, जिसकी वजह से हम अपना कितना नुकसान कर रहे थे। जब तक सिचुएशन नहीं चेंज होगी, इमोशन नहीं चेंज हो सकती, और जब तक इमोशन नहीं चेंज होगी तो हेल्दी होना पॉसिबल
1: नहीं
2: है। सो वी एक्सेप्टेड, सो वी थॉट कि चलो जितना मैं ध्यान रख सकता हूँ उतना रख लेता हूँ, एंड दैट वाज ऑल फिजिकल। बट द आयरनी इज कि इतना ध्यान रखने के बावजूद बीमारियां तो, लेट्स गो बैक 20 इयर्स बैक, नो कॉन्सेप्ट ऑफ मिनरल वाटर, नो कॉन्सेप्ट ऑफ जॉगिंग पार्क्स, डायट अवेयरनेस, आज तो हर न्यूज़पेपर में डायट पर आर्टिकल है, आज हम स्प्राउट्स खा रहे हैं, मतलब नेचुरोपैथी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और बीमारियां फिर भी बढ़ती जा रही है, बिकॉज वन इम्पोर्टेंट डायमेंशन इज बींग कन्वीनियंटली इग्नोर्ड जस्ट बाई सेइंग टू योर सेल्फ कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो जितना इस तरफ ध्यान रख सकते हो रखो, फिजिकली सारा रख लो, ताकि कुछ तो एक बैलेंस, विच इज वेरी गुड कि एटलीस्ट वी आर टेकिंग केयर ऑफ सेल्स फिजिकली, लेकिन बैलेंस तो मतलब जो एक डोमिनेंट फैक्टर है कि इफ इट इज माइंड ओवर मैटर। आज दिन तक हम कहते थे अगर हेल्दी होंगे तो खुश होंगे, इट वॉज सपोज टू बी अगर खुश

0: तो हेल्दी
1: तो हेल्दी होंगे. यू नो यू आज समन क्या चाहिए, खुशी चाहिए. खुशी कैसे मिलेगी, हेल्दी होंगे तो खुश होंगे. हेल्दी होंगे तो खुश होंगे नहीं, खुश होंगे
0: तो हेल्दी होंगे.
1: हेल्दी होंगे तो इक्वेशंस ही तो सारे.
2: लेकिन गहराई में भी नहीं गए जो शिवानी बेन बता रहे हैं कि ये तो समझ में आता है कि स्ट्रेस की इफेक्ट होती है, लेकिन वो डीप में क्या है, क्यों हो रहा है, उसको हम अंडरस्टैंड अच्छे से आज तक नहीं कर पा रहे. और आपने भी जो शुरू में पूछा ना, वह बात भी एक प्रकार से सही है कि लोग आज ये समझने लगे कि हम आसन कर लेंगे, कुछ प्राणायाम कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे. ये मन पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गहरी बात है, हमें समझ में नहीं आ रही
0: और हमारे बस में ही नहीं.
2: हाँ, ये भी
0: थिंग कि हम उस पर कुछ कर ही नहीं सकते. और वो मतलब क्योंकि अगर वो करना है तो मुझे अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा, मुझे अपनी एम्बिशंस छोड़नी पड़ेगी. लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये फीलिंग्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ, सिचुएशन बाउंड नहीं है, अगर हम ये रियलाइज कर ले, देन लेट्स लुक एट इट कि क्या असर पड़ता है हमारी बॉडी पे. क्योंकि उस तरफ तो हमने जाने की कोशिश नहीं की, तो क्या असर डालती है ये फीलिंग्स.
2: हमारे शरीर में एक प्रणाली है जिसको कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि ऑटोमेटिक काम करती है. जैसे शरीर के मसल्स को कंट्रोल करना हमारे बस में, हाथ को ऊपर नीचे करना, परंतु जो इंटरनल सिस्टम्स हैं, जैसे कि हार्ट की एक्टिविटीज, डाइजेशन, किडनी का फंक्शन, ये सब ऑटोमेटिक चलता है. अब जब नींद में सोए हैं तब भी वो अपना नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, इसी के कारण उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा. ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, एक है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिंपैथेटिक. जो सिंपैथेटिक प्रणाली है, अधिकतर जो हमने टॉक्सिक इमोशंस कहा, वो सभी टॉक्सिक इमोशंस सिंपैथेटिक सिस्टम को बहुत तेज चलाएंगे. और सिंपैथेटिक सिस्टम वो एक्सेलरेटर की तरह है, और जब सिंपैथेटिक सिस्टम फास्ट काम करती है तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी, सांस की गति तेज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जो हृदय की अपनी धमनियां है, ब्लड वेसल्स है, वो भी छोटी सी हो जाएगी, मसल्स है वो सारे टेंशन में आएंगे, मुंह सूखने लगेगा.
0: तो ये जो हमें फिजिकल सिम्टम्स दिखते हैं जब हम यू नो इन इमोशंस को महसूस कर रहे होते हैं, सो इट्स बिकॉज ऑफ द
2: सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी.
0: ओके,
2: जैसे कि सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी में डाइजेशन खत्म है, आपको भूख नहीं लगेगी, इवन कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में जाते तो बैक पेन होता है, इवन माइग्रेन हेडेक कैन रिजल्ट बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम. तो ये सारा एक चेन ऑफ रिएक्शन है. और जो दूसरी सिस्टम है पैरासिंपैथेटिक सिस्टम की, जो एक प्रकार से ब्रेक की तरह है, और जब पॉजिटिव इमोशंस हो, खुशी का अनुभव हो, सुख का अनुभव हो, सेटिस्फेक्शन का अनुभव हो, तो थोड़ी सी पैरासिंपैथेटिक सिस्टम ज्यादा काम करती है कि जो अच्छा है. आज वर्तमान 21वीं सदी में ब्रेक पर तो हमारा पैर ही नहीं है, ब्रेक फेल हो गई है और एक्सेलरेटर बहुत ही फास्ट चल रहा है, इसके कारण बहुत सारी जो बीमारियां हैं वह हो रही है.
0: ओके, डॉक्टर पटेल, एक मेरे को बात जाननी है. आपने कहा कि जैसे ही हमारी टॉक्सिक इमोशंस जो हैं वो आती हैं हमारे पास, यानी कि हमारे थॉट्स जो है बहुत फास्ट चलने लगते हैं, तो ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक एस्पेक्ट्स हैं जो ऑटोनॉमस है, ये नॉर्मल जो है नॉर्मल लाइफ में, अगर दोनों कुछ नहीं हो रहा, कोई भी इमोशंस इस वक्त नहीं है, तो वो क्या एक बैलेंस में चलेंगे?
2: हाँ, तो ऑलवेज वो बैलेंस में चलेंगे. सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी भी नहीं है, पैरासिंपैथेटिक भी नहीं है, और आप हेल्दीली चल रहे हो. लेकिन जब कोई ऐसी सिचुएशंस आए, क्योंकि परिस्थितियां तो आनी है, मैं नहीं कह सकते परिस्थिति नहीं आई,
0: वो इमोशंस क्रिएट की बार बार, आई थिंक वी नीड टू रब इनटू आवरसेल्फ,
2: कि भी वो पॉजिटिव इमोशंस को भी लाना है, मुझे थोड़ा डिटैच होना है, पीस ऑफ माइंड को अनुभव करना है, तब पैरासिंपैथेटिक सिस्टम भी एक्टिवेट होगी और हमारा जो स्वास्थ्य है वह सही रूप से चलेगा.
0: पैरासिंपैथेटिक अगर एक्टिवेट हुआ तो क्या क्या बॉडी पर इफेक्ट होता है?
2: वो अधिकतर इससे अपोजिट है.
0: अच्छा, मतलब हार्ट रेट आपका कम होगा,
2: हार्ट रेट कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, मसल्स है वो रिलैक्सेशन में जाएंगे, प्रॉपर सिक्रेशन होगा डिफरेंट जूस का, इवन हार्मोनल सिस्टम पर भी उसकी कुछ इफेक्ट है, वो बैलेंस होगी.
0: ओके, मतलब अगर पैरासिंपैथेटिक ज्यादा
2: बहुत ज्यादा तो बुरा है,
0: तो बुरा है,
2: बट दैट इज एक्सट्रीम. अदरवाइज जो नॉर्मली है वह नेगेटिव इमोशंस है वो सिंपैथेटिक पर इफेक्ट करते हैं.
0: तो अब हमने कोशिश की थी कि गुस्सा आ रहा है तो उसके ऑपोजिट के इमोशन को क्रिएट करने की कोशिश करें.

0: You know, yeah, because somewhere we need to understand ki ho kya raha hai.
1: Somewhere I think apne belief systems par work kar le, kyunki belief systems se thoughts hai. To jab mujhe ye realize ho raha hai ki mera ek ek thought, ek ek gusse ka thought mera damage kar raha hai, dusre ka to kar raha hai, kaam ka to kar raha hai, lekin sabse pehle mera damage kar raha hai aur shayad dusre bhi se bhi zyada mera hi damage kar raha hoga. You know, kai baar offices mein agar kisi senior ko aadat ho gayi hai gusse se kaam karane ki, to kai baar jo juniors hain un par ab us bahut baat ka asar nahi padta. You know, their immunity system becomes much stronger mentally also, ki ye to aise shor machate rehte hain. Sometimes people just laugh about it, lekin jo kar raha hai उसका तो नुकसान हो ही रहा है ना,
0: के हर अंग का जैसे कहा.
1: एंड फिर उसकी वो नेचर बनती जा रही है. एंड होता भी क्या, अगर मैं किसी को देखकर इरिटेट हो जाऊं, आई माइट शाउट एट देम वंस, लेकिन वो बात मेरे माइंड में तो यू नो कुछ मिनट्स तक तो कम से कम रहेगी. ये लोग ऐसे ही हैं, जब तक इन पर चिल्लाओ नहीं, फिर मैं अपने आप को जस्टिफिकेशन दे रही होती हूँ अपने बिहेवियर के लिए. तो शोर तो एक मिनट में मचाया, लेकिन कम से कम 15 मिनट उसके थॉट्स चल रहे होंगे. इसका मतलब कितना ये डैमेज हो रहा होगा अंदर वाला. दिस आई एम नॉट रियलाइजिंग.
0: इवन हेट्रेड जिसको हम कभी बाहर शो नहीं करते कितनी बार, और अंदर अंदर हम मतलब हेट में जी रहे होते.
1: क्यों सप्रेशन भी क्यों नहीं सप्रेस्ड? आज बहुत सारी वाइव्स फील करते हैं, हम बोल नहीं पाते, हम अपनी बात नहीं रख पाते, हस्बैंड मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहा है. तो अंदर अंदर अंदर सप्रेशन, अपनी थॉट्स को नहीं चेंज कर रहे, एंड इट इज मैनिफेस्टिंग इन सम काइंड ऑफ अ डिजीज ना. तो हेल्दी रहने के लिए अगर मुझे ये समझ में आ जाए, एटलीस्ट मैं अपने कुछ बिलीफ सिस्टम्स को तो चेंज कर दूं. इवन इफ आई एम एक्सेप्टिंग कि स्ट्रेस तो होना ही है, चलो लेट्स डू दैट सेकेंडरी, क्या मैं आज ये बिलीफ सिस्टम सिर्फ ले लूं कि मैं गुस्सा करे बिना काम कराऊंगा. ये तो मेरे हाथ में,
0: आपको हेल्दी रखने
1: हाँ,
0: के लिए.
1: ये तो मेरे हाथ में है ना,
0: ट्राई स्पेस रखने के लिए.
1: एंड इट्स ओनली अ प्रोग्रामिंग ना. मैं बार बार अपने आप को ये बात कहूंगा कि मैं गुस्सा करे बिना काम कराऊंगा. व्हाई विल आई नॉट बी एबल टू डू इट? इट्स अ बिलीफ सिस्टम दैट आई हैव टू चेंज. एटलीस्ट वो इफेक्ट इमीडिएटली मुझे दिखाई देने लगेगा अपने ऊपर. धीरे धीरे मुझे ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि अच्छा, मैं अगर ध्यान रखूं, आई कैन यू नो स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई थॉट्स, देन आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो, देन आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ फियर ऑल्सो. बिकॉज मुझे रियलाइज होगा कि ये सारी नेगेटिव इमोशंस मेरी अपनी क्रिएशन है. इट्स ओनली एक किसी स्टेप से शुरू करना पड़ेगा. एंड आई नॉर्मली फील कि एंगर इज एन इजियर वन टू स्टार्ट विद, क्योंकि एंगर बाहर मैनिफेस्ट होता है. आज हमें अपने आप को अंदर देखना थोड़ा सा अभी भी मुश्किल है कि कहाँ वारी है, कहाँ जेलेसी है. जो हमें बाहर अपने आउटबर्स दिखाई दे रहे हैं ना, मैं क्रिटिसाइज करती हूँ, एटलीस्ट आई कैन सी दैट. मैं गॉसिप करती हूँ, आई कैन सी दैट. मैं शाउट करती हूँ, आई कैन सी दैट. लेट मी जस्ट स्टार्ट वर्किंग एटलीस्ट ऑन दीज बिहेवियर्स. आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट डू दिस, आई विल रियलाइज कि एटलीस्ट जहां मैंने अटेंशन दिया, आई वॉज एबल टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज. जिन चीजों को मैंने अभी तक कहा था कि ये नेचुरल है, धीरे धीरे आई बी एबल टू गो डीपर टू फियर्स, इनसिक्योरिटीज, रिजेक्शन.
0: क्योंकि अभी तक रियलाइजेशन ये ही नहीं था कि दीज आर माई क्रिएशन.
1: ये भी था कि दीज आर नेचुरल, करना नेचुरल. ये इतना नेचुरल नेचुरल कहने से इतनी सारी अननेचुरल चीजें हो रही थी.
2: और यूं ये बात भी कि भी एक थॉट की इफेक्ट है. जैसे नहीं, ये एक सिंपल थॉट कि आई एम अ पीसफुल सोल, वो तो सिंपल है ना. और कुछ चीजें बोले आप बिलीव नहीं भी करो, दैट ऑल्सो कैन हैव अ वंडरफुल इफेक्ट. हमारी गुलजार दादी एक बहुत अच्छा उदाहरण सुनाते हैं, जो एंगर की बात कही ना, कि भी एक बॉस थे, वो माउंट आबू में आए, उन्होंने मेडिटेशन को सीखा और ये बात आई कि आई एम अ पीसफुल सोल. और फिर ऑफिस में गए, सचमुच पीसफुल रहने लगे. लोगों को भी आश्चर्य हुआ कि भी क्या बात है. पहले तो हमारा बॉस आता था, गुस्से में ही बात करता, डांटता था, हम लोग भी कांपते थे आते ही. अब इसमें क्या हो गया, तो पीसफुल हो गया सचमुच, लोगों में भी चेंज आया. दादी कहती यहां तक कि उसके जो सबऑर्डिनेट थे मेरे पास आए और कहा, दादी इनको रोज आप मेडिटेशन सिखाना, 2-4 महीने में तो जरूर इनको कुछ न कुछ मेडिटेशन की बात सिखाना. कहा क्यों, तो कि दादी ये जरूर आप करना, क्योंकि पहले जब आता था ना तो हमको लगता था कि काल आ गया, अभी जब ये हमारे बॉस आते हैं तो हमको लगता है बाप आ गया. रियल थिंग ना, दादी एक्सप्लेन दिस.
0: डॉक्टर पटेल, अगर ये सारी चीजें इतना इफेक्ट कर रही हैं, जैसा आपने कहा कि सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक का एस्पेक्ट आ जाता है,
2: इवन देयर आर अदर्स, नो देयर आर अदर 3 एस्पेक्ट्स ना जिस पर इफेक्ट होती है. जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऐसे दूसरी एंडोक्राइन सिस्टम, ये छोटी छोटी ग्लैंड्स है. आपने भी सुना होगा कि गले में थायराइड ग्लैंड है, साथ में पैराथायराइड है, यहाँ पर

0: पिट्यूटरी ग्लैंड.
1: मुझे तो कई बार लगता है कि 80% जनता जो है वो हाइपोथायराइड से जूझ रही है, मतलब हाइपो या हाइपर से जूझ रही है.
0: किडनी के ऊपर दो ग्लैंड है जिसको एड्रिनल कहते हैं, ऐसे नहीं ओवरीज और टेस्टीज, उसमें से भी कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं. तो ये जो सभी एंडोक्राइन हॉर्मोन्स है वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में होते हैं और साथ साथ में वो केमिकल सीधा खून में चला जाता है और केमिकल्स है वो सीधे खून में नहीं जाते हैं. तो ये जो एंडोक्राइन सारी सिस्टम है वो कहते हैं कि ऑर्केस्ट्रा की तरह है.
1: डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं.
0: हाँ, डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि वो सीधा खून में जाता है. और यह जो डिफरेंट सिस्टम्स है वो ऑर्केस्ट्रा में अगर एक इंस्ट्रूमेंट भी ठीक से नहीं बजे तो पूरा आनंद किरकिरा हो जाता है. तो ऐसे कहते हैं कि भी एक भी ग्लैंड में थोड़ी भी दिक्कत हो तो सारी सिस्टम गड़बड़ा जाती है. और इसका कंट्रोल भी हाइपोथैलेमस में है.
1: अच्छा.
0: हाँ, हाइपोथैलेमस ये जो डिफरेंट ग्लैंड्स है उनको रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स रिलीज करते हैं. जैसे थायराइड एक हार्मोन रिलीज करता है थायरॉक्सिन. अब थायरॉक्सिन को रेगुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस थायरॉक्सिन रिलीजिंग फैक्टर सिक्रेट करता है, दूसरा है थायरॉक्सिन इनहिबिटिंग फैक्टर
1: TSH वगैरह.
0: तो अभी TSH को रिलीज भी करना है, बढ़ाना भी है, वो बैलेंस भी हाइपोथैलेमस में. और जो हमारे इमोशंस है उससे उसमें इम्बैलेंस आ जाता है और एक इम्बैलेंस हुआ सारे के अंदर डिस्टरबेंस निर्माण होगा. तो बात यह है कि ये इश्यू बड़ा सेंसिटिव है कि छोटा सा भी विचार आपके सारे हॉर्मोन्स में डिस्टर्बेंस ला देगा.
1: तो ये जो टॉक्सिक इमोशंस हैं ये इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं.
0: वो हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट करेंगे.
1: अच्छा, तो
0: रिलीजिंग या इनहिबिटिंग जो इफेक्टर्स है वो डिस्टर्ब होंगे. वो डिस्टर्ब होंगे तो हॉर्मोन्स पर भी इफेक्ट होगी. ऐसे दूसरा एक हॉर्मोन है कॉर्टिसोल, कि जो किडनी के ऊपर छोटी सी ग्रंथि है. अब कॉर्टिसोल की जरूरत भी है हमें क्योंकि उससे एनर्जी भी आती है, परंतु कॉर्टिसोल की मात्रा अगर बढ़ जाए तो भी उसकी बहुत नेगेटिव इफेक्ट है, यहां तक कि ब्रेन भी डैमेज हो सकता है. तो इसके कारण स्ट्रेस से या टॉक्सिक इमोशन से कॉर्टिसोल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है.
1: हाइपोथैलेमस इफेक्ट होता है.
0: हाँ, हाइपोथैलेमस पहले इफेक्ट होता है फिर उस पर इफेक्ट.
2: इसीलिए कहते होंगे ना, जब गुस्सा आता है तो मुझे लगता है मुझे एनर्जी मिली.
0: हाँ, एक बार
1: गुस्से में आप कुछ भी कर सकते
2: हैं. मस्ट बी गिविंग दैट सर्ज ऑफ एनर्जी एट दैट टाइम, लेकिन वो टेम्पररी हुआ और बार बार करने से उसका लॉन्ग टर्म फिर
0: इवन एवरी टाइम हर बार आपको गुस्सा आया भले एनर्जी लगी परंतु तब ब्रेन पर भी इफेक्ट हुई और ब्रेन डैमेज हुआ.
1: अच्छा,
0: हार्ट पर भी नेगेटिव इफेक्ट हुई, हार्ट भी डैमेज हुआ.
1: अच्छा, अगर कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज हो रहा है
0: तो ब्रेन पर भी डैमेज होता है,
1: ब्रेन पर असर पड़ रहा है उसका.
2: एंड दैट्स व्हाई इफ वी सी मोस्ट ऑफ दीज डिजीजेस थायरॉइड और वंस यू गेट द प्रॉब्लम यू आर लिविंग विद इट फॉर अ लाइफ टाइम.
1: हाँ, मतलब
2: क्योंकि हम रूट को तो अगर रूट थॉट्स है उसको तो मैनेज करने के बारे में हमने नहीं सोचा. तो इनमें से जो भी इलनेसेज हैं एक बार हो गई तो हम सिर्फ दवा ले लेके उसको बस चलाते रहते हैं, उसके बैलेंस को क्रिएट कर रहे हैं. रूट को अगर ठीक कर लेते
0: तो प्रॉब्लम भी और एक देखो मैकेनिज्म है. कहते पूरी आज नई ब्रांच डेवलप हो रही है मेडिसिन की, जिसको कहा है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, कि कैसे साइकिक फैक्टर्स है वह ब्रेन पर इफेक्ट डालते हैं और इन टर्न वो इम्यून सिस्टम को गड़बड़ा देते हैं. नहीं, इम्यून सिस्टम वो एक हमारी डिफेंस मैकेनिज्म.
1: बार बार बीमार जो हम पड़ते हैं, मतलब हम बच्चों के लिए भी कहते हैं कि बार बार बीमार
0: पड़ते हैं तो नहीं, डिफेंस मैकेनिज्म पर नेगेटिव इफेक्ट होता है. और साथ साथ ही इम्यून सिस्टम जो है वो कैंसर भी निर्माण कर सकती है.
1: अच्छा,
0: जो कहीं कैंसर होते हैं ना, कहते पता नहीं क्यों कैंसर हो गया, कि वो तो स्मोकिंग नहीं कर रहा है, ठीक से एक्सरसाइज कर रहा है, वेट भी ठीक है, डाइट ठीक है, तो क्योंकि ये इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो गई. इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई. वास्तव में बॉडी को यह है कि भाई ये मेरी बॉडी है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है. लेकिन इम्यून सिस्टम अगर रिकॉग्नाइज नहीं करे, जैसे नहीं हमारे सोल्जर है वो हमारे लोगों को मारने लगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेगी दे आर अवर ओन पीपल. तो है ना, ऐसा इम्यून सिस्टम में होता है.
1: Okay.
0: और इसके कारण कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है.
2: अपने ही डिफेंस मैकेनिज्म को अटैक कर दिया
0: नहीं, क्योंकि वो फॉल्टी हो गया और रिकॉग्नाइज नहीं करने लगा.
1: वही जैसे कंप्यूटर है, उसके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई वायरस ऐसा आया.
2: हाँ.
1: तो उसका पूरा वो कोलैप्स ही हो गया.
2: नहीं, अच्छी वैल्यूएबल फाइल्स को ही डिस्ट्रॉय
1: डिलीट कर दिया.
0: सारी फाइल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं.
1: ये जो कॉर्टिसोल था, क्योंकि किडनी के बारे में बात की आपने, ये डायबिटीज को एक्टिवेट करने में भी क्या ये रिस्पॉन्सिबल?
0: कॉर्टिसोल ऐसा हार्मोन है जिसकी काफी इफेक्ट है. जैसे कॉर्टिसोल इज एन एंटी इंसुलिन हार्मोन, वो इंसुलिन से अपोजिट काम करता है. तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो इंसुलिन सप्रेस होगा और डायबिटीज पर भी उसकी इफेक्ट होगी. एटलीस्ट जो कंट्रोल है डायबिटीज का वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा. और एक जो बात गहराई से समझने की है कि जो अभी भी साइंस अब मानने लगा है, 100% नहीं मान रहे हैं, वो यह कि हमारे विचार भले यह कोई मैकेनिज्म न भी हो, अब तक तो डॉक्टर्स यही सोचते थे कि भाई मन में जैसे गुस्सा आया तो क्या मैकेनिज्म होगी ताकि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा. लेकिन अब तो ये मानने लगे कि विचार है वो भले मैकेनिज्म न भी हो, जो कनेक्शन है फिजिकल कनेक्शन न हो तो भी बॉडी पर इफेक्ट कर सकते हैं. एक होता है एंटी डायुरेटिक हार्मोन, कि मन एंटी डायुरेटिक हार्मोन पर कैसे इफेक्ट करेगा उसका कनेक्शन एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी उसकी इफेक्ट होती है.
1: एंटी डायुरेटिक हार्मोन क्या करता है? डायुरेटिक
0: हार्मोन है कि जो अपने जो बॉडी में पानी है उसका बैलेंस रखता है. अगर नहीं पानी ज्यादा हो जाए तो भी अच्छा नहीं है, कम हो जाए तो भी अच्छा नहीं है. तो वो जो बैलेंस है वो ये हार्मोन करता है. और टॉक्सिक इमोशन से एंटी डायुरेटिक हार्मोन पर भी नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है.
1: तो वो वाटर रिटेंशन जो होती
0: हो
1: है
0: हो जाएगा, या तो एक्सेस नहीं ज्यादा यूरिन होगा और वाटर है वो शरीर के बाहर निकल जाएगा,
1: बस स्वेलिंग हो जाती है, ज्यादा रिटेन हो जाता है.
0: रिटेन होने से स्वेलिंग होगी. तो अब तो ये मानने लगे कि वो फिजिकल कनेक्शन की भी जरूरत नहीं है, मन बॉडी पर डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है.
1: अमेजिंग सिस्टर शिवानी, मतलब दिस इज समथिंग, इट्स अ रेवोल्यूशन. और इस प्लेटफॉर्म पे अगर हम आज बात कर पा रहे, व्हाट डू यू से?
2: I think it gives a big hope to all of us that we don't need to live with these diseases. That's a big hope. कि जैसे परिस्थितियां मैं अपने कंट्रोल में ला सकता हूँ, रिश्तों को कंट्रोल में ला सकता हूँ. हमने इतनी बार इस प्लेटफॉर्म पे कहा कि रिश्ता, चाहे उसमें दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व है, हम अपने सोच को ठीक कर लें, रिश्ता ठीक हो जाएगा. आज हमें समझ में आया हम अपने सोच को ठीक कर लें, शरीर ठीक हो जाएगा, तभी तो कहीं एनर्जी इन्वेस्ट होगी. सिवाय अभी लुकिंग एट इट शॉर्ट टर्म, हमें ये पता है अगर लाइफ में बॉडी ठीक नहीं चली तो जो भी चीजें हम अचीव करना चाहते थे वो नहीं कर सकते. तो आज उल्टा इट्स अ होप, इट्स फैक्ट, इट्स अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस कि एक और चीज मेरे कंट्रोल में आ गई है. था पहले मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में आ सकता है, मेरे रिश्ते मेरे कंट्रोल में आ सकते हैं, आज ये कि मेरा शरीर भी मेरे कंट्रोल में आ सकता है. नहीं तो अभी तक कह रहे थे वो बीमारी हो गई, अब बीमारी हो गई तो अब ये रहेगी. आज हमें ये पता चलता है बीमारी भी मैंने क्रिएट की थी, ठीक भी इसको मैं ही करूंगा. और अगर अभी कोई बीमारी नहीं है तो मैं अगर ठीक चलूं यहाँ तो यहाँ कोई बीमारी नहीं होगी. दिस इज लाइक वंडरफुल न्यूज.
0: और मैसेज तो एक इम्पोर्टेंट ये है कि भी डरने की बात नहीं, ये सब जान के
2: आप जैसे आपको नॉलेज मिलती है कि सब कंट्रोल में आ गया है, तो एक्चुअली तो अच्छी बात है ना कि ये चीजें मेरे कंट्रोल.
0: पॉजिटिव समझो कि दिस इज इम्पोर्टेंट.
1: नो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एग्जिस्ट कर रही है, आज जिन बीमारियों से हम जूझ रहे हैं, हम उनको ठीक करने के भी रिवर्सल प्रोसेस भी कर पाएंगे.
0: डेफिनेटली वी कैन डू इट.
1: सोच को अपनी चेंज
0: करके.
1: डॉक्टर पटेल, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच. क्योंकि अभी तक जिंदगी के कई, जैसा आपने कहा कि रिश्तों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे परिस्थितियों में, अपने आप अपने थॉट को चेंज करके, लेकिन आज अगर इन बीमारियों को भी हम रिवर्स कर सकते हैं प्रोसेस को, तो उससे बड़ी तो कोई मिरेकल नहीं हो सकता. ओम शांति. सचमुच आज जो हमने बात की है, हाँ थोड़ी थोड़ी घबराहट, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि डरने की जरूरत नहीं, लेकिन एक जैसे रियलाइजेशन होता है, जैसे हमें पहली बार समझ में आया था कि हमारे थॉट्स जो है वो हम खुद क्रिएट करते हैं, बहुत डिफरेंट लगा था. सिमिलरली हमारे ही द्वारा क्रिएट किए गए ये थॉट्स और फीलिंग्स मेरे शरीर के जितने भाग हैं, जितनी बीमारियों से आज मैं जूझ रही हूं, उनको क्रिएट करने में सहायक हुए हैं. इनफैक्ट उनके द्वारा बहुत हेल्प मिली है ये बीमारियां क्रिएट होने में. पहले ये पता चला, अब हम उसको रिवर्स करने के प्रोसेस को भी जानेंगे. लेकिन पहले इसको अच्छी तरह से आप एक्सेप्ट करें, समझें, जानें कि क्या क्या हो रहा है आपके शरीर में. और जैसे हमने थॉट्स को देखा, शायद अगर शरीर के बारे में सोचना शुरू करेंगे हमें ये रियलाइज होना शुरू हो जाएगा. कोई बात आपके मन में है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं ईमेल पर या फिर फोन पर. हमारे फोन नंबर हैं 9999344555, 9999344666, 9873666.

5. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। आगे जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस प्रोसेस को रिवर्स कैसे करें। अगर ये थॉट्स मुझे इन बीमारियों की तरफ लेकर जा सकते हैं, तो यही थॉट्स, यही इमोशन जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इन बीमारियों को ठीक भी तो कर सकते हैं। इसी आशा के साथ, इसी होप के साथ आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं।

0: है और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

सर्दियों में सर्दी ज्यादा, कहा जाता है इसका कारण एटम बम के टेस्ट हैं। अभी चीन ने एटम बम बनाकर दूसरा टेस्ट किया। सूचना ये भी मिली है कि फ्रांस ने भी एटम बम बना लिया है। भारत का अटल फैसला है

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अहो ऐकलत
1: का? नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8। आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान चिंतन में, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम जहां हम विचारों की गहराई में उतरकर ज्ञान, जीवन, समाज, संस्कृति और आध्यात्म से जुड़े विषयों पर

सार्थक संवाद करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल जानकारी देता है बल्कि सोच को नई दिशा भी प्रदान करता है। तो आइए आत्ममंथन और बौद्धिक समृद्धि की इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाइए। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन। हमेशा की तरह आज मैं फिर एक नया विषय लेकर आया हूं। आज का विषय है कर्म धर्म और आत्मबोध का संतुलन। आइए आप सभी का इस विचार यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आज हम जीवन के ऐसे तीन मूल तत्वों पर विचार करेंगे जिनमें यदि संतुलन हो तो मनुष्य का जीवन सहज शांत और सार्थक बन सकता है। ये तीन तत्व है कर्म धर्म और आत्मबोध। मनुष्य का जीवन केवल सांस लेने या कार्य करते रहने तक का नाम नहीं है। जीवन तब अर्थपूर्ण बनता है जब हमारे कर्म सही दिशा में हों, हमारी सोच नैतिक मूल्यों से जुड़ी हो और हमारी चेतना आत्मबोध से प्रकाशित हो। आइए इन तीनों को थोड़ा गहराई से समझें। सबसे पहले बात करते हैं कर्म की। कर्म का अर्थ है कार्य करना, दायित्व निभाना, जीवन में सक्रिय रहना। हम सब किसी न किसी रूप में कर्म कर ही रहे हैं, परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने कार्य क्षेत्र में या स्वयं के विकास के लिए। कर्म ही जीवन को गति देता है। बिना कर्म के जीवन ठहर जाता है, परंतु प्रश्न यह है कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं, केवल परिणाम के लिए या सही भावना के साथ। भारतीय दर्शन हमें सिखाता है कि कर्म का मूल्य केवल उसके फल से नहीं बल्कि उसके भाव से तय होता है। जब हम ईमानदारी, निष्ठा और सेवा भाव से कर्म करते हैं तब वह बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाता है। ऐसा कर्म मन को थकाता नहीं बल्कि संतोष देता है। अब आते हैं धर्म पर। धर्म को अक्सर केवल पूजा पाठ या धार्मिक परंपराओं तक सीमित कर दिया जाता है, जबकि वास्तव में धर्म जीवन जीने की कला है। धर्म हमें यह सिखलाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। सत्य, अहिंसा, करुणा, ईमानदारी, सह अस्तित्व, ये सभी धर्म के मूल स्तंभ हैं। धर्म हमारे कर्मों को दिशा देता है। वह हमें याद दिलाता है कि हमारा हर कार्य केवल हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करता है। जब कर्म धर्म के अनुरूप होता है तब समाज में संतुलन, विश्वास और शांति बनी रहती है। धर्म वह आंतरिक अनुशासन है जो हमें मर्यादा में रहकर आगे बढ़ना सिखाता है। अब बात करते हैं आत्मबोध की, जो जीवन का सबसे सूक्ष्म और गहरा आयाम है। आत्मबोध का अर्थ है स्वयं को जानना, यह समझना कि मैं केवल यह शरीर या विचारों का समूह नहीं हूं बल्कि एक चेतन, शांत और शक्तिशाली आत्मा हूं। आत्मबोध हमें बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठना सिखाता है। जब हम आत्मबोध में स्थित होते हैं तब प्रशंसा हमें अहंकारी नहीं बनाती और आलोचना हमें तोड़ती नहीं। आत्मबोध से भीतर स्थिरता आती है। यही स्थिरता हमारे कर्मों को शुद्ध बनाती है और हमारे धर्म को जीवंत करती है। बिना आत्मबोध के किया गया कर्म थकावट देता है और बिना आत्मबोध का धर्म केवल नियम बनकर रह जाता है। प्रिय श्रोताओं, यदि हम इन तीनों को एक सूत्र में पिरोएं तो पाएंगे कर्म जीवन की क्रिया है, धर्म जीवन की दिशा है और आत्मबोध जीवन की चेतना है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम बहुत कुछ कर रहे हैं पर भीतर से खाली होते जा रहे हैं। यही कारण है कि कर्म तो है पर आत्मबोध नहीं, गतिविधि है पर शांति नहीं। इसलिए समय की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में संतुलन लाएं। हर कर्म करते समय एक क्षण रुककर स्वयं से पूछें, क्या यह कर्म धर्म संगत है? क्या यह मेरे आत्मिक मूल्यों के अनुरूप है? जब हमारा कर्म धर्म से जुड़ता है और आत्मबोध से संचालित होता है तब जीवन केवल सफलता की दौड़ नहीं रह जाता बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाता है। अंत में यही संदेश है, कर्म हमें चलना सिखाता है, धर्म हमें सही मार्ग दिखाता है और आत्मबोध हमें शांति का अनुभव कराता है। इन तीनों का संतुलन ही सच्चे, स्वस्थ और सुखी जीवन की कुंजी है। इसी कामना के साथ आप सभी को मेरा स्नेहपूर्ण नमस्कार। फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की चर्चा ने आपके मन में नए विचारों को जन्म दिया होगा और सोच को एक नई दिशा प्रदान की होगी। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा।

0: साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं। खुश रहें, खुशियां बांटें।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं, तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

दीन मृदंग झांझ जप बाजत सापर नाचत कृष्ण कन्हैया गोपी लगे संग राज रचावत नाच चावत ताता तैया तै तैया तै तैया प्रेम गेंद गिरी यमुना दुख नित्य कियो सहनाद न थैया गोप के इंद चढ़ो बिज ऊपर गोप करत सब हा हा दैया नाय उठाय दियो गिर नक पर बंक बजावत देन चढ़ैया जगे मोहन मन में माए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

0: बेटा।
1: सुबह की किरने आई है, खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है। नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी,
0: नमस्ते।
1: जय हिंद ओ पिताजी,
0: जय हिंद।
1: नमस्ते नमस्ते है सबको, नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते।

0: आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुणेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले.
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा.
2: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. सिस्टर, आपका स्वागत है बीइंग दिस में.
3: ओम शांति.
2: ओम शांति. कुछ दिनों से हम लोग बात कर रहे थे, एक प्रश्न पूछना था आपसे. ये जो हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट्स की आप बात कर रहे थे, तो कल मैं सोच रहा था कहीं ये एक मेरे लिए बहाना तो नहीं बन गया, चलो पिछले जन्म का है, पास्ट कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि इसका मीनिंग मैं प्रॉपरली समझा नहीं.
3: सी, बहुत बार अपने जीवन को देखकर या आसपास किसी और के जीवन को देखकर माइंड में क्वेश्चन उठता है कि इतने ऑनेस्ट है, इतने हार्ड वर्किंग है, अपना 100% से ज्यादा लगाते हैं, फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही. दूसरी तरफ कोई और दिखाई देता है जो शायद दूसरे तरह के तरीके यूज कर रहे हैं, उतने ऑनेस्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतीत होता है कि उनके पास सब कुछ बहुत अच्छा है. कोई है बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, कोई हेल्दी है, कोई बचपन से भी, तो बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस उठते हैं. और फिर उठता है कि ये सब कुछ डिसाइड करने वाला कौन, मेरी डेस्टिनी, मेरा भाग्य, मेरा फेट, ये डिसाइड करने वाला कौन. और जब नहीं मिलता कि किस पर उसका ब्लेम लगाए या किसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराए, तो हम कहेंगे परमात्मा ने डिसाइड किया.
2: सिस्टर, मेरी किस्मत ऐसी है, भगवान ने मेरी ऐसी किस्मत बनाई, अब क्या करे, भगवान शायद नाराज है, पता नहीं क्या मुझसे, मैंने पिछले जन्मों का पाप है, क्या अजीब अजीब थॉट्स आती है ना.
3: राइट, मेरी किस्मत ऐसी है इज ओके. किस्मत मतलब मेरे साथ जो हो रहा है, मेरा भाग्य, माय डेस्टिनी. मेरी किस्मत ऐसी है, ये फाइन दिख रही है मुझे कि ये मेरी किस्मत ऐसी है, लेकिन ये किस्मत बनाई किसने, वो आंसर अगर ठीक मिल जाए तो एटलीस्ट उस किस्मत में कुछ चेंजेस लाने के लिए हमें ये पता होगा कि हमें किसके पास जाना है. तो दो बिलीफ सिस्टम, अगेन वी सेड बिलीफ सिस्टम, थॉट, डेस्टिनी, राइट. तो दो बिलीफ्स है इसमें जो हमने बचपन से सुने. दो बिलीफ्स क्या, जो आपने एक कहा भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी लिखी, सारी दुनिया भगवान की मर्जी से चलती है, परमात्मा मेरा भाग्य लिखता है. दिस वॉज वन बिलीफ सिस्टम विच वी हर्ड एज चिल्ड्रन. सेकेंड बिलीफ सिस्टम वॉज जैसा कर्म आप करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा. दोनों बिलीफ सिस्टम सुने हैं, दोनों बिलीफ सिस्टम हर रिलीजन में है आज.
2: इंग्लिश में भी कहते हैं एज यू सो सो यू रीप,
3: एंड ये भी कहते हैं एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल. तो दोनों कहते हैं,
2: शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं है.
3: अब आप सोचो, पहली बात, ये दोनों बिलीफ सिस्टम चेक करने से पहले पहला तो क्वेश्चन मन में ये उठना चाहिए कि दोनों कैसे वैलिड हो सकते हैं. सी, इफ सपोज आई से योर गॉड राइट नाउ फॉर मी, ओके, सपोज दिस इज एंटिटी गॉड, एंड आई से मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है ये आपकी मर्जी से हो रहा है, कि मैंने आपको वो पावर दे दी, परमात्मा गॉड, आपकी मर्जी से मैं उठ रही हूँ, चल रही हूँ, बैठ रही हूँ, खा रही हूँ, आपकी मर्जी से. ये वन बिलीफ सिस्टम. दूसरा बिलीफ सिस्टम, जैसा कर्म मैं कर रही हूँ वैसा फल मुझे मिल रहा है, तो उसमें आपका तो कोई रोल ही नहीं है. तो दोनों बिलीफ सिस्टम इतने कॉन्ट्रडिक्टरी है, इतने अलग है, कि एक बिलीफ सिस्टम में पूरा ही कंट्रोल आपका है कि आपकी मर्जी से सब कुछ, और दूसरे बिलीफ सिस्टम में पूरा ही कंट्रोल मेरा है और आपका बिल्कुल नहीं है. एंड वंडरफुल इज कि हम बचपन से दोनों बिलीफ सिस्टम को सुनते हैं और दोनों को एक्सेप्ट किया है.
2: हम एक्सेप्ट तो हम भगवान वाले को कर लेते हैं ना, कि कुछ भी बुरा हुआ तो यार भगवान की मर्जी,
3: लेकिन ये वाला भी सब मानते हैं ना, जैसा कर्म अच्छे कर्म किए होंगे, इसका अच्छा भाग्य है, ये श्रेष्ठ कर्म करके आया होगा, कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं गलत कर्म नहीं करो, इसका रिटर्न अच्छा नहीं होगा. दोनों चल रहे हैं, सारा दिन दोनों चल रहे हैं, सिर्फ जब कोई बहुत बड़ी बात होती है वो इट्स इजियर टू से भगवान की मर्जी. तो एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम बिलीफ सिस्टम्स को सुनते हैं तो पहले चेक तो करें कौन सा राइट है, कौन सा सच है, वो तो सेकेंडरी बात, लेकिन दो कॉन्ट्रडिक्टरी बातों को कैसे सच मान सकते हैं.
2: सही बात.
3: क्वेश्चन भी नहीं किया मन ने कभी कि दोनों बातें सही कैसे हो सकती है.
2: हाँ, एक सही कह रहे हैं आप,
3: ये तो
2: प्रश्न क्यों नहीं किया,
3: नहीं करते क्वेश्चन,
2: मतलब बुद्धि नहीं चलती है जब बिलीफ सिस्टम में,
3: नहीं ऐसा नहीं सुनते
2: नहीं,
3: हैं।
2: मुझे अभी ये दिख रहा है आपसे बात करते करते कि बिलीफ सिस्टम इतना हावी हो जाता है, इतना स्ट्रांग और इतना हैवी हो जाता है सर, कि हमने कभी अपना मन उसमें बुद्धि लड़ाई नहीं की ये
3: लॉजिक देखिए। देखो बिलीफ सिस्टम हावी होता है वो तो फैक्ट है, बिलीफ सिस्टम ही हावी होने वाला है। हावी मीन्स स्ट्रांग, सी इट्स लाइक आपका कंप्यूटर, उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही सबसे पावरफुल चीज है। आप या विंडोज यूज कर रहे हैं या आप मैक यूज कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये दो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लैरिटी,

0: एक बार आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम चूज किया और अपने कंप्यूटर पे उसको इंस्टॉल किया, अब आप जो कुछ करेंगे उस कंप्यूटर पर वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम से चलेगा, सॉफ्टवेयर्स भी वो वाले ही चलेंगे जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करेंगे। लेकिन आप कहें मैं ये भी चलाऊं,
1: हाँ
0: ये नहीं होगा।
1: इसलिए लेटेस्ट वर्जन ऑफ ओएस लेते ना,
0: हाँ,
1: ताकि दूसरे
0: एब्सोल्युटली
1: अब ऑपरेट मिल जाएं,
0: दूसरे सॉफ्टवेयर भी उस पे,
1: तो पुराने ओएस पे नए सॉफ्टवेयर नहीं आते,
0: नहीं चलेंगे। और फिर समय के साथ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी क्या करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, राइट? यू हैव टू अपग्रेड। अपग्रेड मीन्स चेक कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे लिए कंफर्टेबल है। देखो समय बदलता है, वातावरण बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, बीच बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करना होता है।
1: लेकिन जैसे आपने कहा उस दिन, कुछ ना कुछ सुबह उठ के पढ़ लेना चाहिए, समथिंग
0: हाँ,
1: स्पिरिचुअल
0: right.
1: ये भी तो अपग्रेड होते ही है ना इस इन चीजों से,
0: नेचुरली
1: सफाई भी होती है, हम जो क्लीन भी करते हैं
0: एब्सोल्युटली
1: अपने डिस्क को, और जो भी आप कहते हैं
0: हार्ड डिस्क को क्लीन नहीं हाँ, करेंगे अगर तो इतना कुछ सारा अक्यूमुलेट हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, मशीन भी हाईली एफिशिएंट है, लेकिन क्लटर्ड है, टू मच डेटा है एंड यूजलेस डेटा है, तो वो अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना। तो इसलिए जो आपने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है, यस ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रांग है, लेकिन क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है सो वी हैव टू बी केयरफुल कि राइट ऑपरेटिंग सिस्टम हो, क्योंकि लाइक वी सॉ बिलीफ सिस्टम, थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनैलिटी, डेस्टिनी, विच मीन्स बिलीफ सिस्टम विल क्रिएट डेस्टिनी। अगर मैं अपने जीवन में एक गलत बिलीफ सिस्टम लेकर चलूं तो उसका प्रभाव डायरेक्ट मेरे भाग्य पर आ रहा है, इसलिए बिलीफ सिस्टम की चेकिंग बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है।
1: जैसी मान्यता वैसा भाग्य,
0: वैसा भाग्य जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से सब थॉट्स चल रहे हैं। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक हो और मैं थॉट को चेंज, जैसे बहुत कॉमन है गुस्सा नेसेसरी है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में बैठा हुआ है, स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम। थॉट्स पे नहीं नहीं आज मुझे प्यार से बात करनी है, आज मुझे शांति से सबके साथ चलना है, वो नहीं होगा, वो होगा ही नहीं। एक बार
1: बिलीफ सिस्टम को कैसे निकालें फिर?
0: बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ता है, थॉट को नहीं चेंज कर सकते। मतलब थॉट को अगर चेंज करेंगे एक बार होगा, दूसरी बार फिर गुस्सा करेंगे।
1: पता नहीं कितने जन्मों से बिलीफ सिस्टम आया हुआ है, बचपन से आया हुआ है, ये जाता नहीं है ना फिर,
0: जाता नहीं। इट्स अ प्रोग्राम, बिलीफ सिस्टम भी एक प्रोग्रामिंग ही है ना, उसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक नया बिलीफ सिस्टम लेंगे, पुराने बिलीफ सिस्टम के साथ काफी समय से चल रहे हैं, डेस्टिनी देखी क्या बनी,
1: इसको पैरेलल चलाएं,
0: थोड़े दिन के लिए
1: इसको
0: पुराने वाले को साइड पर रखिए। क्यों पैरेलल नहीं चल सकता? क्योंकि पुराना वाला बहुत स्ट्रांग है। इफ आई से गुस्सा नेसेसरी है एंड अब आई से प्यार से सबसे अच्छा काम हो सकता है, तो मैं अब दो को ऑपोजिट को पैरेलल नहीं चला सकते ना। हम ये कह सकते हैं थोड़े दिन के लिए मैं एक नया बिलीफ सिस्टम लेकर ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ, लेट मी सी व्हाट इज द रिजल्ट।
1: सही बात।
0: इफ मेरा काम हो गया अच्छी तरह से, मेरे रिश्ते अच्छे होने लगे, मुझे अच्छा होने लगना, लाइट फील लगने लगा, देन आई विल से दिस बिलीफ सिस्टम इज बेटर, हेल्दी, दिस इज द ट्रूथ, तब हम पुराने वाले को हटा देंगे।
1: ट्राई करने में क्या है,
0: ट्राई करने में क्या है, यही तो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स एक्सपेरिमेंटेशन, स्पिरिचुअलिटी डजेंट मीन, अभी तक जो आपने बोला ना हमने बुद्धि क्यों नहीं लगाई उस पर, क्योंकि हमने क्या किया, किताब पढ़ी, सत्संग में गए, कहाँ ले रहे हैं विजडम, ऐसी जगहों पर जाएंगे ना, या किसी का प्रवचन सुना और ऐसे ऐसे किया।
1: वाह वाह,
0: यस नहीं, यस अच्छा लगा सुनते हुए। देखो कहीं भी कोई बात सुनेंगे जो पॉजिटिव होगी, पावरफुल होगी,
1: अच्छी म्यूजिक भी लगे, हाँ, तो इतना अच्छा मजा आता है, मन
0: तो अच्छे लगे,
1: हो जाते हैं
0: मन को, एक जैसे यू नो जिसको कहेंगे सूदिंग, जैसे कोई मसाज कर रहा है मेरे मन को, मन इतना थका हुआ है, इतना थका हुआ है, कोई आकर उस पे मसाज कर रहा है माइंड को, ब्यूटिफुल वर्ड्स, अच्छे भजन, सूदिंग लेक्चर, बहुत अच्छा लगता है। अब वो सूदिंग इफेक्ट में इतना हम खो जाते हैं कि उसके ऊपर लॉजिक कई बार नहीं यूज करते हैं कि ये राइट या ये राइट, दिस इज कंफर्टेबल और नॉट, वी जस्ट से हाँ सो ब्यूटीफुल, ऐसे ऐसे ऐसे चले जाते हैं
1: जैसे एक मधुमक्खी।

0: किसी रिएक्ट भी कर जाएगी, कोई कुछ भी, लेकिन आप अपनी डोज लेते रहेंगे और फाइनली इतनी डोज लेने के बाद आपको अगर डॉक्टर को आप बोलो भी ना कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, बोलेगा वेट, कंटिन्यू टेकिंग एटलीस्ट फॉर 3 डेज, आप 3 दिन लो, उसके बाद देखते हैं कि आपको दवाई सूट कर रही है कि नहीं। ऐसे नहीं पहले दिन ही ली, पहली डोज ली और आपने कहा, क्योंकि बॉडी एक नई चीज ले रही है, उसको भी उसके साथ एडजस्ट होने में वो दवाई का अपना काम। सिमिलरली एक नया बिलीफ सिस्टम, पहले दिन प्यार से बात की, व्यक्ति ने काम ही नहीं किया मेरा, हम कहेंगे ये क्या है, ये थोड़ी वर्क करता है काम ऐसे, मैं नहीं, कांट गिव अप लाइक दिस, कांट गिव अप लाइक दिस। सो वी हैव टू फिक्स अ टाइम पीरियड कि इतने टाइम तो ये डोज लेनी है नई वाली, एंड फिर रिजल्ट की डेफिनेशन कि जब रिजल्ट को चेक करना है कि डिड दिस बिलीफ सिस्टम वर्क, तो ये सब पैरामीटर्स पे चेक करना है जो आपने अभी बताया। मन लाइट फील कर रहा है, शरीर तो ऑब्वियसली अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, मन खुश है तो लोगों के साथ मेरा रिश्ता बेटर होता जाएगा, काम डेफिनेटली होता जाएगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपने कहा, कार्मिक अकाउंट मेरे जो क्रिएट हो रहे हैं सबके साथ, आज काम होता गया होता गया, लेकिन हर आत्मा के साथ कैसा कार्मिक अकाउंट क्रिएट होता गया। दर्द देते गए दर्द आता जाएगा, दर्द देते जाएंगे दर्द आता जाएगा, काम होता गया काम होता गया।
1: ये जो दर्द देते गए और दर्द आता जाएगा, इस साइकिल में मेरा जब दर्द बढ़ता है तो मेरा और गुस्सा, फिर और इरिटेशन नहीं बढ़ेगा
0: नेचुरली।
1: वो पॉइंट तो सोचा नहीं
0: नेचुरली ना,
1: मैंने दर्द आपको दिया, फिर आया, फिर दिया, फिर आया, अगर फिर और चिड़चिड़ा हो जाऊंगा मैं, और पकता जाएगा।
0: क्यों? क्योंकि अभी मैंने गुस्सा किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने अभी गुस्सा किया, गुस्सा करते ही मेरी बैटरी थोड़ी कम हुई, टर्बुलेंट एनर्जी यूज की, फिर दर्द क्रिएट हुआ, मतलब पावर, आत्मा की पावर थोड़ी सी कम हुई, फिर आपको दिया, तो आपने भी मेरे बारे में कैसा सोचा, फिर
1: आपको लौटाया अंदर से,
0: लौटाया नहीं, आपने मेरे बारे में गलत सोचा, गलत नहीं भी सोचा, आप सिर्फ हर्ट ही हो गए उस बात से, उदास ही हो गए, तो आपकी वाइब्रेशन तो है, व्हाट विल गो विल कम बैक। तो आपने मेरे बारे में तो सोचा तो मेरा थोड़ा सा और कम हो जाएगा, अब मैंने आपके साथ किया, फिर एक और के साथ किया, फिर और के साथ किया, धीरे धीरे वो मेरा बन गया संस्कार। अब ये संस्कार बड़ी बातों में नहीं, छोटी बातों में भी आने लगा। अब हर बार जब ये आया, हर बार ये मेरी पावर को कम किया। अब ये एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट है, गुस्सा कर करके मेरी पावर जो कम होती है, वो संस्कार की सिर्फ बात नहीं है, वो ओवरऑल आत्मा की पावर कम होती है। सी, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, एक ही सोर्स है, ऐसे नहीं ये काम के लिए अलग, ये काम के लिए अलग, ये रिश्ते के लिए अलग, चलो ये रिश्ते में मेरे को प्रॉब्लम है लेकिन मेरे बाकी रिश्ते ठीक है, ये काम में प्रॉब्लम है बाकी सब चीजों में तो मैं ठीक हूँ। एनर्जी इज वन। सपोज आपके अंदर 20 ब्यूटीफुल संस्कार्स है, लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग, हेल्पिंग, एवरीथिंग, और एक सपोज जेलसी का है या एक एंगर का है, कोई भी एक ऐसा है, लेकिन वो एक बहुत स्ट्रांग है, तो वो मेरी बैटरी ये है, लेकिन वो एक जैसे मेरी बैटरी को
1: डिप्लीट
0: डिस्चार्ज करता है बहुत, एंड डिस्चार्ज जो होता है, क्योंकि वातावरण बहुत पावरफुली नेगेटिव है इस टाइम, तो जो लीकेज है कंपेयर टू द चार्जिंग बहुत फास्ट होती है। अब एक बार ये लीकेज होने शुरू हो जाती है, मतलब सोल पावर कम हो रही है, इट्स पावर ऑफ द सोल, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट वन क्वालिटी ओनली। जैसे हम कहेंगे गुस्सा किया तो शांति कम हो रही है, राइट, नफरत किया तो प्यार कम हो रहा है, इट्स नॉट ओनली दैट, इट्स लाइक ये किया तो आत्मिक शक्ति कम हो रही है
1: और कार्मिक अकाउंट भी बन रहा है,
0: कार्मिक अकाउंट तो बन रहा है। ये आत्मिक शक्ति कम होने से उसका इफेक्ट हमारी सारी पॉजिटिव क्वालिटीज पर आएगा। पॉजिटिव क्वालिटीज को यूज करने के लिए आत्मा को शक्तिशाली होना होगा। अब जब ये आत्मिक शक्ति कम होगी तो विल पावर पे भी इफेक्ट होगा। आज क्यों लोग एडिक्शन नहीं छोड़ पाते हैं, हम अपनी छोटी छोटी आदतें नहीं छोड़ पा रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं बड़े संस्कारों को छोड़ने का, अभी तो हम छोटी आदत भी नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि सोल पावर कम है।
1: इसलिए हिंदी में कहते हैं ना आत्मिक बल,
0: आत्मिक बल, सोल पावर। इसलिए जब हम कहेंगे कि नए बिलीफ सिस्टम का रिजल्ट, तो रिजल्ट तो इतना लॉन्ग टर्म है कि वी विल बी सरप्राइज्ड विद द रिजल्ट दैट

0: आउट ऑफ कन्वीनियंस दोनों में से किसी को भी यूज करते गए,
1: जब मर्जी है उसको यूज कर ले, जब मर्जी
0: right.
1: उसको यूज कर ले।
0: जैसे अगर मैंने देखा कि मेरे पड़ोसी के साथ जीवन में कुछ गलत हो रहा है, मैंने कहा कर्म ही ऐसे किए थे, कर्म ऐसे किए थे, क्या क्या उसने किया है, होना ही था ऐसा। मेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया,
1: ना इंसाफी।
0: अपने साथ नहीं बोलेंगे मैंने कर्म ऐसे किए थे। सी सो वी स्टार्टेड यूजिंग बोथ, बोथ फॉर वैलिड फॉर अस, कि कब क्या यूज करना, कब क्या अप्लाई करना। अब हमें दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा एंड चेक कर लें कि कौन सा यूज करना है। वो वाला यूज करें जो आपको एम्पावर करेगा, आपको शक्तिशाली बनाएगा। दोनों की चेकिंग कर लें। भगवान हमारा भाग्य लिखता है, गॉड राइट्स आवर डेस्टिनी, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिखे तो हमारा भाग्य ऐसा नहीं होगा, इट विल बी अ ब्यूटिफुल डेस्टिनी, परफेक्ट डेस्टिनी।
1: एक सत्संग में सिस्टर एक आदमी ने बोला था कि एक आदमी था जो बार बार बोलता था चोरी करता था, बोलते मैं क्या करूं, भगवान ने मेरा भाग्य बनाया, भगवान करवाता है मुझसे चोरी। फिर दूसरे दिन करते, तीसरे दिन, तो फिर उसको उसके सत्संग में बोला उसको कि ठीक है, जब पुलिस पकड़ के मारेगी, जेल में डालेगी, तब भी यही कहना कि देखो ये भी भगवान ने लिखा और वो भी एक्सेप्ट करना
0: चाहिए।
1: फिर वहां एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
0: एक्चुअली ये क्यों सिखा है, सी दिस इज ऑल्सो के रिलीजन ने या फिलोसोफर्स ने हमें क्यों सिखा है। ये इतनी सुंदर बात आपने बताई है। जब कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है, हमारा बहुत चिंतन चलता है कि क्यों क्यों क्यों। इम्पोर्टेंट, एक परिस्थिति को फेस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज पहले चाहिए होती है, परिस्थिति को एक्सेप्ट करो। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी ना, नेक्स्ट स्टेप्स टूवर्ड सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि उलझन में होते हैं। परिस्थिति एज इट इज को एक्सेप्ट करना, जैसे लोगों को एक्सेप्ट करना, परिस्थिति को एक्सेप्ट करना होता है। अब हम कर नहीं पाते थे तो फिर किसी ने कहा भगवान ने की मर्जी, एक्सेप्ट कर लो, ताकि हम उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। फिर उसको और मोटिवेट करने के लिए हमें कहा भगवान ऐसी बात देता ही उसको है जिसके अंदर उसको फेस करने की पावर होती है। दिस वॉज ऑल बींग डन विथ चिल्ड्रेन, यू नो, एक बच्चे के साथ। कैसे हम बोलते हैं बाहर नहीं जाना, रात को भूत है, क्योंकि शायद उसको उस समय, उस एज में उससे ज्यादा गहरी बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए इंटेंशन क्या है, बस वो जाए नहीं ना अंधकार में, इसलिए किसी भी तरह रोक दिया उसको, क्लैरिटी तो नहीं दी उसको। इसी तरह हमें गलत कर्म करने से बचाना था तो कहा भगवान हरेक के अंदर है, भगवान सब कुछ देख रहा है, भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। तो ये सब करने से हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी, इंटेंशन बहुत सुंदर था।
1: लेकिन मुझे आप वाली बात ज्यादा सूट करती है कि जब मैं कहता हूँ कि हाँ मैं आज जो चीज भी, जिस चीज से सपोज मैं दुख वाला एग्जांपल लेता हूँ, सुख का नहीं, चलो आज मुझे कोई दुख दे रहा है, ठीक, मेरा पास कार्मिक अकाउंट के साथ था, तो जैसे मैंने एक्सेप्ट किया उस पॉइंट को, तो दर्द तो हुआ, तकलीफ भी हुई, लेकिन मैंने बोला ठीक है भाई, पुराना कार्मिक अकाउंट है और मेरा ही किया हुआ है। मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि मेरे से मेरी गाड़ी का कहीं लग जाए ना थोड़ा स्क्रैच, तो मैं लगा हाँ यार लग गया मुझसे,
0: वेरी गुड,
1: मेरी नई गाड़ी, मेरा ड्राइवर बोले दिखता नहीं, ये नहीं वो नहीं, निकाल दूंगा, पैसे काट दूंगा, कितना गुस्सा आता है। तो वैसे मुझे जब एक्सेप्टेंस हुआ कि हाँ भाई मैंने किया था, मुझसे गिर गया दूध, मुझसे नुकसान हो गया, मेरे से कांच टूट गया, मुझसे ये कपड़े मेरे खराब हो गए, एयरहोस्टेस प्लेन में मुझ पर गिरा दी और मेरे से गिर जाए, चाहे कितना अंतर हो, तो मुझे इतनी अच्छी लगी आपकी बात कि भाई ठीक है मैंने किया, आज मैं भुगत रहा हूँ बोलू या फेस कर रहा हूँ बोलू या कम्प्लीशन कर रहा हूँ बोलू,
0: right.
1: जैसे मैंने लोन लिया बैंक से, आज चुका रहा हूँ।
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि
1: ये
0: अगर
1: बहुत पसंद आया इंस्टेड ऑफ दैट फॉल्स बिलीफ से, तो ये मुझे क्लैरिटी
0: right.
1: देती है।
0: इट्स नॉट ओनली फॉल्स बिलीफ, इट इज डेस्टिनी चेंज हो जाती है ना। अगर हम ये बिलीफ लेकर चले कि परमात्मा मेरा भाग्य लिख रहा है, सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो मेरा जीवन जीने का तरीका कैसा होगा। हर स्टेप पे बातें आएंगी, हम कहेंगे भगवान मेरे से खुश नहीं, भगवान की मर्जी से, वेट करो भगवान अच्छा करेगा ही, फिर भगवान पर फेथ रखो, भगवान सब ठीक कर देगा, मतलब फिर भगवान को बोलेंगे सब ठीक कर दो, डेस्टिनी। और यही दूसरा बिलीफ सिस्टम कि मैंने, जैसे आपने कहा, मेरा कोई किया हुआ कर्म है जो मेरे सामने आया है, अब मुझे इसको प्यार से फेस भी करना है और आगे के लिए ठीक
1: भी करना है।

0: ठीक भी करना है, अब डेस्टिनी अलग. सो इट्स गोइंग टू बी टू कम्प्लीटली, जो भगवान की मर्जी से चल रहा है वो डेस्टिनी में आई एम गोइंग टू बी लाइक दिस, मेरे हाथ में कुछ नहीं, वेट करो भगवान ने प्रॉब्लम दी, इंतजार करो भगवान
1: अंदर अंदर दुख भी,
0: दुख तो होगा ही क्योंकि प्रॉब्लम ठीक भी तो नहीं हो रही. हम जब ठीक करेंगे नहीं तो वो ठीक होगी नहीं. आपका कंप्यूटर खराब हो जाए, आप ऐसे लेकर बैठ जाओ, हाय भगवान ने मेरा कंप्यूटर खराब कर दिया, ऐसा क्यों किया, फिर रोज उसको पूजा करो, प्लीज मेरा कंप्यूटर ठीक कर दो, प्लीज मेरा कंप्यूटर ठीक कर दो. नहीं, भगवान जरूर ठीक करेगा, हम उसके बच्चे हैं, वो जरूर ठीक करेगा, वेट एंड वॉच. और एक है, मेरा कंप्यूटर खराब हुआ है, मैंने ही गलत बटन दबाया था, अब मैं बेटर डू समथिंग टू इट एंड जल्दी उसको ठीक करूं. टू डिफरेंट थिंग्स. आई विल गेट सेट टू डूइंग इट राइट, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसको ठीक मुझे करना है. हाँ, परमात्मा से शक्ति लेंगे, तरीका सीखेंगे, ज्ञान लेंगे, लेकिन उसको ठीक मुझे करना है. तो फिर डेस्टिनी अलग. आपका चाहे आपके सामने कितने भी कार्मिक अकाउंट्स आए, बड़े बड़े आ जाए. आज सुबह ही मुझे एक बहन कह रही थी, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, दूसरी पहले ही रेडी वेट कर रही है, कितने कब खत्म होगा. सो ये खत्म नहीं होना है, ये खत्म नहीं होना है, ये कार्मिक अकाउंट है जो सामने आएंगे. लेकिन इक्वेशन राइट है तो पता है जीवन की जर्नी क्या है, पुराने कार्मिक अकाउंट को सेटल करते जाना और नए करने वाले कर्म पर ध्यान रखना. अब इसमें भी देखो, जो कहेगा भगवान की मर्जी से, वो अपने नए कर्मों पर भी अटेंशन नहीं रखेगा. लेकिन जिसको ये अवेयरनेस होगी अब सारा दिन कि कार्मिक अकाउंट कितनी पावरफुल चीज है, तो वो पुराने को तो सेटल करेगा ही, लेकिन प्रेजेंट में कितना अटेंशन रखेगा कि अब ना मेरे से कुछ किसी को दुख मिले, अब ना मेरे से कोई ऐसी बात हो जाए जो मेरे सामने फिर बहुत भारी होकर आए, डेस्टिनी चेंज हो जाएगी.
1: ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मिला सिस्टर, लेकिन हमें अगले एपिसोड में डिस्कस करना पड़ेगा. थैंक यू सो मच.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति. थैंक यू.
2: थॉट्स are influenced by information, past experiences, and belief systems. Every situation will be perceived through the belief system. Anger is necessary. Happiness is an achievement. Stress is natural. Life is a competition. Are some of our belief systems today. Even one wrong belief system reduces the power of the soul. If we hold the belief system, anger is necessary, then we will use anger to get work done. Even if we decide to work peacefully, it will be temporary. We need to create a new belief system. Anger is damaging. Love is the way to get work done. When we experiment with a belief system, check if we are feeling lighter, health is improving, relationships are becoming simpler, and karmic accounts are settling. Then that belief system is right.
3: Puneri Awaz 107.8 FM, World Renewal Spiritual Trust ka samudayik radio. Khush raho, khushiyan baato.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मज्जन भाई, सज्जन भाई, सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राधोपा, ओ धोंडीपा, आईका ओ आईका, ओ जनरल सिंह, ओ जनरल सिंह, अरे तुझे भी सुनो पापे।

0: चूड़ी फंस गई।
1: अरे ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आप, मेरी लड़ी है।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

कहे वहाँ चली, कोई कहे यहाँ चली, कोई कहे वहाँ चली, मन ने कहा पिया के घर।

कहे वहाँ चली, कोई कहे यहाँ चली, कोई कहे वहाँ चली। मन ने कहा सिया के गांव चली रे, सिया के गांव चली रे, चली रे चली रे मेरी नाव चली रे। मन के मित मेरे मिल जा जल्दी, दुनिया के सागर में नाव मेरी चलदी। मन के मित मेरे मिल जा जल्दी, दुनिया के सागर

मेरी पियो पियो बोले मेरे मन मुझको बता मेरी मंजिल का पता मेरे मन मुझको बता मेरी मंजिल का पता बोल मेरे साजन की कौन गली रे बोल मेरे साजन की कौन गली रे चली रे मेरी।

0: चली रे मेरे नाव चली रे, कोई कहे यहाँ चली कोई कहे वहाँ चली, मन ने कहा पिया के गाँव चली रे, पिया के गाँव चली रे, चली रे चली रे।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, When they are under stress, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सफर अलिफ सनी के साथ रेडियो बुनेरी आवाज 107.8 FM पर। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आवाज मैं ना दूंगा।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आपका हम सफर सनी, लेकर रेडियो प्रोग्राम ख्वाबों का सफर। आइए आज के इस सफर को खूबसूरत और संगीतमय बना देते हैं और कुछ फिल्मी बातें करेंगे। फिल्मी बातें करेंगे, वो भी कुछ कहे और कुछ अनकहे। जी हाँ, 1948 की मैं बात करना चाहूंगा। उस समय एक फिल्म आई थी जिसका नाम था शहीद। आजादी के एक साल बाद ये फिल्म 1947 में आजादी हमको मिली और ये फिल्म रिलीज हुई 1948 में मार्च में। तो ये भारत की आजादी पर आधारित फिल्म थी जिसमें दिलीप कुमार, कामिनी कौशल, चंद्रमोहन और लीला चिटनिस ने काम किया। कमर जलालाबादी ने इस फिल्म के डायलॉग्स लिरिक्स लिखे और गुलाम हैदर साहब ने इसे संगीत से संवारा था। देश प्रेम पर आधारित ये फिल्म बहुत ही पॉपुलर उस समय रही और देश प्रेम का एक बहुत ही खूबसूरत गीत भी इसमें था, जिसको अभी हम नहीं सुनाएंगे क्योंकि हमारा टारगेट है आज के शो में हम उन्हीं गानों को सुनाएंगे आपको 50s और 60s का, जो बी अक्षर से शुरू होता है। तो इस फिल्म में एक बी अक्षर से शुरू होता है, वो गीत ये।
3: बदनाम ना हो जाए, बदनाम ना हो जाए मुहब्बत का फसाना।
2: सुरेंद्र कौर का गाया हुआ गुलाम हैदर का संगीत से सजा ये गीत उस समय बहुत पॉपुलर था। तो चलिए इस गीत का आनंद उठाते हैं। और कहते हैं ना, तारे और इंसान में कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही किसी की खुशी के लिए खुद को तोड़ लेते हैं। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: तेरी आंखों में जब से मैंने अपना अक्ष देखा है, मेरे चेहरे को कोई आईना अच्छा नहीं लगता। जी हाँ दोस्तों, मोहब्बत में ऐसी कई बातें होती हैं। और जो गीत हमने अभी सुना, बहुत ही खूबसूरत गीत, बदनाम न हो जाए मोहब्बत का फसाना। जी हाँ, सुरेंद्र कौर की आवाज में आपने ये गाना सुना, गुलाम हैदर का संगीत, शहीद फिल्म 1948 का। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 1960 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था चौदहवीं का शान।

जवाब हो। जी हाँ, ये गाना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन मैं आपको इस फिल्म के बारे में बात बताने जा रहा हूँ। ये गाना नहीं सुनाऊंगा क्योंकि ये हमारे टारगेट से अलग है। आगे हम जरूर सुनाएंगे, लेकिन आज हम बी अक्षर से जो गाने शुरू होते हैं 50s और 60s के बी अक्षर वाले सिलेक्टेड गाने आपको सुना रहा हूँ। चौधरी का चांद, ये फिल्म 1960s में रिलीज हुई थी और इसमें लखनऊ शहर का, वहां का कल्चर की बातें इसमें दिखाई गई थी और खासतौर पर नवाबी स्टाइल इसमें देखने को मिला। और यहाँ पर एक स्टोरी थी दो दोस्तों की। दो दोस्त एक ही लड़की से प्यार करते हैं जिसका नाम है जमीला। अब ये दो दोस्त असलम और नवाब, दोनों में से किसी एक को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। जमीला को इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। तो इस तरह के लव स्टोरी, ये ट्रायंगल लव स्टोरी है और आगे चल के ये जो ट्रायंगल लव स्टोरी वाली फिल्में हैं बहुत ज्यादा बनी है। अभी भी नए नए फिल्में बनती हैं तो इस तरह के कहीं स्टोरीज हमको कॉमन स्टोरी देखने को मिलता है। तो आइए, इसमें एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जो अक्षर बी से शुरू होता है,

जी हाँ, शकील बदायूं का लिखा लता जी का गाया हुआ और रवि का संगीत से सजा ये गीत चौधरी का चांद इस फिल्म का अभी हम सुनेंगे। वैदा रेमन, जॉनी वॉकर, रहमान गुरुदत्त पर फिल्माया गया था। जैसे कि थोड़ा रूठना और मनाना, ऐसे कुछ भाव इस गीत में नजर आते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं हूं आपका हम सफर सनी। कहते हैं दोस्तों, कोई भी रिश्ता न होने पर भी जो रिश्ता निभाता है वो रिश्ता एक दिन दिल की गहराइयों को छू जाता है। जी हाँ, ऐसे ही कुछ प्रेम भरा एक फिल्म आई थी 1960s में, जिसका नाम था संजोग। और ये संजोग नाम जो है बाद में बहुत पॉपुलर रहा और इस नाम से पहले भी और बाद में भी फिल्में बनी हैं। जैसे कि 1971 में एक फिल्म आई थी, उसके बाद 1985 में आई थी, उसका भी नाम संजोग था। 1960 में जो फिल्म बनी जिसमें प्रदीप कुमार, अनीता गुहा एंड शोभा कोटे ने रोल प्ले किया था उस फिल्म में, यानी 1960 में ये जो फिल्म बनी संजोग, इसके सारे गाने भी हिट थे, जैसे कि वो भूली दास्तां, एक मंजिल राही दो, इस तरह के कई गीत जो बने और उसके साथ ये

जी हाँ, जो भी अक्षर से शुरू होता है। एक प्रेमिका अपने प्रेमी की याद में ये गीत गा रही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, मदन मोहन का संगीत, फिल्म संजू 1960s का ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, खाबों का सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही प्यारे प्यारे गीत, ओल्ड मेलोडीज आप सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये दो लाइनें मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये दो लाइनें जो है बड़े काम की लगती हैं। देखिए, शिकायतों की पाई पाई जोड़कर रखी थी मैंने, उसने गले लगाकर सारा हिसाब बिगाड़ दिया। जिसने भी ये लाइनें लिखी हैं, बहुत खूबसूरत लाइनें लिखी हैं। और जब मैंने इन लाइनों को जब पढ़ा, तो एक बार पढ़ने के बाद फिर से दोबारा उसे वापस पढ़ा और बहुत क्या कहते हैं, एक सुकून मिला, एक खुशी मिली। तो आशा करता हूं आपको भी ये लाइनें बहुत पसंद आई होगी। एक बार दोबारा आपको सुना देता हूं। शिकायतों की पाई पाई जोड़कर रखी थी मैंने, उसने गले लगाकर सारा हिसाब बिगाड़ दिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और प्रेम कहानी में या प्यार में वैराग्य का एक समय आता है जब दिल में तड़पन होती है और मन में बहुत सी शिकायतें आती हैं, लेकिन ऐसे में कुछ पल के लिए अगर एक मुलाकात हो जाए तो सारा शिकायत खत्म हो जाता है। और यही प्यार है। गीले शिकवे तो प्यार में होते ही है, लेकिन एक पल में वो खत्म हो जाए, ये सच्चा प्यार है और ये सच्ची कुर्बानी भी है। लेकिन आज के समय में लोग हर छोटी बड़ी बात को जिंदगी भर याद रखते हैं और खुद को तो दुखी करते ही हैं और दूसरों को भी इसके कारण दुखी होना पड़ता है। एक बार फिर से इन लाइनों को दोहरा देता हूं मैं। शिकायतों की पाई पाई जोड़ कर रखी थी मैंने, उसने गले लगाकर सारा हिसाब बिगाड़ दिया। तो आइए खुद को प्यार करें और वही प्यार दूसरों को भी दे। आप सुने हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबोखा सफर। मैं हूं आपका हम सफर सनी। आइए एक खूबसूरत गीत की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। ये

बहुत दिन बीते रे भाई। भरत व्यास का लिखा यह खूबसूरत गाना लता मंगेशकर का गाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म थी संत ज्ञानेश्वर, 1964 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। तो आइए इस गाने का आनंद उठाते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। ख्वाबों का सफर इस रेडियो प्रोग्राम में मैं हूं आपका हम सफर सनी। कहते हैं मेहरबा हो के बुला लो मुझे, चाहो जिस वक्त। मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी ना सकूं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। चलिए 1964 की बात करते हैं। उस समय एक और फिल्म आई थी, अपने हुए पराये। इसमें एक लव स्टोरी है, दो मुंह बोली बहने जैसे कि लता और रेखा को दिखाया गया है। लता जो है गोद लिया गया है और रेखा उनके खुद की संतान रहती है। बचपन बहुत ही खुशियों से निकल जाता है और जवानी में एक डॉक्टर उनके घर में प्रवेश करता है और दोनों बहनें डॉक्टर पर प्यार करने लगते हैं और इसमें लता जो है डॉक्टर के साथ शादी करने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद फिल्म में क्लाइमेक्स तब आता है जब लता मर

0: होती है और कोर्ट में फिल्म खत्म करते हैं एक हैप्पी एंडिंग के साथ। तो आइए इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, अपने हुए पराये 1964 का।
1: बहार बनके वो मुस्कुराए हमारे गुलशन में, बहार बनके वो मुस्कुराए हमारे गुलशन में।
0: शैलेंद्र का लिखा, लता का गाया, शंकर जयकिशन का संगीत से सजा ये खूबसूरत गीत अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लता मंगेशकर का खूबसूरत आवाज में अभी आप एक मस्ती भरा गीत सुन रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ख्वाबों का सफर इस रेडियो प्रोग्राम में। मैं हूं आपका हम सफर। जी हाँ, आइए बात करते हैं 1965 में एक फिल्म आई थी, महमूद, अमिता और अजीत पर फिल्माया गया था। एक कॉमेडी फिल्म थी जिसका नाम था नमस्ते जी, लेकिन इसकी स्टोरी का कुछ पता नहीं चला मुझे और इस फिल्म का पूरा वीडियो भी बहुत कोशिश की देखने की लेकिन नहीं मिला। एक गाना मुझे हाथ लगा जो अक्सर बी से शुरू होता है, लता और मुकेश की आवाज में खूबसूरत गाना है, इसी गीत का आनंद उठाते हैं और फिर

तमन्ना थी कि वो भी मुझे चाहे मेरी तरह, पर तमन्ना थी इसलिए तमन्ना ही रह गई। आप सुना है रेडियो पुनली आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुश रहो खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खाबों का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और बात करते हैं 1966 में एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था देवर, जिसमें एक कहानी ऐसी बताई गई, शंकर जो धर्मेंद्र है हीरो और भावरिया जो मधुमती है वो हीरोइन है। बचपन में इनकी दोनों की जो है प्रेम बताया, बचपन में इनका प्यार होता है और धीरे धीरे समय के अनुसार सब चीजें बदल जाती हैं और फैमिली ट्रेडिशन के अनुसार चीजें जो है अलग हो जाती है। और फिर जब शादी की रस्में होने जाती हैं उस समय सुरेश जो देवन वर्मा है और शंकर धर्मेंद्र, इन दोनों के बीच में एक कश्मकश होती है। शंकर जिससे प्यार करता था उसी से सुरेश भी प्यार करने लगता है और सुरेश शादी करने में कामयाब हो जाता है। और शंकर को बाद में पता चलता है कि जिससे सुरेश ने शादी किया है वो इनके बचपन की प्रेमिका है। तो इस बीच में दोनों की लड़ाई होती है और एक्सीडेंटली सुरेश मर जाता है। सुरेश मरते ही शंकर पर उसका इल्जाम लगा दिया जाता है और मधुमती को जब ये बात पता चलती है तो मधुमती कोर्ट में शंकर को बचा लेती है। तो कहानी में ये बड़ा क्लाइमेक्स है जो मैंने शॉर्ट में सुनाया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत गाना है इस फिल्म में जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ अभी।

जी हाँ, आनंद बख्शी का लिखा, मुकेश का गाया हुआ, रोशन का संगीत से सजा ये गाना देवर फिल्म का 1966 का अभी आपके लिए। न जाने कैसे इम्तिहान ले रही है जिंदगी आजकल, मोहब्बत और दोस्त दोनों नाराज रहते हैं। आप सुने हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसे हूं, तो मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। तो आइए आगे बढ़ते हैं ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। देवर फिल्म का 1966 का एक खूबसूरत गाना आपने सुना। 1966 में ही एक और खूबसूरत फिल्म आई थी जो बहुत चली थी। 25 मार्च 1966 में ये रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर उस समय 50 मिलियन रुपए इन्होंने इकट्ठा किया था, आज से 60 साल पहले। महाराजा विक्रम पर यह फिल्म बनी थी। महाराजा विक्रम अपने सेनापति के बेटे प्रताप से अपनी बेटी अनुराधा से शादी करने का फैसला करते हैं। हालांकि एक साल के बाद अनुराधा का डाकू सूरज द्वारा अपहरण किया जाता है। जब उसका तिलक उत्सव होने वाला होता है उस समय, तो इस पर पूरी फिल्म क्लाइमेक्स में चलता रहता है। और ये फिल्म सूरज जो बहुत पॉपुलर रही उस समय, इस फिल्म को संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन ने, और इसमें बहुत ही खूबसूरत गाने थे जो आप सभी को याद भी हो। एक बहुत ही खूबसूरत गाना ये था,

जी हाँ, इसे हसरत जयपुरी साहब ने लिखा था, मोहम्मद रफी साहब ने गाया था और फिल्म सूरज 1966 का। वैसे बहुत सारे गाने हैं लेकिन हमारा जो टारगेट है बी अक्षर वाले सब गाने आपको आज के शो में मैं सुनाने वाला था, तो इसीलिए मैंने अपना वादा पूरा किया आपको 1966 का सूरज फिल्म का ये बी से शुरू होने वाला खूबसूरत नगमा अभी आपके लिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, खाबों का सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हैं। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। आइए आगे बढ़ते हैं। सूरज फिल्म का एक और खूबसूरत गीत आपको सुनाने जा रहा हूँ। अभी मैं हसरत जयपुरी साहब का लिखा, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ, शंकर जयकिशन का संगीत। जी हाँ, बहारो फूल बरसाओ, शायद ये गाना आपने सुना होगा। और इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाजत, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में ख्वाबों के सफर में। यूं तो आदत नहीं मुझे मुड़ के देखने की, तुम्हें देखा तो लगा एक बार और देख लूं। सलाम नमस्ते, खम्मा गनीसा, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: है
1: कि आप मरते हैं हम पर।
0: बड़ी बात है
1: ये

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी न कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए?

0: उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए वाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम वाइट एनर्जी भेजेंगे मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

कर्म है और जाल इश्क है, इश्क कर्म इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क को है पूर है, काफ को बुत और बुत को देवता करता।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग।

0: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: सावित्री जी, आपके पति भी अब तो जरूर आए होंगे, उनसे मिलाएंगी नहीं?
2: आइए। मिली क्या करती है? क्या मैं गा नहीं सकता? सुनिए, इनसे मिलिए। जी है मिस्टर।
1: इनका परिचय तो सबके सामने हो चुका है। मेरा नाम सागर है और मैं इनका पति हूँ।
3: मैं इनका भक्त हूँ, इनके संगीत का।
1: ये मेरी छोटी बहन प्रेमा है।
2: नमस्ते।
1: मेरा छोटा भाई
2: किशन रघुवीर सिंह। और आपका नाम?
3: वैसे लोग मुझे मनोहर गाइड भी कहते हैं, चैंपियन भी बुलाते हैं, और कुछ के लिए मैं अंडे वाला हूँ।
1: अंडे वाला? अंडे वाला क्यों?
3: बात यह सागर साहब कि बचपन से मुझे उस मुर्गी की तलाश है जो मेरे लिए सोने के अंडे दे। मुर्गी तो नहीं मिली, हाँ अंडे वाले का खिताब जरूर मिल गया।
2: आप लोग बातें कीजिए, मैं जरा चंपा से मिलकर आती हूँ।
1: आप बैठिए ना।
3: माफ कीजिए, मैं आपकी शादी पे नहीं आ सका।
1: हाँ सर, आप होते तो शादी का मजा ही और था।
3: ये बात है,

0: तो एक काम कीजिए साहब, एक शादी और कर लीजिए। साहब कुछ खानी रहे?
1: अजी साहब बहुत खाया, और ये फ्रूट पे खासकर बहुत बढ़िया।
0: एक और खाइए।
1: अजी नहीं साहब।
0: अरे खाइए साहब, हमारे हाथों से खा के देखिए, मजा ही कुछ और होगा। एक मुझे दे दो, सागर को बहुत अच्छी लगी है।

0: keling.
1: सर प्रोफेसर साहब की भविष्यवाणी सच नहीं तो सभी तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रहा हूं। ये फ्रूट क्रीम का कप और बस काम खत्म। पार्टी में किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफ स्टाइल कहते हैं। लाइफ स्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफ स्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफ स्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अरे सैंडी भैया स्कूल से आ रहे थे अपन, उसके सामने से वो कितना बदबू आ रहा था ना रस्ते में।
1: हाँ बहुत आ रहा था।
0: छोटे अभी तुझे नहीं आई बदबू?
2: अरे बहुत ज्यादा आई थी, नाक बंद कर ली थी।
0: अच्छा?
2: हाँ बहुत ज्यादा।
0: और तुझे बड़े आदि?
3: बहुत गंदी बदबू थी।
1: चलो ठीक है, दीदी से पूछेंगे इतना गंदगी घुटते कैसा है।
0: हाँ हेलो बच्चों। हेलो दीदी, हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे, आप जियो हजारों साल।
4: अच्छा मेरे बारे में बात कर रहे थे, पर मैंने तो सुना कि आप लोगों को नाक पे रुमाल रखना पड़ गया।
0: अरे हाँ। नहीं मतलब आपसे पूछने की बात
1: कर रहे हैं।
4: किस बारे में वो तो बताओ।
0: आदि एक्सप्लेन करेगा आप
2: स्वच्छता के बारे में।
4: अच्छा हाँ भाई, ये टॉपिक तो बहुत अच्छा चुना आप लोगों ने। तो चलो एक काम करते हैं, आज हम स्वच्छता के बारे में ही बात करते हैं।
0: बड़ा अच्छा सुझाव है।
4: ठीक है तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि स्वच्छता से आप लोग क्या समझते हो?
0: साफ सफाई रखना।
4: साफ सफाई रखना? कहाँ कहाँ के साफ सफाई आप रखना चाहते हो या होनी चाहिए?
1: स्वयं को, घर के आसपास, हमारे चारों तरफ एरिया को।
4: सही कह रहे हो सैंडी। और बताओ?
2: नेबरहुड को।
4: नेबरहुड को? हाँ ये देखो आदि ने कितनी अच्छी बात कही। और आदित्य आप बताओ?
5: जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ से, स्कूल्स में,
0: हॉस्पिटल्स में,
4: हॉस्पिटल,
1: रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, खुद के घर को, वो तो पहले करेंगे,
0: उससे पहले खुद के कमरे को
1: फिर खुद को भी
4: हाँ ये बात तो सही है, पहले खुद की सफाई भी जरूरी है। तो आप में से कितने लोग अपने कमरे को एकदम साफ सुथरा रखते हैं?
1: मैं कभी कभी कर लेता हूँ।
4: कभी कभी?
2: मैं भी कभी कभी।
4: अच्छा
0: मेरा पता नहीं।
1: मैं कभी।
4: हाँ भाई साफ सफाई तो बहुत जरूरी है और शुरुआत होती है हमसे और हमारे कमरे से। अच्छा ये बताओ मुझे, इतनी सारी जगह के आप लोगों ने नाम लिए, तो इसमें सबसे ज्यादा साफ सफाई आपको कहाँ दिखती है?
0: दीदी मेरे ख्याल से मुझे तो कहीं नहीं दिखती।
2: मुझे भी,
5: हॉस्पिटल्स में।
4: हॉस्पिटल्स में साफ सफाई इसलिए जरूरी है क्योंकि वहाँ बहुत सारे मरीज आते हैं और इन्फेक्शन का खतरा भी होता है।
0: हाँ दीदी, लेकिन
1: बट दीदी कोई कोई हॉस्पिटल में नहीं होते, ऐसा देखा मैंने।
0: अगर होते भी हैं तो उससे आईसीयू या बड़े वार्ड में, जनरल वार्ड में सब ज्यादा सफाई वफाई नहीं करते वो लोग।
4: मतलब हमें कहीं कहीं साफ सफाई नहीं भी दिखती है। लेकिन ज्यादातर जगह कुछ लोग इसीलिए एम्प्लॉयड होते हैं कि वो लगातार साफ सफाई का ध्यान रखें। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई ऐसा इंसिडेंट आप लोगों को याद है क्या कि आप लोगों ने साफ सफाई का कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा हो?
0: हाँ टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखा है ना।
4: अच्छा कौन सा?
0: स्वच्छ भारत अभियान।
4: हाँ बिल्कुल, स्वच्छ भारत अभियान तो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा अभी चलाया ही जा रहा है।
1: हाँ दीदी,
4: आप लोग क्या क्या जानते हो उस अभियान के बारे में?
1: दीदी मुझे तो जहाँ तक याद है कि 2 अक्टूबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था कि पूरे देश में साफ सफाई करेंगे और 2020 तक पूरा भारत पूरा स्वच्छ होगा, उन्होंने अभियान चलाया।
4: और आदि?
5: हमें अपने चारों तरफ को साफ रखना है और फिर शहरों को विकास के रास्ते पे लाना है।
4: ये बात तो आदित्य ने बहुत अच्छी कही क्योंकि साफ सफाई से विकास का रास्ता खुलता है ना?
1: हाँ दीदी।
0: दीदी और एडवर्टाइजमेंट में ये भी बताया था ना, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे छोटे छोटे बच्चों की मदद से जगह साफ कर रहे थे ना, आदि तूने देखा था?
5: नहीं।
0: सैंडी भैया?
1: मैंने नहीं देखा।
0: अरे यार कोई टीवी देखता है कि नहीं?
1: हम बहुत कम टीवी देखते हैं।
4: बहुत सारे ग्रुप्स बनाकर अलग अलग जगहों पर सफाई का अभियान चलाए गए थे।
1: और हम दीदी हम लोगों ने किया भी है सफाई।
4: अच्छा कहाँ किया सैंडी?
1: स्कूल में
0: हमने।

0: हमने जो हमारे स्कूल का कैंप चल रहा था 7 दिन का NSS का, तब उसमें हम लोगों ने पहले क्लासिफाई किया, फिर ग्राउंड, फिर पूरी स्कूल, उसके बाद से फिर हमारे आसपास से जितने स्कूल थे वो, फिर पूरे रोड को 7 दिन हम लोगों ने पूरा सफाई किया था स्कूल में।
1: 7 दिन पूरी सफाई की? तो स्कूल बिल्कुल शाइन कर रहा हो।
0: हाँ, फिर आसपास की भी सफाई की थी हम लोगों ने, और फिर हमने ना पैम्पलेट बना के लोगों को जागरूक किया कि आप लोग सफाई रखो, कूड़ा दान रखो, उसके लिए हमने रैली भी निकाली थी।
2: मैंने अपने गली की सफाई की थी।
1: अरे वाह।
3: और दीदी, हम लोगों के घर के सामने से जो पानी का नाला गुजरता है उसमें अक्सर जब पानी बंद हो जाता है लोग कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, उसकी हम लोगों ने मिलकर सफाई करी थी। अच्छा। और उस टाइम हमने DJ में गाना भी बजाया था। सच्ची बात।

0: और आदित्य?
1: हम स्कूल की तरफ से कैंपिंग के लिए गए थे। जहाँ पर गए थे वहाँ पर बहुत कूड़ा था, तो वहाँ पर भी हमने सफाई की थी। यहाँ से एक घंटे का रास्ता एक मंदिर है, पर नाम तो याद नहीं है। वहाँ पर हमने साफ सफाई की थी।
0: वहाँ पे आप लोगों ने साफ सफाई की थी, तो साफ सफाई आप लोगों ने किस प्रकार से की? झाड़ू से, हाथ से, क्या उठाया, किस तरह से आपने सफाई की?
1: रोड पे बहुत सारे कचरे पड़े थे, तो हमने झाड़ू से उसे हटा के एक जगह पे कलेक्ट कर लिया। फिर बाद में कुछ कुछ जगह पे रैपर्स पड़े थे, उसको भी हटाया। वो हमने हाथ में पॉलिथीन पहन के उसको उससे साफ कर लिया। और बाद में एक जो जो बायोडिग्रेडेबल थे उनको खाद बनाने के लिए गड्ढे में डाल दिया और बाकी सब जला दिया।
0: ये बात तो आप लोगों ने बहुत अच्छी नोटिस मिलाई कि बायोडिग्रेडेबल कुछ चीजें होती हैं। तो क्या आप लोग जानते हो कि वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनसे खाद बन सकती है, या वो मिट्टी में उपयोगी हो सकती हैं, या पानी को उनसे कोई नुकसान नहीं होता, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे नुकसान होता है, जिनकी साफ सफाई हमें तुरंत करनी चाहिए?
2: दीदी, जैसे सूखे पत्ते, डाली और जो हमारा वेस्ट मैन्योर।
0: बिल्कुल, सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स। और बताओ सैंडी, आप जानते हो इस बारे में कुछ?
3: कुछ पॉलिथीन में जो अपने जलाते हैं, पॉलिथीन होता है, उनको भी नहीं जलाना चाहिए सभी चीज।
0: और कई बार हम पानी में जब हम कोई भी ऐसा मटेरियल लेके आते हैं, पॉलिथीन सहित अगर उसे डाल देते हैं, तो वो पानी को भी बहुत नुकसान करता है,
3: पानी को रोक लेता है।
0: क्योंकि पॉलिथीन को हम कहीं भी डिग्रेड नहीं होते, तो इसीलिए वो हमारे एनवायरनमेंट को, मिट्टी को, पानी को नुकसान करता है। तो उससे हमेशा हमें इकट्ठा करके रखना चाहिए। ठीक है, और बताओ आदि, आपने कैसे और क्या साफ किया?
4: मैंने अपनी गली को झाड़ू से साफ किया था।
0: झाड़ू से साफ किया, अच्छा। और सैंडी आपने?
3: मैंने भी झाड़ू, फिर दोस्तों की मदद से, फिर कुछ उठाने के लिए हम लोगों ने कुछ समय दिया था उठाने के लिए, तगाड़ी वाड़ी से कचरा उठाया, फिर हम लोगों ने आस पास लगाई थी।
0: और आकाश आपने?
2: दीदी हमने फावड़ा और तगाड़ी और झाड़ू से,
0: अच्छा,
2: झाड़ू से साफ किया, फावड़े से तगाड़ी में डाला, तगाड़ी से बाहर फेंक दिया, मतलब एक जगह इकट्ठा किया।
0: एक जगह इकट्ठा किया, तो ये भी हम एक हेल्प तो कर ही सकते हैं कि एक जगह इकट्ठा कर दिया, तो बाद में जिन्हें कूड़ा उठाना है उन्हें आसानी हो जाएगी। अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि कौन सी ऐसी चीजें हैं डेली की हैबिट्स जिनका आप ध्यान रखते हो ताकि ये कूड़ा ऐसे फैले ही ना? कोई ऐसी चीजें हैं
2: जिनका हम ध्यान रखते हैं?
0: हाँ, जिनका आप ध्यान रखो तो इतना कूड़ा कभी फैले ही नहीं।
2: प्लास्टिक,
3: घर में कुछ खाने की चीजें लाया, फिर उनके जो कचड़े होते हैं हम लोग एक कूड़ादान में डाल देते तो उससे कचरा नहीं होता, उनका भी ध्यान रखना चाहिए, और जो रखते हैं हम लोग।
0: ये सैंडी ने अच्छी बात कही कि अगर कोई भी हम चीज लेके आते हैं तो डस्टबिन में डालते हैं डायरेक्ट, तो कूड़ा बाहर फैलता है।
3: घर में डस्टबिन रखना भी चाहिए।
0: हाँ, और जब घर के बाहर जाते हैं तब?
2: तब दीदी हमें हमारे जो चिप्स और वगैरह खाते हैं उन्हें आजू बाजू नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए।
3: और मैं तो क्या करता हूँ, अगर मेरे पास बैग है, स्कूल बैग है, तो स्कूल बैग साइड में डाल देता हूँ, फिर घर आके डस्टबिन में डाल देता हूँ, देखता हूँ कि आसपास डस्टबिन है तो उसमें डाल देता हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि बाहर हम जाएं तो डस्टबिन ढूंढे, जैसा आकाश ने बोला, और अगर डस्टबिन ना मिले तो जैसा सैंडी ने कहा, अपने पास थोड़ी देर हम उसे रख के फिर जहाँ डस्टबिन मिले उसे वहाँ फेंक दे, इससे हम बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं।
3: हाँ दीदी,
0: है ना, देखने में तो छोटी सी बात लगती है, लेकिन हर एक अगर ऐसा करे तो बताओ कहीं स्वच्छता अभियान की जरूरत ही ना पड़े शायद।
3: हाँ।
0: और स्वयं ही हमारा भारत स्वच्छ हो, है ना आदि?

0: और बताओ, और आप लोग क्या कर सकते हो डेली में?
1: हाँ दीदी, और डेली में अगर हम स्कूल जाते हैं, चलो मेरा तो कॉलेज आ गया, बाकी आदि इनका स्कूल है, स्कूल जाते हैं, स्कूल लंच होता है, तो लंच में हम क्या करते हैं, कुछ खा के फेंक देते हैं, पर हमें फेंकना नहीं चाहिए, हमें डस्टबिन में डालना चाहिए, तो इससे भी हमारी स्कूल की सफाई रहेगा और हेल्प भी हो सकता है।
0: बिल्कुल। और आदित्य, आप कुछ कहना चाहते हो?
2: खुद घर का सारा मतलब साफ सफाई कर सकते हैं, झाड़ू वगैरह कब रोज रोज, या घर के सामने जो कूड़ा होता है उनको हटा सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, हम अपने घर के बाहर का कूड़ा भी हटा सकते हैं, और अगर रैपर्स वगैरह हमें दिख रहे हैं हमारे फ्रेंड्स ने डाले या फिर किसी ने आसपास डाले, तो उठा के हम उसे भी डस्टबिन में डाल सकते हैं।
1: हाँ दीदी, और फॉर एग्जांपल हम सोचते हैं कि मैं क्यों करूँ, ऐसा कभी कभी होता है कोई चीज कचरा देखे तो खुद भी, मैं भी कभी, मैं भी और कोई सोचता कि मैं क्यों फेंक उठा, तो हमें सोचना चाहिए कि वो, हाँ पूरा देश हमारा है, हमें साफ करना है, तो हमें कुछ भी उठाना चाहिए।
0: ये देखो कितनी छोटी सी बात में आपने कितनी बड़ी बात कही, जैसे हमारा घर हमारा है वैसे हमारा
1: देश भी अपना,
0: देश भी हमारा है, तो इसकी स्वच्छता का ध्यान भी हमें ही रखना है। और एक बात बताऊं बच्चों?
3: हाँ दीदी।
0: कहते हैं जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे।
3: हाँ,
0: तो क्या पता हम कुछ अच्छा कर रहे हो या हमें देखकर कि हम कैसे साफ सफाई रख रहे हैं और उनको भी शिक्षा मिले।
3: हाँ दीदी,
0: है ना। और अच्छा आप ये बताओ, साफ सफाई के बारे में आप अपने देश को कैसा देखना चाहते हो, या अपने देश का कोई विजन है, या कुछ सोचते हो कितना साफ सुथरा होना चाहिए, या क्या क्या चीजें होनी चाहिए?
4: मैं चाहता हूँ इस पूरी धरती को क्लीन रखा जाए।
3: कैसे आदि?
4: साफ सफाई करके, झाड़ू पोछा करके।
0: हाँ मतलब झाड़ू पोछा जैसे हम घर पे करते हो तो एकदम क्लीन हो जाता है ना। तो वैसे ही चमकता हुआ हर स्थान होना चाहिए, ऐसा आदि चाहता है ना। और
1: आदि अगर ये तुम्हें करना है तो तुम अपना कर्तव्य समझना चाहिए, पता तुम्हें? हम अगर करना चाहते हैं तो हम अपना पहले खुद को सफाई करनी पड़ेगी, अगर हम खुद करना स्टार्ट कर देंगे तो कोई ना कोई करना स्टार्ट करेगा, देखते ही।
0: बिल्कुल, छोटे से छोटी मदद भी बहुत बड़ी मदद की एक निशानी होती है।
1: कहा ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ऐसे हो सकता है।
3: खड़े खड़े से नदी, नदी नदी से समुद्र।
1: हाँ।
0: इस तरीके से हम अपना अपना करें तो पूरा देश क्लीन हो सकता है।
1: हाँ।
0: और आदित्य आप कुछ कहना चाहते हो?
2: हमें कचरा पानी में नहीं फेंकना चाहिए, उससे वाटर पोल्यूशन होता है, लैंड्स में भी नहीं फेंकना चाहिए, उससे लैंड पोल्यूशन होता है, जिससे पानी अगर नाले में डालते हैं तो नाले का पानी अटक के बाहर आ जाता है, उससे और भी गंदगी फैलती है, हमें वो नहीं करना चाहिए।
0: ये बात आपने सही कही, और फिर परेशानी तो हमें ही उठानी पड़ती है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर अपने आसपास आप देखते हो कि कोई कूड़ा फैला रहा है या ध्यान नहीं दे रहा, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे?
1: जी पहले तो हम उन्हें समझाएंगे कि आप ऐसा कचरा मत फेंका करो, प्यार समझाएंगे, नहीं तो क्या पता बूढ़ा मान जाए वो तो हमें डांटने लगे कि तुम ये बोल रहे हो, तुम उससे बड़े हो क्या। पहले तो उन्हें प्यार समझाएंगे कि अंकल कचरा मत फेंको, यहाँ अपना देश अच्छा नहीं लगता है, अगर वो समझते तो ठीक है, तो फिर हम खुद ही उठा के डाल देंगे।
0: ये सैंडी अपने बात बहुत अच्छी कही, एक बार हम प्यार से रिक्वेस्ट करेंगे और नहीं समझेंगे तो हम खुद कर देंगे। ठीक है, और ऐसा कितनी बार करोगे?
1: हर टाइम,
0: हर बार। बुरा तो नहीं लगेगा?
1: नहीं।
0: और आप लोगों को?
3: हमें भी नहीं लगेगा,
4: हमें भी नहीं लगेगा।
0: हाँ क्योंकि हम बच्चे ही तो देश का भविष्य है, तो हमें तो ये करना ही है।
1: हाँ दीदी,
0: है ना।

0: और आकाश आप बताओ।
1: दीदी हमें जो जैसे बायोडिग्रेडेबल थिंग्स है उनको ही इस्तेमाल करना चाहिए ज्यादा, मतलब पॉलिथिन और इन सब का इस्तेमाल ना करके हम उनकी मदद ले लें। अगर बाजार में हम कुछ सब्जी खरीदने जाते हैं तो कपड़े का थैला लेके जाएं पॉलिथिन को अवॉइड करके, क्योंकि अगर हम पॉलिथिन ना खरीदेंगे तो जो पॉलिथिन दुकान से हम लेते हैं वो वाले कंपनी से नहीं मंगवाएंगे, अगर दुकान वाले नहीं मंगवाएंगे तो लोग बनाएंगे नहीं।
2: और इससे अगर पॉलिथिन का यूसेज कम हो जाएगा तो कूड़ा भी कम हो जाएगा। ये बात तो बहुत अच्छी बोली आपने, ये बहुत ही अच्छा आइडिया दिया। और आदित्य आप बताओ।
3: हमें जो कूड़े होते हैं उन्हें जो अगर बायोडिग्रेडेबल हो तो उन्हें बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन में फेंकना चाहिए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल हो तो उन्हें अलग से डस्टबिन में फेंकना चाहिए। और हमें 4 R's रिसाइकल रीयूज रिड्यूस एंड रिकवर को भी फॉलो करना चाहिए।
2: अच्छा, और इसका क्या मतलब होता है?
3: मतलब कि वापस इस्तेमाल करना चाहिए, उनके यूज को कम करना चाहिए, उनको वापस मतलब बनाने की जैसे पिघला के वापस बनाते हैं वो करना चाहिए, और उनकी जगह दूसरी चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए।
2: बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, हमारे एनवायरमेंट भी बचेगा और कूड़ा भी नहीं फैलेगा, साफ सफाई भी रहेगी। अच्छा मुझे ये बताओ कौन कौन अपनी मम्मी को घर में साफ सफाई में मदद करना?
4: मैं।
2: सब लोग?
4: हाँ।
2: अरे वाह,
5: पर कभी कभी।
2: क्या क्या करते हो आप लोग?
4: मैं रोज करता हूँ।
2: हाँ आकाश बोलो।
1: मैं जब मम्मी बीमार होती है या तो मैं ही घर की झाड़ू पोछा करता, बर्तन भी मांज देता हूँ, कपड़े भी धो देता हूँ,
2: सफाई में मदद करवाते हो। और आदि?
6: मैं मम्मी की मदद करवाता हूँ साफ सफाई करने में, अगर कमरे में कचरा फैला हो तो।
2: अच्छा, मम्मी के साथ झाड़ू करवाते हो, मतलब उठाते हो कचरा?
6: किताब को भी उठाता हूँ, जो चीजें थैली होती हैं उन्हें उठाता हूँ, मम्मी किचन में काम करी होती है।
2: कई बार कूड़ा तो होता ही है लेकिन जो हमारा सामान भी बिखरा होता है ना उसको भी साफ सफाई करके अच्छे से रखना बहुत जरूरी होता है।
5: हाँ दीदी।
2: और ये तो हम सब बच्चे कर सकते हैं।
5: हाँ।
2: और सैंडी आप बताओ।
5: इससे मम्मी कोई दूसरा काम कर रही हो तो फिर मैं देखता हूँ कि कचरा फैला हुआ है या कुछ स्थिर नहीं है तो मैं उनको ठीक ठाक कर देता हूँ, बिस्तर हुआ, फिर मेरे कुछ मैं कहीं पढ़ा हो तो मेरे बुक्स इधर उधर फैले रहते हैं अपने बुक्स को भी रख लेता हूँ, पापा के कुछ कागज पड़े तो पापा का कागज उसे कर देता हूँ, तो ऐसे मम्मी की हेल्प करता हूँ। कभी कभी संडे को पूरा दिन मेरा छुट्टी रहता है तो फिर मम्मी की मैं झाड़ू लगाने में हेल्प कर देता हूँ।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है, जब हमारी छुट्टी हो तो अपनी मम्मी को भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तो वो ही साफ सफाई रखती है। और आदित्य आप बताओ।
3: मैं अपने खुद के कमरे को साफ कर लेता हूँ, अपने सारे कपड़े वो सब खुद होता हूँ तो मम्मी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, और फिर उसके बाद मैं मम्मी को दूसरे कामों में मदद कर लेता हूँ जैसे झाड़ू करना और बर्तन मांजने में कभी कभी।
2: ये भी बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले तो अगर हम खुद का काम ही अच्छे से करें तो ये भी बहुत अच्छी मदद हो जाती है ना। अच्छा मुझे ये बताओ साथ में कि साफ सफाई से फायदा क्या होता है, हमें साफ सफाई क्यों रखनी चाहिए?
3: बीमारियां नहीं फैलती चारों ओर।
2: बीमारियां नहीं फैलती, आदत में अच्छी।
5: साफ सफाई से हमारा मन अच्छा रहता है, कोई भी काम करने में अच्छा लगता है, और कोई चीज अगर स्थिर हो साफ सफा हो तो हमें देखने भी अच्छा लगता है, कोई घर पे बैठ तो बोला हाँ अच्छा लगता है, और हमारे मन को भी अच्छा लगता है।
6: अगर साफ सफाई नहीं होती तो अपना मन नहीं लगता कुछ भी काम करने में, और अगर साफ सफाई होती है तो सब कुछ करने का मन करता है।
1: हाँ, जैसे कॉपी में अगर सुंदर राइटिंग से लिखो तो पढ़ने का मन करता है।
5: हाँ, उदाहरण सही दिया।
1: और दीदी एक और तरीका है कि अगर हम कूड़ा फैलाते हैं तो उसकी जो बैड स्मेल है वो पूरे एनवायरमेंट को दूषित करती है, और जब हम स्मेल लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ वो गंदी स्मेल भी घुस जाती है
5: जो हमारे हेल्थ के लिए खराब है।
2: और बच्चों पता है हमने तो कूड़ा फैलाया या छोड़ दिया, लेकिन आने वाले कितने लोग उसको देख के बुरा फील करते हैं या उनको अच्छा नहीं लगता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है बताओ?
6: हमारी
2: हो जाती है, क्योंकि हमारे कारण न जाने कितने लोगों को परेशानी हुई। तो इसीलिए चाहे ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, चाहे बस से, चाहे रोड पे, चाहे स्कूल्स में, हमें अपने कूड़े का तो ध्यान रखना ही है, कहीं फैलाना नहीं है, और जितनी हम साफ सफाई में हेल्प कर सकते हैं हमें करनी है।
5: हाँ दीदी।
2: अच्छा एक चीज और बताओ कि आप लोगों ने कभी ऐसी कोई एक्टिविटी या कूड़ा फैलाते कभी ऐसा कुछ देखा हो?

0: किसी को और आपको अच्छा नहीं लगा हो, या कहीं पे आप गए हो और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हो क्योंकि वहाँ साफ सफाई नहीं थी।
1: हमारा शामली बहुत गंदा है, कीचड़ पड़ी रहती है, कूड़ा वगैरह पड़ा रहता है। अब तो कुछ थोड़ा सुधर गया है, पहले बहुत गंदा था।
0: अच्छा, मतलब अब साफ सफाई वहाँ पे रखी जाती है।
1: हाँ।
0: देखो कहीं हम भी जाते गंदा होता तो हमें अच्छा नहीं लगता ना।
2: और दीदी मैं तो अपने आब रोड की बोल रहा हूँ, आब रोड में वो नदी है ना, उस साइड में मैं उधर गया था। नदी पास में है और लोग उसके पास में कचरा देखते हैं, उससे एक तो प्रदूषण हो रहा, ऊपर से सफाई भी नहीं है, और जो वो कचरा नदी में जा रहा तो उससे और भी प्रदूषण हो रहा है और भी गंदगी हो रही है। मुझे देख कर बहुत बुरा लगा था।
0: और हम जो पानी को एंजॉय करते हैं, प्रकृति को एंजॉय करते हैं, वो भी नहीं कर पाते
2: नहीं।
0: है ना। हाँ, आदि आप बताओ।
1: वो जब मैं आबू रोड से कहीं और जा रहा था तो बीच में एक नदी पड़ती है, तो वो नदी नहीं थी, पूरा नाला बन गई थी। वहाँ से इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी, नाक बंद कर करके जा रहे थे।
0: अच्छा, हाँ सही बात है भाई, अगर बदबू आएगी तो फिर हमें देखने का भी मन नहीं करता उधर की साइड, है ना। और आप बताओ आकाश।
3: दीदी मैं बताना चाहता हूँ, डायमंड कॉलोनी के पहले पीछे के साइड में वो जगह बहुत गंदगियाँ कीचड़ वीचड़ आता है, मतलब गड्ढा जैसा है, तो वहाँ पे बहुत सारे सुअर रहते हैं। जस्ट उसके सामने ही एक चक्की है, तो जब चक्की में जाता हूँ तो सब आते की सुगंध आती है, तो उसका पता नहीं चलता। लेकिन जैसे थोड़ा सा बाहर जाता हूँ ना, बहुत गंदी बदबू आती
0: है, वहाँ अच्छा नहीं लगता,
3: मजा नहीं आता।
0: आदित्य आप बताओ।
4: हाँ, एक बार जब मैं बाहर जा रहा था अब रोड के ट्रेन से, तो रेलवे स्टेशन पे लोग खाना खा रहे थे और रैपर्स थे वो वहीं पे फेंक देते थे, और कोई कुछ लोग पान खाते थे और वहीं पे थूक देते थे, तो उससे बहुत बदबू आती
2: है। बहुत गंदगी होती है।
3: किस जमाने में आबू रोड साफ हुआ करता था, लेकिन अब नहीं।
2: अब अभी बहुत देखने मिलता रेलवे स्टेशन पे, ज्यादा गंदगी तो रेलवे स्टेशन पे,
0: क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम ध्यान नहीं देते, हमें लगता है कि भाई डस्टबिन कहाँ होंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए
3: हमें?
2: डस्टबिन खोजना चाहिए, नहीं मिले तो बैग में रखना चाहिए।
0: ट्रेन के डस्टबिन होते हैं, हम एक पॉलिथीन में सारा कूड़ा इकट्ठा करके रख सकते हैं, एक साइड में रख सकते हैं, है ना। ऐसे ऐसे उपाय हम अपना
2: करना चाहिए, क्योंकि हमारी सार्वजनिक प्रॉपर्टी है।
0: बिल्कुल,
2: वो हमारा भी कर्तव्य है, वो हमारा है खुद का।
3: सरकार ने हमें ये बहुत अच्छी उच्च सुविधा दी है,
2: तो उसका सही उपयोग करना चाहिए।
0: और इसका रिजल्ट और बेनिफिट किसे मिलेगा? हमें मिलेगा, क्योंकि गंदगी तो हमें से किसी को पसंद नहीं है। और बच्चों आपको पता है कि सबसे बड़ी बात ये भी है कि जहाँ गंदगी होती है वहाँ बीमारियाँ भी आती है।
2: हाँ, ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ।
0: जब हम साफ सफाई रखते हैं तो फिर बीमारियों से भी बचते हैं।
2: जी।
0: और जैसे आपने कुछ बर्तन में खाना रखा है या कुछ रखा है तो उसे ढक कर रखें।
2: हाँ।
0: है ना, साफ सफाई में ये सब चीजें भी आती है ना।
2: बिल्कुल।
0: जब हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे से धोके इस्तेमाल करें,
2: नहीं तो उससे भी और बीमारियां फैलती।
0: नहीं तो उन सब चीजों से भी बीमारियां फैलती हैं। जहाँ हमारा खाने पीने की चीजें हमें वहाँ भी बहुत ही शुद्धता और सावधानी रखनी चाहिए। और आप लोग अपने फ्रेंड्स को इस पे कोई मैसेज देना चाहोगे? सैंडी आप बोलो।
2: मैं अपने फ्रेंड्स को मैसेज देना चाहूँगा, जहाँ तक मुझे बताया कि सब साफ सफाई रखते हैं, वो सब मुझसे काफी अच्छे हैं, पर मैं बोलना चाहूंगा कि डेली साफ सफाई रखो, खास पड़ोस, अपने स्कूल, अपने विद्यालय, अपना कॉलेज, जहाँ तक पहुँच सके वहाँ तक साफ सफाई रखो।
0: ठीक है, बिल्कुल, जहाँ तक हो सके हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। और आदि?
1: मैं अपने दोस्तों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि वो पूरी अपने एनवायरनमेंट और अपने नेबरहुड क्लीन रखे, और अपने घर को भी और अपने आप को भी।
3: और दीदी मेरे दोस्त किसी को करते देखेंगे ना तो वो भी कूद जाएंगे करने,
0: तो मतलब वो बहुत लोगों के लिए एग्जांपल्स बन सकते हैं, है ना। तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए?
3: क्या करना चाहिए? मैं उन्हें एग्जांपल दूंगा, देखो चैलेंज दूंगा, मैं कर रहा हूँ।
0: हमें अच्छे अच्छे चैलेंजेस एक दूसरे को देने चाहिए। और आदित्य आप बोलो।
4: मेरे दोस्त भी साफ सफाई तो रखते हैं, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ उन्हें, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस।
0: तो आज से आप लोग साफ सफाई रखोगे?
5: हाँ जी।
0: प्रॉमिस?
5: प्रॉमिस।
0: अरे वाह, तो चलो सब लोग अपने लिए एक बार ताली बजा।

0: सफाई पे, और आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए जो कि हम और हमारे फ्रेंड्स मिलके फॉलो करेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी बातचीत यहीं समाप्त करते हैं और फिर से मिलेंगे बच्चों की दुनिया के नेक्स्ट एपिसोड में हम सभी प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक के लिए
1: बाय बाय।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM आनंदी रहा आनंद लुटा।
1: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
3: रेडियो
2: हमारे साथ।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज बात करते हैं विशेष करियर के बारे में। जी हाँ, करियर के बारे में हम लोग हर हफ्ते आपसे जुड़ते हैं और बातें करते हैं। तो आज हम लोग जिस विषय को लेकर आपके पास आए हैं, तो ये बहुत ही नया करियर ऑप्शन है जिसके बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। नया इसलिए क्योंकि आज के समय में ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, यानी बहुत ज्यादा इसका उपयोग हो रहा है। आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से, अगर किसी भी वेबसाइट से आप अगर सामान मंगाते हैं, तो निश्चित तौर पे ये जो करियर है उसी में का एक है, जिसको आज के जमाने में कहते हैं ई कॉमर्स। जी हाँ साथियों, सही सुना आपने, ई कॉमर्स। इस विषय को लेकर हम लोग बातें करने वाले हैं। ई कॉमर्स में आप अगर अपना अच्छा काम करना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है करियर का ऑप्शन बन सकता है और आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कमाई का जरिया हो सकता है। नौकरी के साथ साथ खुद का भी बिजनेस स्टार्टअप करने का एक बहुत बड़ा विकल्प है। तो आइए इस विषय को लेकर हम लोग आपसे जुड़ेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उसके पहले आइए आगे बढ़ते हुए समझने की कोशिश करते ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स में कुछ लोग जैसे कि ई कॉमर्स मैनेजर, स्टोर मैनेजर और ऑपरेशन एक्सपर्ट जैसे अलग अलग पोस्ट पोजीशंस इसमें होते हैं। ये तेजी से बढ़ता क्षेत्र है जो व्यवहारिक कौशल और तकनीक को समझकर लोगों को जोड़ता है। इसमें डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, इवेंट मैनेजमेंट और ग्राहक सेवा जैसे जिम्मेवारियां शामिल है जो इसे एक गतिशील करियर बनाता है।

वो आपके लिए इंटर्नशिप पर एक बेहतरीन जो है तरीका हो सकता है इसे सीखने के लिए, समझने के लिए। तो आइए, कैसे सीख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, तो पूरी जो है जानकारी आज आपको मिलने वाला है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। मैं हूँ आपका हम सफर आरजे रमेश, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार छोटे से ब्रेक के बाद। ई कॉमर्स में करियर के लिए कुछ मुख्य क्षेत्र है जिसके बारे में मैंने थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दी है। ई कॉमर्स मैनेजर पूरी ई कॉमर्स रणनीति, वेबसाइट ऑटोमेशन और मार्केटिंग की देखरेख जो करते हैं उसे ई कॉमर्स मैनेजर कहते हैं। दूसरा, ऑनलाइन स्टोर के दिन प्रतिदिन के संचालन जैसे कि उत्पाद लिस्टिंग, मूल्य निर्धारण और ग्राहक सहायता को संभालता है, उसको कहा जाता है ई कॉमर्स स्टोर मैनेजर। और तीसरा, ऑर्डर प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक, शिपिंग और रिटर्न को प्रबंधित करना, ये कहा जाता है ई कॉमर्स ऑपरेशंस एक्सपर्ट। इसके बाद एक और विकल्प, दो और विकल्प है। एक विकल्प ये भी है कि ई कॉमर्स परियोजनाओं को शुरू में अंत तक, शुरू से अंत तक, स्टार्टिंग टू एंड तक प्रबंधित करता है, मैनेज करता है, उसे कहा जाता है ई कॉमर्स प्रोजेक्ट मैनेजर। और आखिरी में एक और विकल्प ये भी है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और डेटा उल्लंघन से सुरक्षा सुनिश्चित करना है, यानी पूरे डाटा को संभाल के रखना है क्योंकि इसमें कई जानकारियां होती हैं, उसे सुरक्षित रखने के लिए सूचना सुरक्षा विश्लेषक का भी काम आता है। तो ये सारी जो चीजें हैं बहुत इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में मैंने जिक्र किया और थोड़ा विस्तार से भी मैं बताने वाला हूँ। अगर आप विद्यार्थी हैं, टेंथ या ट्वेल्थ में है तो जरूर कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि आपको कुछ अच्छी जानकारी मिल रही है तो उसे नोट डाउन करें और आगे आप अपने करियर के लिए से चुन भी सकते हैं। तो ई कॉमर्स करियर के लाभ क्या है अगर मैं बता दूं सबसे पहले, तो ये आपके लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है। अब देखिए, ई कॉमर्स जो है एक तेजी से बढ़ता उद्योग है, ये आपको नए कौशल सिखाने और अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है। तीसरा, इसमें व्यवसायिक कौशल और तकनीकी समझ का मिश्रण होता है जो इसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव यानी आकर्षित बनाता है। आप अपना खुद का ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने के अवसर भी तलाश सकते हैं यानी कर सकते हैं। तो शुरुआत कैसे करें ये भी आप सोच रहे होंगे। इंटर्नशिप, किसी कंपनी में इंटर्नशिप करके अनुभव प्राप्त करें क्योंकि सबसे अच्छा ये तरीका होता है। अगर आपको खुद का स्टार्टअप करना है तो पहले ऐसे ही कंपनीज में अपने आप को जो है अप्रेंटिस पे या इंटर्नशिप पे या छोटी सी नौकरी के रूप में भी आप कुछ समय तक दो तीन साल काम करके देखिएगा, इससे आपको अनुभव मिल जाएगा। फिर दूसरी एक और विकल्प ये हो सकता है कि ई कॉमर्स में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स भी आप 12वीं के बाद कर सकते हैं। तीसरा, अपना खुद का एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर शुरू करने पर विचार करें या ड्रॉप शिपिंग जैसे तरीकों से शुरू कर सकते हैं। आप किसी कंपनी का माल ले और उसे शिपिंग के जरिए या कुरियर के जरिए आप उन तक पहुंचाइए जिनकी वो पार्सल है। तो ये भी एक छोटा सा तरीका हो सकता है कि आपको इसकी पूरी जानकारी मिलने तक। मेन होता है कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब वो समय पर चीज उनको मिल जाए। तो अगर इस पे भी आप मास्टरी करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा विकल्प मिल जाता है इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक और सुंदर गीत सुनते हैं, उसके बाद फिर आपसे रूबरू होते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर करियर ऑप्शन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शंस कार्यक्रम में। और हम लोग बात कर रहे थे आज ई कॉमर्स पर, तो चलिए मैं सबसे पहले ई कॉमर्स मैनेजर के करियर पथ में एक क्या क्या चीजें होना चाहिए वो बता देना। एक डिग्री शुरुआत आपको लेनी है, व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना है और फिर वरिष्ठ भूमिकाओं जैसे डिजिटल मार्केटिंग निदेशक या ई कॉमर्स बिक्री निदेशक में प्रगति करना शामिल है। करियर में आगे बढ़ने के लिए विशेषज्ञ नेतृत्व कौशल और इसके अतिरिक्त प्रमाण पत्र आपके पास होना बहुत अनिवार्य है। चलिए, इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर मैं बताऊं आपको, तो शिक्षा और योग्यता के साथ इन चीजों को आप ले सकते हैं। सबसे पहले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मार्केटिंग या ई कॉमर्स सूचना प्रौद्योगिकी या संबंधित क्षेत्र में आप डिग्री हासिल करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, ई कॉमर्स में डिजिटल मार्केटिंग या बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए जैसे मास्टर डिग्री आपको बड़े संगठनों में विशेष भूमिका के लिए योग्य बना सकता है। तो मास्टर डिग्री एक लेना बहुत जरूरी है, अगर लेते हैं तो अच्छा है। या फिर आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं या प्रमाण पत्र सर्टिफाइड कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफाइड कोर्स या फिर एसईओ गूगल एनालिटिक्स और विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रबंधन में आप सर्टिफाइड कोर्स यानी प्रमाण पत्र प्राप्त करके आप शिपिंग व इन चीजों के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं या इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो शुरुआत में जो है कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि ई कॉमर्स एसोसिएट, डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट या फिर ई कॉमर्स समन्वय जैसी भूमिकाओं में आप काम करना शुरू कर सकते हैं। दूसरा, अनुभव के लिए, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग अभियानों में, वेबसाइटों के प्रबंधन या ग्राहक डेटा के विश्लेषण में आप विशेषज्ञ हासिल करें काम करके, या अनुभव प्राप्त करने के लिए आप विशेष सोशल मीडिया मार्केटिंग या वेब एनालिटिक्स जैसे ई कॉमर्स के किसी विशेष क्षेत्र में आप हासिल कर सकते हैं प्रमाण पत्र काम करके भी और कोर्सेस करके भी। तो इस तरह से ये चीजें जो है आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगी। और चौथी बात मैं अगर कहूँ, ई कॉमर्स में या ई कॉमर्स समन्वय के रूप में अनुभव के साथ आप ई कॉमर्स निदेशक या डिजिटल मार्केटिंग जैसे वरिष्ठ भूमिकाओं तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको जो है दक्षता हासिल करनी होगी, डिजिटल उत्पाद प्रबंधन या डिजिटल परिवर्तन सलाहकार जैसे भूमिकाएं भी उपलब्ध हैं जिसमें आप अपना रोल अदा कर सकते हैं। आपको अक्सर कई परियोजनाओं को एक साथ मैनेज करना होगा जिसमें बिक्री डेटा का विश्लेषण करना होगा, मार्केटिंग के जो बातें हैं उसमें नेतृत्व करना या टीम के साथ सुपरवाइज करने का भी काम अगर आपको आता है तो आप इस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारे विकल्प जो मैंने बताया, और इसकी खूबसूरती ये है कि कई बार ये डिजिटल होने के नाते आप घर से भी मैनेज कर सकते हैं। आपको कहीं भी अगर बिजनेस करना हो तो आप बहुत सारे कंपनियों के साथ टाई अप करके उनके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का जो ई शिपिंग का काम है वो आप कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आपके पास अगर किसी कस्टमर का डिमांड आता है कि आपको ये चीजें चाहिए और आपको वो चीजें कहाँ से मिलता है ये अगर पता है तो वहां उनको ये ऑर्डर प्लेस करके आप अपना कमीशन भी ऑनलाइन ले सकते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो है ना कमाल की बात कि आप घर बैठे भी इन सभी चीजों को मैनेज अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खूबसूरती है इन चीजों का। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर करियर ऑप्शन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और बातें कर रहे थे हम लोग ई कॉमर्स के बारे में। जी हाँ साथियों, अगर मैं बात करूं ई कॉमर्स स्टोर मैनेजर का, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा करियर का बहुत सुंदर मौका है, जिसे ऑनलाइन बिक्री, डिजिटल मार्केटिंग और व्यवसाय के संचालन का प्रबंधन शामिल है। इस भूमिका के लिए आप एक डिग्री हासिल करें, आमतौर पर व्यवसाय या विज्ञापन में भी आप ले सकते हैं, और मजबूत विश्लेषणात्मक कौशल हो आपके पास, डिजिटल मार्केटिंग तकनीक को आप अगर समझ लेते हैं तो ये आपको बहुत बड़ा काम आ सकता है। और इस करियर पथ में आप ऑनलाइन बिक्री के टेक्निक को विकसित करके वेबसाइट ट्रैफिक का प्रबंधन करने से ग्राहकों का बेहतर अनुभव जो है आप हासिल कर सकते हैं या उनको बेहतर अनुभव दे सकते हैं। इसकी जिम्मेवारी अगर आप

देते हैं तो ई कॉमर्स स्टोर मैनेजर आप बन सकते हैं। इसमें कुछ चीजें बहुत जरूरी है, जैसे कि एक ऑनलाइन बिक्री या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के प्रदर्शन की देखरेख करें, जिसमें वेबसाइट का प्रबंधन, उत्पाद लिस्टिंग और ग्राहक अनुभव शामिल है। दूसरा, आप अगर स्टोर मैनेजर बनते हैं तो बिक्री बढ़ाने और ब्रांड जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग की एक सिस्टम बनाना होगा, जैसे कि सीईओ पीपीसी और सोशल मीडिया अभियानों को विकसित करके आप इसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। तीसरा, डेटा, जो डेटा आपके पास है उसका उपयोग करके ग्राहक व्यवहार और बाजार के रुझानों को समझकर उसमें एक रणनीति बनाकर निर्णय लेने से आपको बहुत फायदा हो सकता है, कंपनी को भी। चौथी बात यहाँ पर आता है, सफल संचालन सुनिश्चित करने के लिए टीम के प्रदर्शन की निगरानी करें और कार्य को समय पर पूरा करें, क्योंकि यहाँ पर मेन होता है डिलीवरी। अगर आपने डिलीवरी का टाइम जो दिया है, अगर कोई कस्टमर आज आपकी बुकिंग करता है और दो दिन के बाद अगर आपने उसमें ऑनलाइन दे दिया डेट, उसी समय उसके पास वो चीजें पहुंचनी चाहिए। अगर उस समय पहुंच जाता है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा काम आ सकता है।

नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ई कॉमर्स बिजनेस पर हम लोग बातें कर रहे थे, इस करियर पर बातें कर रहे थे। एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है जिसमें किसी संगठन के नेटवर्क सिस्टम और डाटा को साइबर हमले और खतरों से सुरक्षित रखा जाता है, उसको कहा जाता है सूचना सुरक्षा विशेषज्ञ। तो ये भी ई कॉमर्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप इसमें अगर मास्टरी किया है तो ई कॉमर्स बिजनेस जो करते हैं उस कंपनी में आपको एक अच्छी पोजीशन मिलती है। इंटरनेट पर जो बढ़ती निर्भरता आज

इस समय में लोगों की है। तो इस क्षेत्र में अगर आप स्पेशलाइजेशन किया है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा काम करता है। तो एक सूचना सुरक्षा विश्लेषक की जो भूमिका है ई कॉमर्स में वो क्या है वो मैं बताता हूँ। संभवतः सुरक्षा खतरों और कमजोरियों को पहचानना और उनका मूल्यांकन करना। दूसरा है साइबर हमलों से बचाव, के लिए फायरवॉल और अन्य सुरक्षा सॉफ्टवेयर को स्थापित करके उसको इंस्टॉल करना और उसकी देखरेख करना। किसी सुरक्षा उल्लंघन या साइबर हमले की स्थिति में प्रतिक्रिया देना, उसकी जांच करना और उसे ठीक करना। हैकर द्वारा उपयोग किए जाने वाले तकनीकों को समझना ताकि कमजोरियों का पता लगाया जा सके और सिस्टम को अधिक सुरक्षा महसूस करा सके या मजबूती दे सके। और संगठन के लिए सुरक्षा नीतियों को या मानकों को और रूपरेखाओं को बनाना और उसे लागू करना, ये भी इसी सुरक्षा विशेषज्ञ का काम है। दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों की निगरानी के लिए नेटवर्क ट्रैफिक और डेटा का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। तो ये सब जो है एक सूचना सुरक्षा विश्लेषक का काम है। तो इसमें आप अगर दक्षता हासिल करते हैं तो आप ई कॉमर्स में अपनी जगह सुरक्षित कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने चार प्लेटफॉर्म आपको बताए हैं मुख्य रूप से ई कॉमर्स में, वो आपको मैंने सबसे पहले बता दिया। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, पांच ऐसे विशेष पोजीशंस हैं जहां पर ई कॉमर्स में आप अपनी दक्षता के माध्यम से अपना करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं या खुद का भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहला ई कॉमर्स मैनेजर, दूसरा है ई कॉमर्स स्टोर मैनेजर, तीसरा है ई कॉमर्स ऑपरेशन एक्सपर्ट, चौथा है ई कॉमर्स प्रोजेक्ट मैनेजर और पांचवा है ई कॉमर्स में सूचना सुरक्षा विशेषज्ञ। तो इन पांचों ही अलग अलग विधाओं में अगर कहीं भी आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो जरूर बने और ई कॉमर्स के करियर को बहुत अच्छी तरह से आप फ्रेमअप करके अपने फ्यूचर को ब्राइट करें। इन्हीं शुभारशाओं के साथ ढेर सारी खुशियां। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई, अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा, अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि

0: आपको आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूँ? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: बात पुरानी बड़ी सुहानी, मनात खोलवर रुजलेल्या चित्रपट, साहित्य, संगीत, गाणी यांच्या आठवणींचा नॉस्टैल्जिक खजिना।
4: बात पुरानी बड़ी सुहानी,
3: फक्त रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। संकल्पना आणि सादर करते श्री धनंजय कुलकर्णी।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। परिस्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप टाइप रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप एकताइत रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, मैं मोनाली सावागत, तुम्ही ऐकत आहात रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: Assertiveness without generating anger, तभी वो रियल दायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बींग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर। उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। हम बात कर रहे हैं इन दिनों सेल्फ मैनेजमेंट की। बहुत सी मैनेजमेंट की चीजों को समझा था, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट में अभी तक हम अपनी जिंदगी की मैनेजमेंट कर रहे थे, लेकिन सेल्फ को मैनेज करना इन दिनों हम सीख रहे हैं। और बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने जो है वो चीजें निकलती आ रही हैं। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझा कि मैं किस तरह से रिस्पॉन्ड करता हूं, मेरी एबिलिटी क्या है किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने की, वो मुझ पर डिपेंड करती है। कहीं ना कहीं परिस्थिति हावी होती जब नजर आती है, तब मेरा रिस्पॉन्स कैसा होता है उस सिचुएशन को लेकर, ये मेरी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आगे जानते हैं कि सेल्फ को मैनेज कैसे करना है। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सेल्फ को जब हमने आपसे बात करके इस प्रोग्राम के जरिए समझा कि इट गोज डीप इन, यू नो, और अंदर का जो थॉट प्रोसेस था मेरा, उसको मैनेजमेंट करने की समझी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा और आगे लेकर जाते हैं, और कहां तक पहुंचेंगे।
1: हमने पहले भी देखा कि सेल्फ मैनेजमेंट हम चार पहलुओं पर करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर रिलेशनशिप्स, फिर हमारे रोल्स एंड हमारे रिसोर्सेस, जितनी हमारे पास शक्तियां हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने फिर पिछली बार देखा सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द आता तो हर एक के पास एक लिस्ट होती है कि वो किन किन लोगों के लिए और किन किन कहें कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। But their own name never comes on the list. It never comes on the list. And I've been sharing this with a lot of people, and then they just stare at you. Acha, responsible for the self. I thought I was responsible for children, husband, parents, and whatever. You know, kai baar you're a social worker, you're responsible for a lot of other people. Or I'm responsible apni team ke liye. ऑफिस में आई एम रिस्पॉन्सिबल कि इतने टाइम में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। तो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर थी, और डेफिनेटली क्योंकि सिंसियरिटी हमारी नेचर है, तो जिन चीजों के लिए हम जिम्मेवारी लेंगे उन चीजों के प्रति हम अपना पूरा अपनी अपनी कैपेसिटी में, तो वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन हम अपनी पूरी एनर्जी पूरा अटेंशन उस पर लगाते हैं।
0: और मैक्सिमम लोगों को कहा भी जाता है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, वेरी रिस्पॉन्सिबल मैन।
1: जब हम कहते हैं आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, हम यही कह रहे हैं कि आप जो चीज उठाते हैं, जो जिम्मेदारी उठाते हैं, आप उसको बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। लेकिन फिर सबसे पहले जिम्मेवारी, अब क्या हुआ क्योंकि मेरे अपनी स्थिति की जिम्मेवारी वॉज नॉट कमिंग ऑन द लिस्ट, सो उसका रिजल्ट क्या हुआ, वी वर नॉट

0: taking care of that. See, आपकी जिम्मेवारी मेरी लिस्ट पर थी तो आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ यू, लेकिन मेरी अपनी जिम्मेवारी, और जहां अपनी जिम्मेवारी भी आती अगर बात, तो जिम्मेवारी क्या होती, फिजिकल नीड्स कि मुझे अपने शरीर का ध्यान रखना है, मुझे अपने खाना टाइम पर खाना है, ऑल दीज लिटिल लिटिल थिंग्स, बट मुझे अपने मन की स्थिति रखना है, दिस जस्ट डजंट कम ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट, एंड द ओनली थिंग इज अबाउट पुटिंग इट ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी.
1: इनफैक्ट यू नो व्हाट हैज हैपेंड नाउ, आई थिंक हम सब दर्शक जिस जर्नी पर हैं वो भी हो रहा होगा कि पहले क्या होता था, जो हमें काम करते जाने हैं और कोई चीज जो है वो साथ साथ चलती जा रही है तो हम उसको ध्यान नहीं देते थे और हम उस पर काम अपना काम करते जाते थे
0: क्योंकि वो हमारी जिम्मेवारी है.
1: हाँ,
0: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो क्यों हम बार बार इसको रब इन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है कि जिस चीज को हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेंगे तो हम बाकी चीजों को पूरी तरह से इग्नोर करके उस चीज पर पूरा ध्यान देंगे. लेट्स से मेरा काम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ये टारगेट पूरा करना, तो आप देखो अगर आपको खाना नहीं टाइम पे मिले कोई बात नहीं, सोने को टाइम पे नहीं मिले कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, क्यों, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन वो सब करने वाला कौन है, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो हम स्पिरिचुअलिटी में क्या होता, राजयोग हमें क्या सिखाता, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है. कई लोग समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मतलब कहीं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से किनारा तो नहीं हो जाएंगे, या कहीं आप सिर्फ सारा दिन मेडिटेशन तो नहीं कर रहे कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं करेंगे. यस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर नहीं होंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की लिस्ट में
1: सबसे पहले मैं आ जाऊंगी.
0: मैं आ जाऊंगी, और मैं बेबी, मैं मतलब मेरी मानसिक स्थिति कैसी है, बिकॉज आफ्टर ऑल हम सब कुछ जो कर रहे हैं इट्स फॉर दैट डीप डिजायर फॉर हैप्पीनेस एंड लव, तो व्हाई नॉट पुट दैट एज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना हमें आता है, इसलिए वो सीखना नहीं है. पूरी तरह से निभाना हमें आता है, उसके लिए हम कुछ भी त्याग करने के लिए रेडी है, वो भी हमें आता है. कि एक बार मैंने कहा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई विल डू एनीथिंग टू फुलफिल दैट, दैट्स हाउ गुड वी आर एट दैट. सो सिर्फ उसमें एक ऐड करना है, दैट्स ऑल. कि मन की स्थिति को स्टेबल रखना ये मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये ठीक होगा तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा. अब क्या हो रहा था, काम करना है, भले मैं अपसेट हो गई.
1: आदत ही हो चुकी है मुझे, इतनी आदत हो चुकी है कि मैं अपसेट हूँ, सब कुछ है, लेकिन मुझे काम तो करते जाना है ना, मुझे सबके लिए कुछ कुछ जो जो चीजें करनी है वो करते जाना.
0: अब जैसे जैसे आपने अभी कहा, लेट्स से फैमिली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वर्क एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन दोनों में भी हम प्रायोरिटाइज करेंगे ना, तो फैमिली ऊपर आती है. तो सपोज आप वर्क पे गए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सपोज आपको बीच में कुछ मैसेज मिला कि घर पे ऐसा कुछ हुआ है आपको आना है, तो आप इधर इम्पोर्टेंट भी होगा तो भी इसको आप छोड़कर आप उधर जाएंगे. यू विल टेल योर टीम आई एम सॉरी बट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव टू गो. इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत क्लियरली प्रायोरिटाइज होती है.
1: माई प्रायोरिटी इज देयर,
0: प्रायोरिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे जीवन की क्या प्रायोरिटीज है. तो जैसे फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ. तो अब इसमें एटलीस्ट जैसे वर्क और फैमिली को करने में कई बार यू नो लोग एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि ऑफिस में भी आज काम है लेकिन आज मेरे बच्चे की भी तबीयत ठीक नहीं है, व्हाट डू आई डू. यू नो वहां भी जाना बहुत जरूरी है, यहां भी रहना बहुत जरूरी है. सो दे काइंड ऑफ गेट इनटू अ लिटिल कॉन्फ्लिक्ट के व्हाट डू दे डू. बट जहां तक अपने प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स नॉट अबाउट टेकिंग आउट टाइम, इट्स जस्ट अबाउट टेकिंग केयर व्हाइल डूइंग एवरीथिंग. इसलिए आप कभी भी इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएंगे कि अपना ध्यान रखू या काम का ध्यान रखू, अपना ध्यान रखू या बच्चों, नो दैट विल नेवर हैपन. सिर्फ करना क्या है, अपना ध्यान रखते हुए इनका ध्यान रखना है, दैट्स ऑल.
1: एंड इट स्टार्टेड हैपनिंग यू नो बिकॉज समवेयर द मोमेंट यू स्टार्ट नाउ व्हाट हैज हैपन्ड विद मी, मेरे साथ मैं अपने सभी दर्शकों का शेयर करूं कि अगर मैं जरा सा भी कहीं काम जो करती, जैसे मैं प्रोग्राम भी कर रही हूँ, चलिए इसी को काम देते हैं, और पहले क्या होता था कुछ कुछ कुछ कुछ चल भी रहा है तब भी प्रोग्राम कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो. आप अगर कुछ कुछ कुछ कुछ चल रहा है जो, और वो पता नहीं चलता है कि किस चीज ने कहाँ किया, लेकिन वो जब कुछ कुछ चल रहा है तो वो रुक के आप उसी टाइम पे उसको ठीक कर सकते हैं.
0: नाउ इफ यू डू दिस व्हाट विल हैपन द रिजल्ट. पहले भी प्रोग्राम आप कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब आप पहले अपना ध्यान रख रहे हैं फिर प्रोग्राम कर रहे हैं. व्हाट विल हैपन इज यू विल एंजॉय द वर्क मोर एंड यू विल डू मोर जस्टिस टू द वर्क.
1: बिकॉज
0: यू नो आप यहाँ बैठे हैं लेकिन आपका मन कहीं और है, हाउ इज दैट जस्टिस टू द प्रोग्राम, इट्स नॉट फेयर. तो क्या होता है जब हम अपना ध्यान नहीं

0: पाते, तो एक्चुअली इन द ट्रू सेंस हम अपनी बाकी जिम्मेवारियां भी
1: नहीं निभा रहे होंगे. वेरी ट्रू.
0: That we have to, somewhere it has to hit me. Ki, you know, ki main keh to raha hu. Let's say I just asked someone the other day, I said, what's your first responsibility? To kaha, my children. I said, okay, very good. What about your children? They said, achhe school mein dalna, achhi tarah se unko bahut strong banana, ye karna. But nowhere was he talking about making them emotionally strong.
1: Because वो तो सोचा ही
0: तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं डाला ना, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आया तो ये भी नहीं ध्यान आया कि मेरे बच्चों के प्रति जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें भी ये आता है. हमने सिर्फ देखा कि फिजिकली उनको सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए, एजुकेशन उनको अच्छी मिलनी चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इमोशनली उनको स्ट्रांग बनाना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? Who will do it? Is the school going to do it? Go and talk to any principal. Are you ready? She says, oh, so many children.
1: And nobody knows how to do it also.
0: कैसे करेंगे? हम तो नहीं कर सकते. आप किसी भी स्कूल में प्रिंसिपल या टीचर से मिले, they're only saying, क्या करें आजकल के बच्चे, देखो कोई स्कूल में रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है. I actually met a boy in a school, he says, I beat myself. मतलब इस तरह के केसेस प्रिंसिपल्स और टीचर को हैंडल करने पड़ते हैं. सो यस, इट्स अ यू नो बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए. एंड ये बच्चा काफी बड़ा था, नॉट के इसे ही मेरे को इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है. एंड जब मैं जिसके साथ नाराज हूँ या जो फ्रस्ट्रेशन है मैं उनको कुछ नहीं कर सकता, आई बीट माई सेल्फ. लुक एट द सिचुएशंस दे हैव टू हैंडल. नाउ दैट्स अ साइन कि वो इमोशनली बहुत वीक है, वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा. ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जहां आज हम इसी इल्यूजन में चल रहे हैं ना कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली फैमिली फैमिली फैमिली में भी चिल्ड्रन. सो आर वी रियली फुलफिलिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर मेरे बच्चे आज इमोशनली वीक हैं, देन टाइम टू वेक अप. आई एम नॉट फुलफिलिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी.
1: वेरी ट्रू. यू नो,
0: जब आप अपने इमोशंस पर ध्यान रखना शुरू करेंगे, अपनी स्थिति पर, तो फिर आप अपने बच्चों के भी you will be able to take care. And if you find your child is going through pain, you can help. लेकिन अगर वो आपकी responsibility list में ही नहीं आता, या अगर आता भी है तो handle करना नहीं आता, तो फिर कहाँ responsibility?
1: Very true. In fact, you know, this is how बहुत बार parents आते हैं कि वो इस तरह के crisis में हम क्या करें. तो वो ये कि हमने अगर अपने आप को ही handle करना सीख गए होंगे, so I think now we will be able to do all. फिर मैं बाकी सबकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी, इमोशनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने का सही परिपेक्ष बता पाऊंगे.
0: क्योंकि खुद जब तक नहीं करेंगे, आई मीन बोलना बहुत इजी है ना बच्चों को कि ये राइट है ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं वैसे नहीं, बट दे गो थ्रू सो मच कॉन्फ्लिक्ट इनसाइड. उनको कितना अंदर दर्द है, हुज गोइंग टू हेल्प? एंड फिर वी से कि स्कूल में काउंसलर है, स्कूल में जो काउंसलर है उनसे बात करो. आई मीन स्कूल्स डोंट नीड टू हैव काउंसलर. दिस वॉज द रोल ऑफ द पेरेंट. पहले कहाँ था? हम जब स्कूल में थे तो वी डेंट हैव अ काउंसलर, क्योंकि काउंसलिंग का कार्य तो काउंसलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है. क्यों आज मुझे बाहर एक थर्ड पर्सन के पास जाना पड़ रहा है? बिकॉज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड. देन आई एम फाइंडिंग द नीड टू टॉक टू समवन एल्स. तो समवेयर वी नीड टू स्टॉप, अपनी लिस्ट फिर से बना लें रिस्पॉन्सिबल एंड एक्चुअली सिट डाउन एंड डू इट. एंड फिर कहीं लगे कि हाँ ये तो बहुत बड़ी मेरी लिस्ट है. और फिर कई बार कई लोग कहते इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना, सिर्फ ध्यान रखना है. और जैसे आपने कहा खुद करेंगे तो बच्चे को कराना
1: आसान हो जाएगा.
0: अच्छा, बच्चे को कराना आसान हो जाएगा, अपनी टीम को ऑफिस में. आई मेट वन ब्रदर इन अ प्रोग्राम, ही इज हेडिंग अ कंपनी, नॉट वेरी बिग, 40-50 लोगों के. तो इसे पहले तो मुझे इतना गुस्सा आता था एंड मैं ऐसे चिल्ला देता था, लेकिन सब मेरे से डर कर चलते थे, मेरा पूरा ऑफिस. लेकिन फिर प्रोग्राम देखकर जैसे जैसे अपने पर वर्क किया, इसे जब तो मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता. एंड ही वॉज शेयरिंग विद एवरी वन के बिना गुस्से के भी काम हो जाता है, यू नो ऑफिस में चलता है. बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट ही केम एंड शेयर, ही सेइंग मेरे ऑफिस के बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ अब शेयर करते हैं. दैट वॉज एन आई ओपनर. एंड एवरी वन said कि अपनी प्रॉब्लम अपने बॉस के साथ आकर कौन शेयर करेगा, नहीं तो यू नो अपने घर की अपने हस्बैंड की, who will come and share? He says they come and share and somewhere they look at me like this now. कि कहीं ना कहीं मेरे पास एक आंसर है उनके लिए. जस्ट बिकॉज आपको कोई दिखाई दे रहा है तो आपको जैसे ही कोई ऐसा दिखाई देगा, मिलोगे आप जिससे who's able to take care of himself first, you know that person will be able to help you. तो आप देखो पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया.

0: ऑफिस वही है, लोग वो हैं, लेकिन आपका काम करने का तरीका चेंज हो जाता है. तो लेट्स पुट सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द लिस्ट. हैव यू पुट इट ऑन योर लिस्ट? देखो, हम एक बिलीफ के साथ स्टार्ट करते हैं. एवरीथिंग विल स्टार्ट विद अ बिलीफ. सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हम दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा अच्छा ले लेंगे, ये एक बिलीफ है. लेकिन जैसे आप उसको एक्सपेरिमेंट करते हो, now that becomes the truth. And that's why we say take it back, experiment. Reject kar diya, so then nothing works out for you. It's another belief.
1: You know, husband wife ke case mein bahut hota hai, unhe ye acha nahi lagta, unhe mera ye karna acha nahi lagta, aur isliye main ye karti jati hu.
0: Bhale karo, agar karte bhi ho to pehle apni responsibility lekar ki main khush rahungi wo karte hue, फिर करो. देन इट्स ओके. इवन इफ यू नो आई हैव टू डू समथिंग फॉर समवन, बट माय फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आई विल स्टेबलाइज माय सेल्फ, देन डू इट. नॉट आई विल गो इनटू पेन एंड देन डू इट.
1: मुझे आपके लिए करना पड़ रहा है, मुझे उनके लिए करना पड़ रहा है, उनके लिए.
0: नॉट वर्थ इट. क्योंकि जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो तो दर्द का ही होगा. तो जैसे ही हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ही हमारी एक और जो बात आती वो है डायरेक्शन इन लाइफ. माई सेल्फ डायरेक्शन. कहा जाता है द गिफ्ट ऑफ लाइफ इज गिफ्ट ऑफ टाइम. ये जीवन कितने समय के लिए ये है मालूम नहीं. डू वी नो?
1: नो.
0: कितना टाइम? वी डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव. यू नो इट्स लाइक मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय है, लेकिन मेरे पास ये चॉइस है कि ये जितना समय मुझे मिला है इसका मुझे क्या करना है. हाउ डू आई हैव टू क्रिएट माई लाइफ. अब ये मुझे जितना समय मिला है, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं. या तो इसको अपने कंट्रोल में लेकर बहुत क्रिएटिवली जिस तरह का अपना मैं ड्रामा बनाना चाहूं, यू नो द वे आई वुड वांट माय रोल टू इवॉल्व, आई डू इट. द अदर थॉट इज मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, दूसरे लोग मेरे जीवन को चलाते हैं. तो समय उतना ही मिला है, जीवन वो उतनी ही मिली हुई है, लेकिन उसको हम कैसे बिताते हैं ये किसकी जिम्मेवारी है?
1: मेरी अपनी.
0: तो अगर मैं उस स्मृति से चलती हूँ कि ये सब कुछ मेरे हाथ में है एंड आई कैन क्रिएट, व्हेन विल आई बी एबल टू क्रिएट? क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अभी मुझे बुरा भला कहते हैं, लेकिन जब मैं रियलाइज करती हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं अपना सीन अपने अनुसार क्रिएट करती हूँ. तो भले आप जैसे भी थे, लेकिन अभी अभी मैंने अपना सीन कैसा क्रिएट किया, जिस तरह मैं क्रिएट करना चाहूँ. एंड दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी सीन, एवरी सीन. अगर आप इस एक्टर पर ध्यान देना शुरू कर दो तो आपकी पूरी जीवन की ये जो यात्रा है वो कौन क्रिएट कर रहा होगा?
1: मैं खुद करूंगा.
0: आप क्रिएट कर रहे हो.
1: दूसरा नहीं लिखेगा मेरी कहानी, दूसरा मेरे डायलॉग नहीं लिखेगा. वेरी ट्रू.
0: लेकिन अगर मैं जीवन इस स्मृति से चल रही हूँ कि वो क्रिएट कर रहे हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर मेरी जीवन की जो पूरी यात्रा चलेगी वो कोई ना कोई और क्रिएट करता है.
1: आपने ऐसा क्यों बोला? yeah. आप कौन होते हैं करने yeah. वाले?
0: यू नो स्पेशली फॉर सिस्टर्स कहते हैं पहले जीवन उस तरह चली जिस तरह पिता चाहता था, फिर जीवन उस तरह चली जिस तरह पति चाहता है, फिर जीवन उस तरह चली अब जब
1: बेटा.
0: दिस इज अ फीलिंग ऑफ
1: कंप्लीट हेल्पलेसनेस.
0: हेल्पलेसनेस. सो ऐसा व्यक्ति अपने प्रति अंदर कैसे सोचेगा, क्या सोचेगा अपने प्रति? यू नो इज दैट पर्सन एंजॉयिंग लाइफ? नो. दैट पर्सन इज जस्ट सेइंग कि आई एम लीडिंग माय लाइफ अकॉर्डिंग टू दिस पीपल. सो समवेयर हमें रुक कर सोचना पड़ेगा कि एम आई लीडिंग माय लाइफ अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ और एम आई लीडिंग माय लाइफ अकॉर्डिंग टू अदर पीपल. ये सेंटेंस बहुत सिंपल साउंड कर रहा होगा, बट आई एम टेलिंग यू मेनी पीपल वो एक चीज बोलते हैं, आई हैव नो चॉइस.
1: मैक्सिमम
0: आई हैव नो चॉइस. वो अपनी परिस्थितियों की एक ऐसी ऐसी लिस्ट बना लेंगे, कहेंगे आई हैव नो चॉइस. टेक दिस सेंटेंस, आई हैव नो चॉइस, एंड एक्सप्लोर कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपके पास चॉइस नहीं है. क्योंकि जिस बार आपने अपने आप को एक बार भी ये सेंटेंस दिया आई हैव नो चॉइस, मतलब आपके जीवन आपके हाथ से निकल गए.
1: लेकिन मुझे उस सपोज टीचर के साथ पढ़ना ही है जो मुझे बार बार संभव वो मुझसे नाराज है. बहुत सारे बच्चों के सामने भी ये बात आती है कि टीचर इज नॉट लाइकिंग मी, यू नो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम विद स्टूडेंट्स. तो वो मुझे उसकी क्लास को अटेंड करना ही है, लेकिन वो बार बार मुझे निग्लेक्ट करता है या मुझे पॉइंट आउट करता है. ये बहुत बच्चे बोलते हैं. तो तब इस सिचुएशन में मेरे पास कोई चॉइस नहीं है.
0: क्या चॉइस कौन सी चीज की? नहीं
1: कि मुझे उनके पास उन्हीं से पढ़ना ही पड़ेगा.
0: हाँ.
1: मुझे वो सब लेना ही पड़ेगा.
0: हाँ.
1: बट मैं रिस्पॉन्ड क्या करूंगा
0: वो मेरी चॉइस है. देखो चॉइस

0: वी आर नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अगेन, अब आपकी जिनसे शादी हुई है अब थोड़ी आप अपनी चॉइस एक्सरसाइज करेंगे, हाँ उस केस में भी हम कर देते हैं आजकल, या आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो बॉस है, आपका जो टीम है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट चॉइस देयर, वी आर टॉकिंग अबाउट हर सीन में, हर स्टेप पर रुक कर हमें अपने आप को देखना पड़ेगा कि कहीं भी गलती से भी हम अपने आप को ये तो नहीं कह रहे कि आई डोंट हैव अ चॉइस। ये एक बहुत, क्योंकि फिर एक बार ये सेंटेंस सेट इन हो जाता है तो हम हर सिचुएशन में इसको अप्लाई कर देते हैं, आई हैव नो चॉइस। यू नो अ सिंपल थिंग लाइक कई ऑफिस में कई लोगों को अपने सीनियर के प्रेशर के अंडर कुछ कई बार गलत काम करना पड़ जाता है, या करप्शन या झूठ बोलना या व्हाटएवर व्हाटएवर, अब वो करते हैं, ठीक है करते हैं, खुद करते हैं, लेकिन करते करते पता क्या कहेंगे, आई हैव नो चॉइस, कौन कर रहा है, आई एम डूइंग इट, व्हाट डू आई मीन व्हेन आई एम सेइंग आई हैव नो चॉइस, हम क्या कर रहे हैं,
1: लेकिन मैं अगर नहीं करूंगा तो मेरी नौकरी चली जाती है सपोज,
0: दैट्स ऑल्सो अ चॉइस,
1: हाँ बट देन मेरे घर पे फिर कैसे हो,
0: नो इट्स ओके, आप कर रहे हैं, वी आर नॉट सेइंग कि आपको करना है या नहीं करना है, वी आर नॉट डिबेटिंग ऑन दैट, कि आपको करप्शन अगर आपको करनी पड़ रही है, ब्राइब लेनी पड़ रही है ऑफिस की तरफ से, तो आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, क्वेश्चन इज कि आप दोनों में से जो भी ऑप्शन कर रहे हैं,
1: कर तो आप रहे हो ना,
0: वो फिर भी आपकी चॉइस है, अपने आप को ये कहकर नहीं करवाना कि आई हैव नो चॉइस, व्हाई वी आर सेइंग दिस, क्योंकि ये सेंटेंस हमें अंदर ही अंदर खाली कर देता है कि मेरी जीवन मेरे हाथ में तो है ही नहीं, एंड दिस इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस फॉर एनीबडी,
1: नो बट गिवन द चॉइस आई वुड नॉट लाइक टू लीड माय लाइफ लाइक दिस, दिस इज व्हाट पीपल,
0: एक्सरसाइज योर चॉइस देन, एक्सरसाइज योर चॉइस, आई मेट एन ऑफिसर, उनको इट वॉज एन अ बिग लेवल डील, तो वो कुछ ऐसे 6 करोड़ की डील थी, एंड उनको कहा गया था कि उनको ऐसे वेंडर से वो लेना है ताकि दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वुड गेट 6 लाख आउट ऑफ इट, ही डिडन्ट डू इट, ओके ही सेड इट जस्ट डजंट गो वेल विद मी, तो मैं नहीं कर रहा, तो वो सीनियर ने उसी टाइम कह दिया कि यू विल हैव टू पे फॉर दिस व्हाट यू हैव डन, ही सेज ओके, तो नहीं किया, तो अपनी चॉइस उस टाइम एक्सरसाइज की, अब क्या हुआ उसके बाद, उनके नीचे वालों की प्रमोशन हो गई और इनकी नहीं की गई, नाउ दिस ब्रदर हैज गॉन इनटू डिप्रेशन, ठीक है, सो ही सेज मेरा मुझे डिप्रेशन हो गया, अब डिप्रेशन किस बात से हो गया, कि मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, मैं वहीं रुक गया हूँ, कोई रीजन नहीं दिया जा रहा, कुछ नहीं हो रहा, सो आई सेड इज देयर एनी रीजन, ही सेड या आई थिंक दिस इज द रीजन, कि मैंने उनकी वो बात नहीं मानी थी, सो आई हैव टू बी वेरी क्लियर कि जब मैं अपनी चॉइस एक्सरसाइज कर रहा हूँ, I also have to be ready कि उस choice के साथ मुझे जो भी repercussions आएंगे, that is also my responsibility. Basically, अपनी जीवन की हर निर्णय की, हर decision की responsibility. तो जैसे ही he realized that, he said, ठीक है, तो मैंने ही choose किया था ना कि मुझे नहीं करना है वो काम, तो उसका जो भी result हो वो मेरी responsibility. It's fine now. So basically, दोनों अब उस choice में कि आप ब्राइड लें या ना लें, डिसीशन वट एवर यू टेक दैट्स नॉट द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज दोनों डिसीशंस आपकी ही चॉइस है, अगर आप अपने आप को ये कहते हैं कि मुझे अपने परिवार को संभालना है, मेरे पास कोई और जॉब नहीं है, तो वो भी मेरा ही डिसीशन है, वो भी मेरी ही चॉइस है, मेरे सिचुएशंस के अनुसार मेरी जजमेंट पावर मुझे जो भी कर रही है ये डिसीजन मैं ले रही हूँ, लेकिन प्लीज डू नॉट टेल योरसेल्फ आई हैव नो चॉइस, दिस इज द चॉइस आई एम मेकिंग, अगर नहीं लेते हैं उसका जो भी रिपरकशंस फेस करना है, दिस इज ऑल्सो द चॉइस आई एम मेकिंग, क्योंकि हर स्टेप पर ऐसी कोई सीन ही नहीं होती जिसमें हम चॉइस नहीं लेते हैं, सिर्फ ये है हम अपने आप को कहते क्या है, आई हैव नो चॉइस, तो वो कहने से हम एक जो जीवन की यात्रा पर चलते हैं, वी नॉट वी वेरी एम्प्टी इनसाइड के मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऐसे चल रहा है, एक्चुअली हर चॉइस हर डिसीजन हम ले रहे हैं, लेकिन लेते हुए भी क्या कहते हैं
1: कि आई
0: हैव नो चॉइस, दैट्स अ वेरी वेरी डिमोटिवेटिंग सेंटेंस फॉर माई सेल्फ,
1: लेकिन शिवानी इनफैक्ट हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन इसमें मैं बात ये करना चाहूंगी कि कई बार हम चाहते नहीं है उस राह पर चलना, और तब हमें वो करना पड़ता है, अगर मजबूरी इतनी ज्यादा
0: कौन कराता है,
1: नहीं हम खुद ही कर रहे हैं, हम खुद ही कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वो नहीं करें,

0: ठीक है, तो फिर कहा जाता है कि ये जो बात कही जाती है कि सच की राह बहुत मुश्किल है और उस पर बहुत कांटे आएंगे और ये होगा, तो फिर हम क्या सेक्रीफाइस करते जाएं?
1: क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप?
0: कहीं ना कहीं मेरे पूरे परिवार को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा।
1: सो इट ऑल डिपेंड्स ना आपके जीवन में आपकी प्रायोरिटीज क्या है। दैट्स व्हाई इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। दैट्स व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन इज कि दोनों में से जो भी करोगे Just remember that it's your choice. No one got it done from you. ये कहना कि उन्होंने मुझसे ये करवा लिया या उनकी वजह से ये हो रहा है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है।
0: लेकिन एक्चुअली अगर हम ये कहते हुए करते हैं कि आई हैव नो चॉइस,
1: इट जस्ट मेक्स मी फील गुड।
0: आई नो
1: दैट्स ऑल।
0: सो फिर अगेन माई फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स मी दैट आई हैव टू फील गुड,
1: नॉट फील गुड लाइक दिस।
0: आई हैव टू बी हैप्पी।
1: यू आर नॉट बीइंग हैप्पी व्हेन यू से आई हैव नो चॉइस। यू नो अगर मुझे आज ब्राइड लेने भी पड़े, लेट्स से नाउ इट लाइक दिस, इफ आई टेल माई सेल्फ आई एम चूजिंग टू डू दिस, देन आई एम मोर इन कंट्रोल रादर देन आई एम डूइंग इट बट आई एम नॉट चूजिंग टू डू इट, तो अंदर क्या होगा? क्योंकि उसका जो रिपरकशन आने वाला है, हर डिसीजन का जो रिपरकशन आने वाला है, वो फेस कौन करने वाला है? मैं फेस करने वाली हूँ। वेदर इट कम्स इन द लॉ ऑफ कर्मा और विच एवर वे, आई हैव टू फेस द रिपरकशन। एंड जब वो रिपरकशन मेरे सामने आएगा, आई शुड बी रेडी टू से हाँ ये मैंने किया था और इसका ये मेरे सामने रिजल्ट है। अगर आई से ये मैंने नहीं किया था, ये मेरे बॉस ने करवाया था या ये मेरी वाइफ ने करवाया था, या देन वो रिजल्ट मेरे सामने जब आएगा, I will not be able to face it. So basically my whole life goes out of control. जब action कर रहे हैं तो भी control में नहीं, और जब उसका result आ रहा है तो भी control में नहीं.
0: In fact, it's I can understand, you know, what you're trying to say, कि it's very important, because क्या है कि otherwise हम बहुत मजबूर अपने आप को फील करते हैं, और वो मजबूरी और हेल्पलेसनेस वाला जो पूरा फैक्टर है वो कहीं ना कहीं हमारे आगे की जिंदगी में भी एक वन हमें हमारा ये संस्कार बन जाता है। दूसरा कहीं ना कहीं मैं अपने आप को जस्टिफाई करने लगती हूँ, जस्टिफिकेशन देती हूँ अपने आप को पूरे ओपन
1: चांस। हम गलत या सही जो भी है करते भी जाते हैं और ये भी बोलते रहते हैं आई हैव नो चॉइस, मैं कर रहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं, बोलते जाएंगे और हर बार क्या बोल रहे हैं, मेरे पास चॉइस नहीं है, उन्होंने करवाया। तो उससे क्या होता है, आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू डू सर्टन थिंग्स विच एक्चुअली आई इंटरनली फील आई डोंट वॉन्ट टू डू।
0: अगेन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर हम और बातचीत करेंगे, बिकॉज कई सारी चीजें अभी हैं जो अगर मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूं, अगर तो मैं वो स्ट्रेंथ कहां से लेकर आ सकती हूँ? वट इज इट दैट कैन गिव मी स्ट्रेंथ? यू नो देयर लॉट ऑफ थिंग्स इसके ऊपर जिसपे हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल थैंक यू सो मच आज की बातचीत के लिए। ओम शांति। आज की इस बातचीत से जुड़ी कोई बात अगर आपके पास आती है तो आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-3444-666-0-9873-666-0-9999-7-4555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@pkmail.org।

अवेकनिंग विद धर्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट से जुड़ी अभी बहुत सी बातें जानना बाकी है और देखना बाकी है कि किस तरह से हम इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में, तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है। क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा, ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल, सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी।
0: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जीवन जीने की कला को हम सीख रहे हैं लाइफ स्किल्स की इस श्रृंखला में। अपने विचारों को देखा, जाना कि कितनी तरह के विचार होते हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो थॉट्स या विचार हम क्रिएट करते हैं क्या असर डालते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, एक बड़ा खुलासा हुआ है हमारे सामने है अब खुली किताब की तरह कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। जो भी विचार है, जिस तरह के जितनी तरह के विचार हैं आपने कहा, वो हमारे द्वारा क्रिएट होते हैं। अभी तक हम अवेयर नहीं थे, अब धीरे धीरे पता चल रहा है। ये जो विचार हैं, ये जो थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारे जीवन पे तो डाल रहे हैं असर। अगर है क्या हमारे बॉडी पर भी इनका असर होता है?
2: नहीं, डेफिनेटली पहला असर तो बॉडी पे होता है, क्योंकि आत्मा शरीर से रिलेटेड है, तो फर्स्ट इफेक्ट तो बॉडी पर ही है, फिर सारे जीवन पर है, लाइफस्टाइल पर है। और मानते हैं कि शरीर में 75 ट्रिलियन सेल्स है, तो आपका प्रत्येक विचार यह सभी 75 ट्रिलियन सेल्स पर इफेक्ट करता है।
0: बॉडी और ये पर्सनालिटी, दे आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट। तो जो जो हम थॉट कर रहे हैं वो इस शरीर पर, इस पर भी असर डाल रहा है, ऑर्गन पर भी डाल।
2: बिल्कुल, हाँ, थॉट भी डालेगा और जो पर्सनालिटी बनेगी तब तो वो थॉट आपका बार बार रिपीट होगा।
0: हाँ।
2: और उससे अच्छा और जो नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट है वो बढ़ती जाएगी।
0: ओके।
2: बात तो है कि भी वन सिंगल थॉट अफेक्ट्स प्रैक्टिकली ऑल द 75 ट्रिलियन सेल्स ऑफ बॉडी।
0: ओके।
2: है ना, मतलब इतनी इसको अगर हम समझ ले तो दिट्स क्वाइट एन डीप रूटेड थिंग कि भी

0: एक विचार पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विचार में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी है तो नेगेटिव इफेक्ट हो रही है, अगर उसमें पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिव इफेक्ट हो रही है।
1: ओके और ये कैसे डाल रहा है?
0: आत्मा का स्थान ब्रेन का एक सेंट्रल पोर्शन है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस को भी माना गया है कि वो दिमाग का भी दिमाग है, तो वहां पर आत्मा निवास करती है और हाइपोथैलेमस इमोशन से सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, और जब एक भी नेगेटिव विचार आया तो हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट होगी और उसका असर फिर सारे शरीर पर होगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस का सारा कनेक्शन ब्रेन के साथ भी है, डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर भी है।
1: ओके तो मतलब मेरा एक एनर्जी, एक जो थॉट है वो हाइपोथैलेमस को इफेक्ट कर रहा है।
0: हाइपोथैलेमस में कई सेंटर्स है, अगर ने आम भाषा का उपयोग करना हो, मेडिकल लैंग्वेज को बाजू में रख दे, तो ये एक स्विच बोर्ड की तरह, जैसे भी एक स्विच आपने ऑन की फैन स्टार्ट हो गया, दूसरा स्टार्ट किया गीजर स्टार्ट हो गया, तो ऐसे ही हाइपोथैलेमस में अलग अलग स्विचेस है। एक स्विच पर इफेक्ट हुई तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एसिडिटी
1: अच्छा,
0: बढ़ जाएगी,
1: मतलब कोई एक इमोशन से एसिडिटी
0: बढ़ गई, हाँ।
1: दूसरा इमोशन से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तीसरे इमोशन से घबराहट बढ़ गई, ऐसा
0: ये भी हो सकता है। और जो दूसरी बात विच इज साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर एक सेंटर, हम कहें भी डिफरेंट स्विच हाइपोथैलेमस में है, एक स्विच अगर ऑन हो गई तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट अटैक आ सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, इससे दूसरी स्विच ऑन हुई तो डिफरेंट इफेक्ट्स होगी, और इमोशंस की भी इफेक्ट पॉसिबल है। ये अपने आप में एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है कि कैसे क्रोध की क्या इफेक्ट होगी, लोभ की क्या इफेक्ट होगी, अगर क्रिटिसिज्म हुआ तो क्या इफेक्ट होगा।
1: मेरे ऑर्गन में जो प्रॉब्लम आई है मैंने वहीं तक सीमित रखा और उस दवाई के साथ ही उसको रिलेट किया, या फिर मैंने वो फिजिकल एक्सरसाइजेज और उन तक किया। मतलब व्हाई आई लिव्ड इन दिस फूल्स पैराडाइज, मुझे समझ में क्यों नहीं आया?
2: नो, इट्स नॉट दैट हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आज इस बात की भी अवेयरनेस है कि माइंड इज हैविंग एन इफेक्ट ऑन द बॉडी। ये बात की भी अवेयरनेस है कि अगर आप बॉडी का कितना भी ध्यान रख लें तो भी अगर माइंड हेल्दी नहीं है, सो मेनी यंग प्रोफेशनल्स टुडे आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक्स एट अ वेरी यंग एज, और इनसे अगर बात की जाए तो ये कहेंगे हम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं, हम अल्कोहल भी नहीं लेते, हम हर मॉर्निंग अपनी वॉक पर जाते हैं, हम फिजिकली भी ओबीस नहीं है, कुछ नहीं है, तो लॉजिकली देर इज एब्सोल्यूटली नो रीजन के ऐसे हेल एंड हार्टी एंड जो राइट लाइफ स्टाइल, जो हम कहते हैं ना राइट लाइफ स्टाइल, वो लीड कर रहे हैं, तो फिर इसको इतनी यंग एज में मिड थर्टीज और समथिंग या अर्लियर देन दैट हार्ट अटैक हो रहा है, दैट्स बिकॉज वी आर इग्नोरिंग वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि इनका मन कितने टर्मोइल से गुजर रहा है सारा दिन। तो जबकि ये अवेयरनेस आ गई, अब जैसे हम बॉडी का ध्यान रखते थे हमें मन का रखना है, लेकिन हम मन का क्यों नहीं रख रहे थे? क्योंकि हमने कहा वो तो विदाउट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन से, सो वी एक्सेप्टेड स्ट्रेस, सी वी एक्सेप्टेड ये सारी इमोशंस जो आज हम सोच रहे हैं कि वी आर क्रिएटिंग, वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट अर्लियर वी थॉट वी आर नॉट क्रिएटिंग, दे आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। सो इफ आई एम अ कॉर्पोरेट लीडर और इफ आई एम वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल जहां ना दिन है ना रात है, सुबह निकलना है रात को आना है, फैमिली टाइम नहीं है, स्ट्रेस बहुत है, कॉम्पिटिशन बहुत है, सो दीज इमोशंस आर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, एंड इफ दीज इमोशंस आर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ देन दीज डिजीजेज ऑल्सो
1: इनफैक्ट ओ हो येस बिकॉज आई कैन नॉट चेंज,
2: आई कैन नॉट चेंज देम। दे थॉट टू चेंज मीन्स पर आप अपनी जॉब छोड़ दो या आप अपने एम्बिशंस को कम कर दो,
1: यू संन्यास लेके बैठ जाओ,
2: संन्यास नहीं भी तो भी यू नो इफ यू टेल समवन थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ा सा कहेंगे कॉम्पिटिशन इतना कि अगर मैं थोड़ा भी स्लो हो गया तो। आज लीडर छोड़ो, एक नॉर्मल जॉब के लिए भी, जॉब एक है, लाइन में 100 लोग खड़े हैं जो उस जॉब के लिए रेडी हैं, थोड़ा सा आप स्लो डाउन हो जाओ द कंपनी विल से ओके यू आर नॉट नीडेड, लेट अनदर पर्सन वॉक इन। सो वी हैव एक्सेप्टेड दैट सिचुएशंस चैलेंजिंग है तो स्ट्रेस तो होना ही है, द बिगेस्ट सो कॉल्ड रॉन्ग बिलीफ सिस्टम यू नो, जिसकी वजह से हम अपना कितना नुकसान कर रहे थे। जब तक सिचुएशन नहीं चेंज होगी इमोशन नहीं चेंज हो सकते, और जब तक इमोशन नहीं चेंज होगी तो हेल्दी होना पॉसिबल
1: नहीं
2: है, सो वी एक्सेप्टेड, सो वी थॉट कि चलो जितना मैं ध्यान रख सकता हूँ उतना रख लेता हूँ, एंड दैट वाज ऑल फिजिकल। बट द आयरनी इज कि इतना ध्यान रखने के बावजूद बीमारियां तो, लेट्स गो बैक 20 इयर्स बैक, नो कॉन्सेप्ट ऑफ मिनरल वाटर, नो कॉन्सेप्ट ऑफ जॉगिंग पार्क, डायट अवेयरनेस, आज तो हर न्यूज पेपर में डायट पर आर्टिकल है, आज हम स्प्राउट्स खा रहे हैं,

0: तो हेल्दी हो गए. यू नो यू आस्क समवन क्या चाहिए, खुशी चाहिए. खुशी कैसे मिलेगी, हेल्दी होंगे तो खुश होंगे. हेल्दी होंगे तो खुश होंगे, नहीं खुश होंगे
1: तो हेल्दी
0: होंगे. तो इक्वेशंस ही तो सारे.
2: लेकिन में भी नहीं गए जो शिवानी बहन बता रहे हैं कि ये तो समझ में आता है कि स्ट्रेस के इफेक्ट होती है, लेकिन वो डीप में क्या है, क्यों हो रहा है, उसको हम अंडरस्टैंड अच्छे से आज तक नहीं कर पा रहे. और आपने भी जो शुरू में पूछा ना, वह बात भी एक प्रकार से सही है कि लोग आज ये समझने लगे कि हम आसन कर लेंगे, कुछ प्राणायाम कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे. ये मन पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गहरी बात है, हमें समझ में नहीं आया
1: और हमारे बस में ही नहीं.
2: हाँ, ये भी
1: कि हम उस पर कुछ कर ही नहीं सकते. और वो मतलब क्योंकि अगर वो करना है तो मुझे अपना लाइफ स्टाइल बदलना पड़ेगा, मुझे अपनी एम्बिशन छोड़नी पड़ेगी. लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये फीलिंग्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ, सिचुएशन बाउंड नहीं है, अगर हम ये रियलाइज कर लें, देन लेट्स लुक एट इट कि क्या असर पड़ता है हमारी बॉडी पे. क्योंकि उस तरफ तो हमने जाने की कोशिश नहीं की, तो क्या असर डालती हैं ये फीलिंग्स.
2: हमारे शरीर में एक प्रणाली है जिसको कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि ऑटोमेटिक काम करती है. जैसे शरीर के मसल्स को कंट्रोल करना हमारे बस में, हाथ को ऊपर नीचे करना, परंतु जो इंटरनल सिस्टम्स हैं, जैसे कि हार्ट की एक्टिविटीज, डाइजेशन, किडनी का फंक्शन, ये सब ऑटोमेटिक चलता है. अब जब नींद में सोए हैं तब भी वो अपना नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, इसी के कारण उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा. ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, एक है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिंपैथेटिक. जो सिंपैथेटिक प्रणाली है, अधिकतर जो हमने टॉक्सिक इमोशंस कहा, वो सभी टॉक्सिक इमोशंस सिंपैथेटिक सिस्टम को बहुत तेज चलाएंगे. और सिंपैथेटिक सिस्टम वो एक्सेलरेटर की तरह है, और जब सिंपैथेटिक सिस्टम फास्ट काम करती है तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी, सांस की गति तेज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जो हृदय की अपनी धमनियां है, ब्लड वेसल्स है, वो भी छोटी सी हो जाएगी, मसल्स है वो सारे टेंशन में आएंगे, मुंह सूखने लगेगा.
1: तो ये जो हमें फिजिकल सिम्टम्स दिखते हैं जब हम यू नो इन इमोशंस को महसूस कर रहे होते हैं, सो इट्स बिकॉज ऑफ द
2: सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी.
1: ओके,
2: जैसे कि सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी में डाइजेशन खत्म, आपको भूख नहीं लगेगी, इवन कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में जाते हो तो बैक पेन होता है, इवन माइग्रेन हेडेक कैन रिजल्ट बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम. तो ये सारा एक चेन ऑफ रिएक्शन है. और जो दूसरी सिस्टम है पैरासिंपैथेटिक सिस्टम, की जो एक प्रकार से ब्रेक की तरह है, और जब पॉजिटिव इमोशंस हो, खुशी का अनुभव हो, सुख का अनुभव हो, सेटिस्फेक्शन का अनुभव हो, तो थोड़ी सी पैरासिंपैथेटिक सिस्टम ज्यादा काम करती है कि जो अच्छा है. आज वर्तमान 21वीं सदी में ब्रेक पर तो हमारा पैर ही नहीं है, ब्रेक फेल हो गई है और एक्सेलरेटर बहुत ही फास्ट चल रहा है, इसके कारण बहुत सारी जो बीमारियां हैं वह हो रही है.
1: ओके, डॉक्टर पटेल, एक मेरे को बात जाननी है. आपने कहा कि जैसे ही हमारे टॉक्सिक इमोशंस जो हैं वो आती हैं हमारे पास, यानी कि हमारे थॉट्स जो है बहुत फास्ट चलने लगते हैं, तो ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक एस्पेक्ट्स हैं, जो ऑटोनॉमस है, ये नॉर्मल जो है नॉर्मल लाइफ में, अगर दोनों कुछ नहीं हो रहा, कोई भी इमोशंस इस वक्त नहीं है, तो वो क्या एक बैलेंस में चलेंगे?
2: हाँ, तो ऑलवेज वो बैलेंस में चलेंगे. सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी भी नहीं है, पैरासिंपैथेटिक भी नहीं है, और आप हेल्दीली चल रहे हो. लेकिन जब कोई ऐसी सिचुएशंस आए, क्योंकि परिस्थितियां तो आनी है, मैं नहीं कह सकते परिस्थिति नहीं आई,
1: हमने वो इमोशंस क्रिएट की बार बार, आई थिंक वी नीड टू रब इनटू आवरसेल्फ,
2: कि भी वो पॉजिटिव इमोशंस को भी लाना है, मुझे थोड़ा डिटैच होना है, पीस ऑफ माइंड को अनुभव करना है, तब पैरासिंपैथेटिक सिस्टम भी एक्टिवेट होगी और हमारा जो स्वास्थ्य है वह सही रूप से चलेगा.
1: पैरासिंपैथेटिक अगर एक्टिवेट हुआ तो क्या क्या बॉडी पर इफेक्ट होता है?
2: वो अधिकतर इससे अपोजिट है.
1: अच्छा, मतलब हार्ट रेट कम होगा,
2: ब्लड प्रेशर कम होगा, मसल्स है वो रिलैक्सेशन में जाएंगे, प्रॉपर सिक्रीशन होगा डिफरेंट जूस का, इवन हार्मोनल सिस्टम पर भी उसकी कुछ इफेक्ट है, वो बैलेंस होगी.
1: ओके, मतलब अगर पैरासिंपैथेटिक ज्यादा सिक्रीट हो जाए
2: तो बुरा है. बट दैट इज एक्सट्रीम. अदरवाइज जो नॉर्मली है वह नेगेटिव इमोशंस है वो सिंपैथेटिक पर इफेक्ट करते हैं.
1: तो आप हमने कोशिश की थी कि गुस्सा आ रहा है तो उसके ऑपोजिट के इमोशन को क्रिएट करने की कोशिश करें.

0: Yeah, because somewhere we need to understand ki ho kya raha hai.
1: Somewhere I think apne belief systems par work kar le, kyunki belief system se thoughts hai. To jab mujhe ye realize ho raha hai ki mera ek ek thought, ek ek gusse ka thought mera damage kar raha hai, dusre ka to kar raha hai, kaam ka to kar raha hai, lekin sabse pehle mera damage kar raha hai aur shayad dusre bhi se bhi zyada mera hi damage kar raha hoga. You know, kai baar offices mein agar kisi senior ko aadat ho gayi hai gusse se kaam karane ki, to kai baar jo juniors hain un par ab us bahut baat ka asar nahi padta. You know, their immunity system becomes much stronger mentally also, ki ye to aise shor machate rehte hain, sometimes people just laugh about it, lekin jo kar raha hai उसका तो नुकसान हो ही रहा है ना,
0: के हर अंग का जैसे कहा.
1: एंड फिर उसकी वो नेचर बनती जा रही है. एंड होता भी क्या, अगर मैं किसी को देखकर इरिटेट हो जाऊं, आई माइट शाउट एट देम वंस, लेकिन वो बात मेरे माइंड में तो कट, यू नो, कुछ मिनट्स तक तो कम से कम रहेगी. ये लोग ऐसे ही हैं, जब तक इन पर चिल्लाओ नहीं, फिर मैं अपने आप को जस्टिफिकेशन दे रही होती हूँ अपने बिहेवियर के लिए. तो शोर तो एक मिनट में मचाया, लेकिन कम से कम 15 मिनट उसके थॉट्स चल रहे होंगे, इसका मतलब कितना ये डैमेज हो रहा होगा अंदर वाला. दिस आई एम नॉट रियलाइजिंग.
0: इवन हेट्रेड जिसको हम कभी बाहर शो नहीं करते कितनी बार, और अंदर अंदर हम मतलब हेट में जी रहे होते
1: हैं. क्यों सप्रेशन भी क्यों नहीं सप्रेस्ड. आज बहुत सारे वाइव्स फील करते हैं, हम बोल नहीं पाते, हम अपनी बात नहीं रख पाते, हस्बैंड मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहा है. तो अंदर अंदर अंदर सप्रेशन, अपनी थॉट्स को नहीं चेंज कर रहे, देन इट इज मैनिफेस्टिंग इन सम काइंड ऑफ अ डिजीज ना. तो हेल्दी रहने के लिए अगर मुझे ये समझ में आ जाए, एटलीस्ट मैं अपने कुछ बिलीफ सिस्टम्स को तो चेंज कर दूं. इवन इफ आई एम एक्सेप्टिंग कि स्ट्रेस तो होना ही है, चलो लेट्स डू दैट सेकेंडरी, क्या मैं आज ये बिलीफ सिस्टम सिर्फ ले लूं कि मैं गुस्सा करे बिना काम कराऊंगा. ये तो मेरे हाथ में,
0: आपको हेल्दी रखने
1: हाँ, के लिए. ये तो मेरे हाथ में है ना,
0: स्पेस रखने के लिए.
1: एंड इट्स ओनली अ प्रोग्रामिंग ना. मैं बार बार अपने आप को ये बात कहूंगा कि मैं गुस्से करे बिना काम कराऊंगा, व्हाई विल आई नॉट बी एबल टू डू इट. इट्स अ बिलीफ सिस्टम दैट आई हैव टू चेंज. एटलीस्ट वो इफेक्ट इमीडिएटली मुझे दिखाई देने लगेगा अपने ऊपर. धीरे धीरे मुझे ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि अच्छा, मैं अगर ध्यान रखूं, आई कैन यू नो स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई थॉट्स, देन आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो, देन आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ फियर ऑल्सो, बिकॉज मुझे रियलाइज होगा कि ये सारी नेगेटिव इमोशंस मेरी अपनी क्रिएशन है. इट्स ओनली एक किसी स्टेप से शुरू करना पड़ेगा. एंड आई नॉर्मली फील कि एंगर इज एन इजियर वन टू स्टार्ट विद, क्योंकि एंगर बाहर मैनिफेस्ट होता है. आज हमें अपने आप को अंदर देखना थोड़ा सा अभी भी मुश्किल है कि कहाँ वरी है, कहाँ जेलसी है. जो हमें बाहर अपने आउटबर्स दिखाई दे रहे हैं ना, मैं क्रिटिसाइज करती हूँ, एटलीस्ट आई कैन सी दैट. मैं गॉसिप करती हूँ, आई कैन सी दैट. मैं शाउट करती हूँ, आई कैन सी दैट. लेट मी जस्ट स्टार्ट वर्किंग एटलीस्ट ऑन दीज बिहेवियर्स. आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट डू दिस, आई विल रियलाइज कि एटलीस्ट जहां मैंने अटेंशन दिया, आई वॉज एबल टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज. जिन चीजों को मैंने अभी तक कहा था कि ये नेचुरल है, धीरे धीरे आई बी एबल टू गो डीपर टू फियर्स, इनसिक्योरिटीज, रिजेक्शन.
0: क्योंकि अभी तक रियलाइजेशन ये ही नहीं था कि दीज आर माई क्रिएशन,
1: ये भी था कि दीज आर नेचुरल.
0: होगा ही
1: करना नेचुरल. ये इतना नेचुरल नेचुरल कहने से इतनी सारी अननेचुरल चीजें हो रही थी.
2: और इवन ये बात भी कि एक थॉट की इफेक्ट है, जैसे नहीं एक सिंपल थॉट कि आई एम अ पीसफुल सोल, वो तो सिंपल है ना. और कुछ चीजें बोले आप बिलीव नहीं भी करो, दैट ऑल्सो कैन हैव अ वंडरफुल इफेक्ट. हमारे गुलजार दादी एक बहुत अच्छा उदाहरण सुनाते हैं, जो एंगर की बात कही ना, कि भी एक बॉस थे, वो माउंट आबू में आए, उन्होंने मेडिटेशन को सीखा और ये बात आई कि आई एम अ पीसफुल सोल. और फिर ऑफिस में गए, सचमुच पीसफुल रहने लगे. लोगों को भी आश्चर्य हुआ कि भी क्या बात है. पहले तो हमारा बॉस आता था, गुस्से में ही बात करता, डांटता था, हम लोग भी कांपते थे आते ही. अब इसमें क्या हो गया, तो पीसफुल हो गया सचमुच, लोगों में भी चेंज आया. दादी कहती यहां तक उसके जो सबॉर्डिनेट थे मेरे पास आए और कहा, दादी इनको रोज आप मेडिटेशन सिखाना, 2-4 महीने में तो जरूर इनको कुछ न कुछ मेडिटेशन की बात सिखाना. कहा क्यों, तो कि दादी ये जरूर आप करना, क्योंकि पहले जब आता था ना तो हमको लगता था कि काल आ गया, अभी जब ये हमारे बॉस आते हैं तो हमको लगता है बाप आ गया.
0: दिस
2: रियल थिंग ना, दादी एक्सप्लेन दिस.
0: डॉक्टर पटेल, अगर ये सारी चीजें इतना इफेक्ट कर रही हैं, जैसा आपने कहा कि सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक का एस्पेक्ट आ जाता है,
2: इवन देर आर अदर्स, नो देर आर अदर 3 एस्पेक्ट्स है जिस पर इफेक्ट होती है, जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऐसे दूसरी एंडोक्राइन सिस्टम. ये छोटी छोटी ग्लैंड्स है, आपने भी सुना होगा कि गले में थायराइड ग्लैंड है, साथ में पैराथायराइड है, यहाँ पर

0: मुझे तो कई बार लगता है कि 80% जनता जो है वो हाइपोथायराइड से जूझ रही है, मतलब हाइपो या हाइपर से जूझ रही है।
1: किडनी के ऊपर दो ग्लैंड्स है जिसको एड्रिनल कहते हैं, ऐसे नहीं, ओवरीज और टेस्टीज, उसमें से भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ये जो सभी एंडोक्राइन हार्मोन्स है वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में होते हैं और साथ साथ में वो केमिकल सीधा खून में चला जाता है और केमिकल से वो सीधे खून में नहीं जाते हैं। तो ये जो एंडोक्राइन सारी सिस्टम है वो कहते हैं कि ऑर्केस्ट्रा की तरह है,
0: डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं।
1: हाँ, डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि वो सीधा खून में जाता है। और यह जो डिफरेंट सिस्टम्स है वो ऑर्केस्ट्रा में अगर एक इंस्ट्रूमेंट भी ठीक से नहीं बजे तो पूरा आनंद किरकिरा हो जाता है। तो ऐसे ही कहते हैं कि भी एक भी ग्लैंड में थोड़ी भी दिक्कत हो तो सारी सिस्टम गड़बड़ा जाती है। और इसका कंट्रोल भी हाइपोथैलेमस में है।
0: अच्छा,
1: हाइपोथैलेमस से जो डिफरेंट ग्लैंड्स है उनको रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स रिलीज करते हैं। जैसे थायराइड एक हार्मोन रिलीज करता है थायरोक्सिन, अब थायरोक्सिन को रेगुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस थायरोक्सिन रिलीजिंग फैक्टर सिक्रेट करता है, दूसरा है थायरोक्सिन इनहिबिटिंग फैक्टर
0: TSH वगैरह।
1: तो अभी TSH को रिलीज भी करना है, बढ़ाना भी है, वो बैलेंस भी हाइपोथैलेमस में, और जो हमारे इमोशंस है उससे उसमें इम्बैलेंस आ जाता है और एक इम्बैलेंस हुआ सारे के अंदर डिस्टर्बेंस निर्माण होगा। तो बात यह है कि यह इश्यू बड़ा सेंसिटिव है कि छोटा सा भी विचार आपके सारे हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस ला देगा।
0: तो ये जो टॉक्सिक इमोशंस हैं ये इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं,
1: वो हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट करेंगे।
0: अच्छा, तो
1: रिलीजिंग या इनहिबिटिंग जो फैक्टर्स है वो डिस्टर्ब होंगे, वो डिस्टर्ब होंगे तो हार्मोन्स पर भी इफेक्ट होगी। ऐसे दूसरा एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, कि जो किडनी के ऊपर छोटी सी ग्रंथि है, अब कॉर्टिसोल की जरूरत भी है हमें क्योंकि उससे एनर्जी भी आती है, परंतु कॉर्टिसोल की मात्रा अगर बढ़ जाए तो भी उसकी बहुत नेगेटिव इफेक्ट है, यहां तक कि ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। तो इसके कारण स्ट्रेस से या टॉक्सिक इमोशन से कॉर्टिसोल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है,
0: हाइपोथैलेमस इफेक्ट होता है।
1: हाइपोथैलेमस पहले इफेक्ट होता है फिर उस पर इफेक्ट,
2: इसीलिए कहते होंगे ना जब गुस्सा आता है तो मुझे लगता है मुझे एनर्जी मिली।
1: हाँ, एक बार
0: गुस्से में आप कुछ भी कर सकते
2: हैं, मस्ट बी गिविंग दैट सर्ज ऑफ एनर्जी एट दैट टाइम, लेकिन वो टेम्पररी हुआ और बार बार करने से उसका लॉन्ग टर्म फिर
1: इवन एवरी टाइम, हर बार आपको गुस्सा आया भले एनर्जी लगी परंतु तब ब्रेन पर भी इफेक्ट हुई और ब्रेन डैमेज हुआ।
0: अच्छा,
1: हार्ट पर भी नेगेटिव इफेक्ट हुई, हार्ट भी डैमेज हुआ।
0: अच्छा, अगर कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज हो रहा है
1: तो ब्रेन पर भी डैमेज होता है,
0: ब्रेन पर असर पड़ रहा है उसका।
2: एंड दैट्स व्हाई इफ वी सी मोस्ट ऑफ दीज डिजीजेस थायराइड और वंस यू गेट द प्रॉब्लम यू आर लिविंग विद इट फॉर अ लाइफ टाइम।
0: हाँ, मतलब
2: क्योंकि हम रूट को तो अगर रूट थॉट्स है उसको तो मैनेज करने के बारे में हमने नहीं सोचा, तो इनमें से जो भी इलनेसेस हैं एक बार हो गई तो हम सिर्फ दवा ले लेके उसको बस चलाते रहते हैं, उसके बैलेंस को क्रिएट कर रहे हैं। रूट को अगर ठीक कर लेते तो प्रॉब्लम भी एबल टू कम आउट।
1: और एक देखो मैकेनिज्म है, कहते पूरी आज नई ब्रांच डेवलप हो रही है मेडिसिन की जिसको कहा है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, कि कैसे साइकिक फैक्टर्स है वह ब्रेन पर इफेक्ट डालते हैं और इन टर्न वो इम्यून सिस्टम को गड़बड़ा देते हैं। नहीं, इम्यून सिस्टम वो एक हमारी डिफेंस मैकेनिज्म है।
0: बार बार बीमार जो हम पड़ते हैं, मतलब हम बच्चों के लिए भी कहते हैं कि बार बार बीमार
1: पड़ते हैं, तो नहीं, डिफेंस मैकेनिज्म पर नेगेटिव इफेक्ट होता है और साथ साथ इम्यून सिस्टम जो है वो कैंसर भी निर्माण कर सकती है।
0: अच्छा,
1: जो कहीं कैंसर्स होते हैं ना, कहते पता नहीं क्यों कैंसर हो गया, कि वो तो स्मोकिंग नहीं कर रहा है, ठीक से एक्सरसाइज कर रहा है, वेट भी ठीक है, डाइट ठीक है, तो क्योंकि ये इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो गई, इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई। वास्तव में बॉडी को ये है कि भी ये मेरी बॉडी है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, लेकिन इम्यून सिस्टम अगर रिकॉग्नाइज नहीं करे, ऐसे नहीं हमारे सोल्जर है वो हमारे लोगों को मारने लगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, दे आर अवर ओन पीपल, तो है ना, ऐसा इम्यून सिस्टम में होता है।
0: Okay.
1: और इसके कारण कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है,
2: अपने ही डिफेंस मैकेनिज्म को अटैक कर दिया
1: नहीं, क्योंकि वो फॉल्टी हो गया और रिकॉग्नाइज नहीं करने लगा।
0: वही जैसे कंप्यूटर है, उसके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई वायरस ऐसा आया तो उसका पूरा वो कोलैप्स हो गया,
2: अच्छी वैल्यूएबल फाइल्स को ही डिलीट कर दिया,
1: सारी फाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया।
0: अच्छा।

0: कॉर्टिसोल था, क्योंकि किडनी के बारे में बात की आपने, ये डायबिटीज को एक्टिवेट करने में भी क्या ये रिस्पॉन्सिबल?
1: कॉर्टिसोल ऐसा हार्मोन है जिसकी काफी इफेक्ट है. जैसे कॉर्टिसोल इज एन एंटी इंसुलिन हार्मोन, वो इंसुलिन से अपोजिट काम करता है. तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो इंसुलिन सप्रेस होगा और डायबिटीज पर भी उसकी इफेक्ट होगी. एटलीस्ट जो कंट्रोल है डायबिटीज का वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा. और एक जो बात गहराई से समझने की है कि जो अभी भी साइंस अब मानने लगा, 100% नहीं मान रहे हैं, वो यह कि हमारे विचार भले यह कोई मैकेनिज्म न भी हो, अब तक तो डॉक्टर्स यही सोचते थे कि भाई मन में जैसे गुस्सा आया तो क्या मैकेनिज्म होगी ताकि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा. लेकिन अब तो ये मानने लगे कि विचार है वो भले मैकेनिज्म न भी हो, जो कनेक्शन है फिजिकल कनेक्शन न हो तो भी बॉडी पर इफेक्ट कर सकते हैं. एक होता है एंटी डायुरेटिक हार्मोन, कि मन एंटी डायुरेटिक हार्मोन पर कैसे इफेक्ट करेगा उसका कनेक्शन एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी उसकी इफेक्ट होती
0: है. एंटी डायुरेटिक हार्मोन क्या करता है? एक
1: हार्मोन है कि जो अपने जो बॉडी में पानी है उसका बैलेंस रखता है. अगर नहीं पानी ज्यादा हो जाए तो भी अच्छा नहीं है, कम हो जाए तो भी अच्छा नहीं है. तो वो जो बैलेंस है वो ये हार्मोन करता है. वो टॉक्सिक इमोशन से एंटी डायुरेटिक हार्मोन पर भी नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है.
0: तो वो वाटर रिटेंशन जो होती
1: हो जाएगा, या तो एक्सेस नहीं ज्यादा यूरिन होगा और वाटर है वो शरीर के बाहर निकल जाएगा,
0: बस स्वेलिंग हो जाती है, ज्यादा रिटेन हो जाता है.
1: रिटेन होने से स्वेलिंग होगी.
0: हाँ.
1: तो अब तो ये मानने लगे कि वो फिजिकल कनेक्शन की भी जरूरत नहीं है, मन बॉडी पर डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है.
0: अमेजिंग शिवानी, मतलब दिस इज समथिंग, इट्स अ रेवोल्यूशन. और इस प्लेटफॉर्म पे अगर हम आज बात कर पा रहे, व्हाट डू यू से?
2: I think it gives a big hope to all of us that we don't need to live with these diseases.
1: Yeah.
2: It's a big hope. कि जैसे परिस्थितियां मैं अपने कंट्रोल में ला सकता हूँ, रिश्तों को कंट्रोल में ला सकता हूँ. हमने इतनी बार इस प्लेटफॉर्म पे कहा कि रिश्ता, चाहे उसमें दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व है, हम अपने सोच को ठीक कर लें, रिश्ता ठीक हो जाएगा. आज हमें समझ में आया हम अपने सोच को ठीक कर लें, शरीर ठीक हो जाएगा, तभी तो कहीं एनर्जी इन्वेस्ट होगी. सिवाय अभी लुकिंग एट इट शॉर्ट टर्म, हमें ये पता है अगर लाइफ में बॉडी ठीक नहीं चली तो जो भी चीजें हम अचीव करना चाहते थे वो नहीं कर सकते. तो आज उल्टा इट्स अ होप, इट्स फैक्ट, इट्स अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस कि एक और चीज मेरे कंट्रोल में आ गई है. था पहले मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में आ सकता है, मेरे रिश्ते मेरे कंट्रोल में आ सकते हैं, आज ये कि मेरा शरीर भी मेरे कंट्रोल में आ सकता है. नहीं तो अभी तक कह रहे थे वो बीमारी हो गई, या अब बीमारी हो गई तो अब ये रहेगी. आज हमें ये पता चलता है बीमारी भी मैंने क्रिएट की थी, ठीक भी इसको मैं ही करूंगा. और अगर अभी कोई बीमारी नहीं है तो मैं अगर ठीक चलूं यहाँ तो यहाँ कोई बीमारी नहीं होगी. दिस इज लाइक वंडरफुल न्यूज.
1: और मैसेज एक इम्पोर्टेंट ये है कि भी डरने की बात नहीं, ये सब जान के
2: हम लोग डरते नहीं. आपको नॉलेज मिलती है कि सब कंट्रोल में आ गया है, तो एक्चुअली तो अच्छी बात है ना कि ये चीजें मेरे कंट्रोल में.
1: पॉजिटिव समझो कि दिस इज इम्पोर्टेंट.
0: नो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एग्जिस्ट कर रही है, आज बीमारियों से हम जूझ रहे हैं, हम उनको ठीक करने के भी रिवर्सल प्रोसेस भी कर पाएंगे.
1: डेफिनेटली वी कैन डू इट.
0: सोच को अपनी चेंज
1: करके.
0: डॉक्टर पटेल, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच. क्योंकि अभी तक जिंदगी के कई, जैसे आपने कहा कि रिश्तों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे परिस्थितियों में, अपने आप अपने थॉट को चेंज करके, लेकिन आज अगर इन बीमारियों को भी हम रिवर्स कर सकते हैं प्रोसेस को, तो उससे बड़ी तो कोई मिरेकल नहीं हो सकता. ओम शांति. सचमुच आज जो हमने बात की है, हाँ थोड़ी थोड़ी घबराहट, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि डरने की जरूरत नहीं, लेकिन एक जैसे रियलाइजेशन होता है, जैसे हमें पहली बार समझ में आया था कि हमारे थॉट्स जो हैं वो हम खुद क्रिएट करते हैं, बहुत डिफरेंट लगा था. सिमिलरली हमारे ही द्वारा क्रिएट किए गए ये थॉट्स और फीलिंग्स मेरे शरीर के जितने भाग हैं, जितनी बीमारियों से आज मैं जूझ रही हूं, उनको क्रिएट करने में सहायक हुए हैं. इनफैक्ट उनके द्वारा बहुत हेल्प मिली है ये बीमारियां क्रिएट होने में. पहले ये पता चला, अब हम उसको रिवर्स करने के प्रोसेस को भी जानेंगे. लेकिन पहले इसको अच्छी तरह से आप एक्सेप्ट करें, समझें, जानें कि क्या क्या हो रहा है आपके शरीर में. और जैसे हमने थॉट्स को देखा, शायद अगर शरीर के बारे में सोचना शुरू करेंगे हमें ये रियलाइज होना शुरू हो जाएगा. कोई बात आपके मन में है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं ईमेल पर या फिर फोन पर. हमारे फोन नंबर हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555.

हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। आगे जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस प्रोसेस को रिवर्स कैसे करें। अगर ये थॉट्स मुझे इन बीमारियों की तरफ लेकर जा सकते हैं तो यही थॉट्स, यही इमोशन जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ इन बीमारियों को ठीक भी तो कर सकते हैं। इसी आशा के साथ, इसी होप के साथ आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर। उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: मुगल हुकूमत के अंतिम बादशाह थे बहादुर शाह जफर। क्रांति के लिए नायक की जरूरत होती है, मगर 1857 की क्रांति का नायक कौन बनता? भारत में कोई ताकत ऐसी न थी जो अंग्रेजों का सामना कर पाती। ऐसे में क्रांतिकारियों की निगाहें दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर पर जा टिकी और उन्हें क्रांति का नायक बना दिया गया। बादशाह के नेतृत्व में 4 महीने तक जंगे आजादी के मतवालों ने अंग्रेजी फौज का मुकाबला किया। हर कदम पर खूनरेज मुकाबला हुआ। जब अंग्रेजी फौजें लाल किले की तरफ बढ़ने लगी तो बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़कर हुमायूं के मकबरे में पनाह लेनी पड़ी, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ युद्ध में शिकस्त की बात होती तो और बात थी। अंग्रेजों ने बर्बरता की सभी सीमाओं को पार करते हुए उनके चारों शहजादों को कत्ल कर दिया और उनके सिर बादशाह के सामने भिजवा दिए। बादशाह ने अपना जज्ब नहीं खोया। शहजादों की लाशें शहर कोतवाली के सामने लटका दी गईं और उनके कटे हुए सिर जेल खाने के सामने खूनी दरवाजे पर। जफर, जो एक शायर भी थे, सिर्फ इतना ही कह सके, गाजियों में भू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। बादशाह को कैद करके बर्मा भेज दिया गया। बादशाह से कहा गया था कि यदि वे अंग्रेजी हुकूमत से दया की याचना करें तो उनकी सजा माफ हो जाएगी, मगर बादशाह ने ऐसा अपमानित और गैर शाही कदम उठाने से इंकार कर दिया। रंगून के जेलखाने में भारतवर्ष के अंतिम मुगल बादशाह ने 7 नवम्बर 1862 को प्राण त्याग दिया।

0: चलिए हुजूर।
1: उधर बैठो तीनों। अपने ही दीवाने खास में जफर एक ऐसी जगह बिठाए गए जो हिंदुस्तान के बादशाह की शान के खिलाफ थी, लेकिन अफसोस कि कुछ नहीं कर सकता। उनका सबसे वफादार नौकर उनके पीछे खड़ा था और उनकी बुढ़ापे की संतान जवां वक्त उनके बन कर और वो खुद फर्श पर तकियों के ढेर के सहारे बैठे थे। शुरू शुरू में तो ऐसा लगा कि जैसे वो बेचैनी के समंदर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ी एक सिफर पछा गया उनके दिमाग और उस सिफर से घिरे हुए जफर बस आंखें बंद किए हुए सुनते रहे कि अपने ही मुल्क में अपने ही घर में क्या क्या तोहमतें लगाई जा रही हैं।
2: डोंट वरी मिस्टर जफर, कोई सजा सुनाने का पहले तुमको हम तुम्हारा गुनाहों का लिस्ट सुनवाएगा। रीडर प्लीज रीड द लेटर।
3: ब्रिटिश सरकार के पेंशन भोगी होते हुए भी बहादुर शाह जफर ने तोपों की रेजिमेंट के सूबेदार मोहम्मद बख्त खान की सेना के अफसरों और सिपाहियों को ईस्ट इंडिया कंपनी की जानकारी के बिना राज्य के खिलाफ विद्रोह और बगावत करने में 10 मई 1857 से अक्टूबर 1857 के बीच दिल्ली में रहते हुए मदद की और उकसाया भी।
0: हुजूर, ये
4: अब्बा अब्बा हुजूर, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अब तो बताइए कि ये सब गलत है।
5: कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये वक्त सिर्फ सुनने का है, बोलने का नहीं।
2: साइलेंस प्लीज। दूसरा जुर्म बताया जाए।
3: आपने दिल्ली में ही 10 मई 1857 से अक्टूबर 1857 के बीच हिंदुस्तान के उत्तरी पश्चिमी राज्यों, दिल्ली के रहवासियों और खुद अपने ही पुत्र मिर्जा मुगल, जो कि ब्रिटिश सरकार का गुनाहगार था, इन सभी को सरकार के खिलाफ विद्रोह और युद्ध करने के लिए उकसाया।
6: अरे खुदा से डरो, गलती कर रहे हो तुम लोग। तुम हिंदुस्तान के बादशाह से गुस्ताखी कर रहे हो।
2: Shut up, you bloody servant. Yes, mister. You carry on.
3: ब्रिटिश सरकार की तमाम बंदिशों के बावजूद बहादुर शाह जफर ने 11 मई 1857 को दिल्ली में एक देशद्रोही की तरह अपने को सत्ता संपन्न हिंदुस्तान का सत्तारूढ़ शासक घोषित कर दिया। इसके अलावा सोच समझकर अपने बेटे मोहम्मद बख्त खान और दूसरे वतन परस्त बगावत करने वालों के साथ मिलकर राज्य के खिलाफ सेना इकट्ठी कर जंग की घोषणा की।
7: बाप रे, इतनी सारी तोहमतें लगाई उन पर।
1: अरे अभी तो सबसे बड़ी तोहमत बात है, कत्ल तक का इल्जाम लगाया गया उन पर।
3: और अब गुनाह अजीम जिसे अंग्रेजी सरकार कभी माफ नहीं कर सकती। 16 मई 1857 के दिन दिल्ली के किले के भीतर बहादुर शाह जफर ने 49 लोगों को कत्ल किया है। इसके अलावा एक और संगीन जुर्म 10 मई 1857 से 1 अक्टूबर 1857 के बीच बहादुर शाह ने सिपाहियों और तमाम छोटी छोटी रियासतों के हिंदुस्तानी शासकों को ईसाई और यूरोपीय लोगों का कत्ल करने की छूट दी। इसी छूट के चलते ही कई यूरोपीय औरतों और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया।
7: राम राम राम, इतने संगीन जुर्मों का गुनहगार बनाया गया बादशाह को, और उन्होंने कुछ नहीं किया।
1: करते भी क्या था, मालूम था उन्हें कि उनकी नहीं सुनी जाएगी। पूरे 21 दिनों तक चली इस न्यायिक जांच के दौरान अपने ही महल में गुनहगारों की तरह रहे। 27 जून से 9 मार्च 1858 तक रोज झूठे और बेबुनियाद आरोप उनके सर मढ़े गए और उन आरोपों की बिना पर बादशाह को

0: वे अधिनियम के तहत गुनहगार ठहरा दिया गया। बतौर सजा उन्हें बेगम जीनत महल और बेटे जवान बख्त के साथ रंगून भेज दिया गया।
1: लेकिन अंग्रेजी सरकार ने ये सब किया क्यों? क्या लगाए गए सभी आरोप वाकई गलत थे?
0: अब भाई, अगर अपने मुल्क को अपना कहना गलत है तो वो गलत थे। असल में इस गलत जांच और बादशाह पर लगाए गए विश्वासघात और देशद्रोह के गलत आरोपों से कंपनी सरकार ये बात साबित करने में सफल हो सकी कि हिंदुस्तान पर अब भी किसी बादशाह का नहीं बल्कि कंपनी सरकार का ही अधिकार कायम।
1: मतलब ये सब इसीलिए किया गया ताकि एक तो बादशाह जफर के बढ़ते असर को रोका जा सके और दूसरा ये कि उनका ये हश्र देखकर फिर कोई क्रांति की चिंगारी ना जला सके।
0: हाँ, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें और उनके परिवार को बतौर सजा रंगून भेज दिया गया। हिंदुस्तान का बादशाह और उसके अपने शाही लाल किले से एक सादे कमरे में आ गए। कुछ उम्र का असर था और कुछ हालात का, जो बादशाह की तबीयत बिगड़ती ही चली जा रही थी और ऐसे में उनकी कलम से जैसे मायूसी का झरना ही फूटा।
2: बादशाह सलामत?
3: आओ जीनत।
2: अब तबीयत कैसी है आपकी?
3: सच कहें तो कितना सुकून है इस जिंदगी में। ना आवाम की फिक्र, ना माथतों की और ना कोई मसरूफियत। गोया की हर जिम्मेदारी से छूट गए हम। अब हम सो सकते हैं जी भरकर, लंबी नींद, चैन की नींद।
2: ये क्या कह रहे हैं शहंशाह आला?
3: शहंशाह नहीं, सरताज कर बेगम। शाही रुतबा तो दूर छूट गया, तब तो हम सिर्फ तुम्हारे मालिक हैं और अपने मन के। पर अब तो ये अच्छा ही है ना कि तुम अब महलों की जीनत ना होकर सिर्फ हमारे दिल की जीनत हो।
2: मेरे आका,
3: लगता है कि यहां आकर ही हमने असली आजादी पाई है। वहां तो दिल्ली में हमारा वजूद महज उस कागज की तरह था जिस पर किस्मत की स्याही से जब तब जो लिख जाता वो हम करते। पर देखो ना, यहां हम अपनी खुदी को पहचान रहे हैं। क्या हुआ जो हम कैद खाने में हैं?
2: मेरे मालिक, आप कुछ भी कह लें, मैं आपका दर्द समझती हूँ, लेकिन आपके लब की मुस्कुराहट दिल की तीस को कब तक छुपाएगी?
3: चलो छोड़ो, जानमाज बिछा दो, इबादत का वक्त हो गया।
2: नहीं नहीं मेरे आका, हबीब साहब तो आपको ज्यादा हिलने डुलने को ही मना कर गए थे। आपने सुबह से आराम भी तो नहीं किया। थोड़ी देर लेट जाइए, थोड़ा आराम मिल जाएगा।
3: अरे तुम्हें तो हमारी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, और तुम हो कि
2: लेकिन आका,
3: लेकिन कुछ नहीं, हम इबादत करेंगे। आप बस जनमाज बिछा दें।
2: ये लीजिए।
4: ओफो अब्बा हुजूर, आप हबीब साहब का कहना ना मानकर हम लोगों की परेशानियों में इजाफा ही कर रहे हैं। क्यों क्यों अब्बा हुजूर, इस तरह बार बार उठते बैठते हैं? आप क्यों नहीं मानते हम सबका कहा?
3: वक्त ने हमें दुश्मनों के हुक्म मानने पर मजबूर किया ही है। अब क्या हमें औलाद के आगे भी सर झुकाना होगा?
4: नहीं अब्बा, आप गलत क्यों समझ रहे हैं? हम लोग तो आपकी बेहतरी के लिए कह रहे हैं, और फिर हम नहीं कहेंगे तो क्या ये दुश्मन कहेंगे? देखिए ना, पहले ही सुबह से आपको 3 बार घसा

0: कि मादर हिंद की सदाएं हमें लगातार पुकार रही हैं। वो लाल किले के बुर्ज, जामा मस्जिद के मीनार, वो दरबार आम और दरबार खास, वो सब जैसे इस कैद की दीवारों के पीछे से पार पार झांक रहे हों और अपने अजीज बादशाह को आगोश में समेट लेने को बेकरार हों और आने वाली इन सदाओं को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब्बा
1: मेरे ये
0: कोई है? इस कम नसीब बादशाह के गुनाह को माफ कर अब्बा, मादर वतन की रखवाली कर अब्बा, प्यारा को अमन चैन बख्श। इस बंदे की फरियाद सुन अल्लाह, इस बंदे की फरियाद।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: अला अला अला।

अगर इच्छाएं मुझे चला रही हैं, तो मैं उसकी दास हूं, और अगर मैं इच्छाओं को चला रही हूं तो मैं मालिक हूं। क्योंकि सतयुग और कलयुग में फर्क ही यही है। इस समय हम हर चीज के दास हैं और उस समय हम हर चीज के मालिक होते हैं। अभी अधीन है, फिर अधिकारी होते हैं। तो मैं हर चीज की मालिक बनूं, मैं अपनी इच्छाओं की मालिक बनूं, न कि इच्छाओं की दास।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंदी
2: रहा। नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर, आपका स्वागत है बीइंग ब्लिस में।
3: ओम शांति।
2: ओम शांति। कुछ दिनों से हम लोग बात कर रहे थे, एक प्रश्न पूछना था आपसे। ये जो हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट्स की आप बात कर रहे थे, तो कल मैं सोच रहा था कहीं ये एक मेरे लिए बहाना तो नहीं बन गया, चलो पिछले जन्म का है, पास्ट कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि इसका मीनिंग मैं प्रॉपरली समझा नहीं।
3: सी, बहुत बार अपने जीवन को देखकर या आसपास किसी और के जीवन को देखकर माइंड में क्वेश्चन उठता है कि इतने ऑनेस्ट है, इतने हार्ड वर्किंग है, अपना 100% से ज्यादा लगाते हैं, फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही। दूसरी तरफ कोई और

0: कि दूसरे
1: एब्सोल्युटली अब ऑपरेटिंग दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी उस पर
0: तो पुराने ओएस पे नए सॉफ्टवेयर नहीं आते
1: नहीं चलेंगे और फिर समय के साथ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी क्या करना चाहिए
0: अपग्रेड
1: करना चाहिए
0: दैट्स अ नाइस वन
1: राइट यू हैव टू अपग्रेड अपग्रेड मीन्स चेक कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे लिए कम्फर्टेबल है देखो समय बदलता है वातावरण बदलता है परिस्थितियां बदलती हैं बीच बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करना होता है
0: लेकिन जैसे आपने कहा उस दिन कुछ ना कुछ सुबह उठ के पढ़ लेना चाहिए समथिंग स्पिरिचुअल ये भी तो अपग्रेड होता ही है ना इसी इन चीजों से
1: नेचुरली
0: सफाई भी होती है हम लोग क्लीन भी करते हैं
1: एब्सोल्युटली
0: अपने डिस्क को और जो भी आप कहते हैं
1: हार्ड डिस्क को क्लीन नहीं करेंगे अगर तो इतना कुछ सारा अक्यूमुलेट हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम भी है मशीन भी हाईली एफिशिएंट है लेकिन क्लटर्ड है टू मच डेटा है एंड यूजलेस डेटा है तो वो अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना तो इसलिए जो आपने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है यस ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रांग है लेकिन क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है सो वी हैव टू बी केयरफुल कि राइट ऑपरेटिंग सिस्टम हो क्योंकि लाइक वी सॉ बिलीफ सिस्टम थॉट फीलिंग एटीट्यूड एक्शन हैबिट पर्सनैलिटी डेस्टिनी विच मीन्स बिलीफ सिस्टम विल क्रिएट डेस्टिनी अगर मैं अपने जीवन में एक गलत बिलीफ सिस्टम लेकर चलूं तो उसका प्रभाव डायरेक्ट मेरे भाग्य पर आ रहा है इसलिए बिलीफ सिस्टम की चेकिंग बहुत जरूरी है इम्पोर्टेंट है
0: मान्यता वैसा भाग्य
1: जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से सब थॉट्स चल रहे हैं मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक हो और मैं थॉट को चेंज जैसे बहुत कॉमन है गुस्सा नेसेसरी है ये ऑपरेटिंग सिस्टम में बैठा हुआ है स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम थॉट्स पे नहीं आज मुझे प्यार से बात करनी है आज मुझे शांति से सबके साथ चलना है वो नहीं होगा वो होगा ही नहीं एक बार
0: बिलीफ सिस्टम को कैसे निकालें फिर
1: बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ता है थॉट को नहीं चेंज कर सकते मतलब थॉट को अगर चेंज करेंगे एक बार होगा दूसरी बार फिर गुस्सा करेंगे
0: पता नहीं कितने जन्मों से बिलीफ सिस्टम आया हुआ है बचपन से आया हुआ है ये जाता नहीं है ना फिर
1: जाता नहीं इट्स अ प्रोग्राम बिलीफ सिस्टम भी एक प्रोग्रामिंग ही है ना उसको हम चेंज कर सकते हैं कैसे करेंगे एक नया बिलीफ सिस्टम लेंगे पुराने बिलीफ सिस्टम के साथ काफी समय से चल रहे हैं डेस्टिनी देखी क्या बने
0: इसको पैरेलल चलाएं
1: थोड़े दिन के लिए पुराने वाले को साइड पर रखिए क्यों पैरेलल नहीं चल सकता क्योंकि पुराना वाला बहुत स्ट्रांग है इफ आई से गुस्सा नेसेसरी है एंड अब आई से प्यार से सबसे अच्छा काम हो सकता है तो मैं अब दो को ऑपोजिट को पैरेलल नहीं चला सकते ना हम ये कह सकते हैं थोड़े दिन के लिए मैं एक नया बिलीफ सिस्टम लेकर ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ लेट मी सी व्हाट इज द रिजल्ट
0: सही बात
1: इफ मेरा काम हो गया अच्छी तरह से मेरे रिश्ते अच्छे होने लगे मुझे अच्छा होने
0: लगना
1: लाइट फील लगने लगा देन आई विल से दिस बिलीफ सिस्टम इज बेटर हेल्दी दिस इज द ट्रूथ तब हम पुराने वाले को हटा देंगे
0: तो ट्राई करने में क्या है
1: ट्राई करने में क्या है यही तो स्पिरिचुअलिटी है स्पिरिचुअलिटी मीन्स एक्सपेरिमेंटेशन स्पिरिचुअलिटी डजेंट मीन अभी तक जो आपने बोला ना हमने बुद्धि क्यों नहीं लगाई उस पर क्योंकि हमने क्या किया किताब पढ़ी सत्संग में गए कहाँ ले रहे हैं विजडम ऐसी जगहों पर जाएंगे ना या किसी का प्रवचन सुना और ऐसे ऐसे किया
0: वाह वाह
1: यस नहीं यस अच्छा लगा सुनते हुए देखो कहीं भी कोई बात सुनेंगे जो पॉजिटिव होगी पावरफुल होगी
0: अच्छी लगे तो इतना अच्छा मजा आता है मन
1: तो अच्छी लगे
0: हो जाता है
1: मन को एक जैसे यू नो जिसको कहेंगे सूदिंग जैसे कोई मसाज कर रहा है मेरे मन को मन इतना थका हुआ है कोई आकर उस पे मसाज कर रहा है माइंड को ब्यूटीफुल वर्ड्स अच्छे भजन सूदिंग लेक्चर बहुत अच्छा लगता है अब वो सूदिंग इफेक्ट में इतना हम खो जाते हैं कि उसके ऊपर लॉजिक कई बार नहीं यूज करते हैं कि ये राइट या ये राइट दिस इज कम्फर्टेबल और नॉट वी जस्ट से हाँ सो ब्यूटीफुल ऐसे ऐसे ऐसे चले जाते हैं
0: जैसे एक मधुमक्खी सनफ्लावर में मस्त हो जाती है ना जब खाती खाती खाती ये भी भूल जाती कि सनसेट होने वाला है और फ्लावर बंद हो जाता है वो बेचारी अंदर ही मर जाती है उसी में और वो समझती है कि आई एम सूदिंग सूदिंग सूदिंग तो हम सारा जीवन ऐसे ही कर रहे हैं
1: नहीं तो इसमें हुआ क्या वो सूदिंग में इतने खो गए
0: वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं क्या अपने सारा जिंदगी सारा जीवन सूदिंग सूदिंग में खो जाऊं और ऐसे ही मर

0: रहा हूँ, तो व्हेन विल आई ग्रो, मेरा ये अपग्रेड कब होगा मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम?
1: जो भी हम वर्कशॉप अटेंड करेंगे या किताब अच्छी कोई पढ़ेंगे या सत्संग सुनेंगे, उसमें कभी कोई गलत बात तो मिलेगी नहीं. देयर विल ऑलवेज बी समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड इट द राइट वे. सी, अगर आप मुझे कुछ सुना रहे हैं वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग,
0: पहले सुनाने वाले को भी तो अंडरस्टैंड होना चाहिए,
1: वेरी इम्पोर्टेंट. तो आप सुना रहे हैं, नहीं, कई बार ये भी होता है कि सुनाने वाले से ज्यादा सुनने वाले की अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी हो.
2: हाँ.
1: आप एक लाइन लेंगे,
0: हर आदमी अलग अलग मीनिंग निकालेगा.
1: आप हमें इतने अच्छे अच्छी बातें ढूंढ के लेकर आते हैं, अब ये कहीं लिखी हुई है ना जहां से आप लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपने पढ़ा, आपने और 100 लोगों के साथ शेयर किया, बात एक ही है, लेकिन बात की अंडरस्टैंडिंग, बात की तह तक, डेप्थ में जाकर उसकी मीनिंग को समझना, एंड सबसे इम्पोर्टेंट उस बात को इम्प्लीमेंट करके देख लेना. सूदिंग था, बातें सूदिंग थी जो हर जगह सुनी, राइट थी रॉन्ग थी चेक हुआ ही नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में लेकर आए उन बातों को. हम गए, इट्स लाइक यू नो, गए मसाज किया, अच्छा लगा, बैक टू वर्क, अपना ऑफिस, अपना काम, अपने वहां तो प्रॉब्लम्स है ही, फिर कल सुबह जाएंगे, फिर अच्छा अच्छा फील करेंगे, फिर आएंगे. तो इसलिए चेकिंग तो हुई नहीं ना कि व्हाट वर्क्स फॉर मी, व्हाट डजंट वर्क फॉर मी, क्योंकि आई डिडंट डू एनीथिंग विद इट, आई ओनली वेंट, फेल्ट नाइस, केम बैक. अब क्या होगा, कौन सा बिलीफ सिस्टम मेरे लिए राइट है, मेरे लिए नहीं राइट है, वो तब पता चलेगा. सुना, उसको एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके आई विल डिसाइड. हो सकता है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम था कि गुस्सा नेसेसरी है, आज मैंने दूसरा वाला यूज किया, मुझे यूज करके नहीं ठीक लगा. हो सकता है, बिकॉज उसमें भी कितना समझा, किस तरह से यूज किया, कितनी डिटर्मिनेशन से यूज किया, और क्या उसका मुझे रिजल्ट मिला. अगर मुझे रिजल्ट मिला, देन आई विल से लव वर्क्स फॉर मी. नहीं मुझे वो रिजल्ट मिला, ऐसे नहीं, मेरे से नहीं होता, मेरे लिए वही वाला ठीक है.
0: सपोजिंग मैं, मेरा एक बिलीफ सिस्टम है, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं कि गुस्से के बिना यार काम नहीं चलता आज के बिना, और इतने बच्चे हैं, इतने नौकर, इतना स्टाफ है, किस किस को प्यार करूं मैं, आप रूल बनाओ, डांट दो और अपना मिलिट्री बनाओ. तो मैं ये सोच रहा था आपसे बात करते करते कि जब रिजल्ट तो चलो पॉजिटिव सपोजिंग मिल भी गया, लेकिन मेरी सेहत, वो रिजल्ट, वेल, इज इट वर्थ इट कि मैं सारा गुस्सा करके अपनी सेहत खराब करके अपना कर्म, जैसे आपने अभी बताया पास्ट कार्मिक अकाउंट भी बना रहा हूँ, सेहत भी खराब कर रहा हूँ, पैसे भी दे रहा हूँ स्टाफ को और फिर डॉक्टर को भी दे रहा हूँ, फिर बाद में अंत में मेरा रिजल्ट निकल रहा है जो मैं चाहता हूँ.
1: रिजल्ट मतलब सपोजिंग मेरा रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट यही इम्पोर्टेंट है. सी, दिस इज क्लैरिटी. जब आप अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं कि इस बिलीफ सिस्टम का रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट डजंट मीन सिर्फ काम हुआ कि नहीं ना. अब दिस इज इंटेलिजेंस. कोई अगर लिमिटेड आउटलुक से है, विजन से है, वो रिजल्ट सिर्फ यही चेक करेगा, और शुरू शुरू में वो बोलेंगे काम नहीं हो रहा, लोग बिगड़ गए, लोग कहना नहीं मानते, लोग मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे, क्योंकि उनके लिए रिजल्ट की डेफिनेशन सिर्फ उतनी है कि काम हुआ कि नहीं. आपने अभी जो रिजल्ट की डेफिनेशन सुनाई?
0: नहीं, मैंने कहा आपसे कि सपोजिंग मैं अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम से कि गुस्से के बिना काम नहीं होता, करने के बिना मेरी फैक्ट्री चल गई, मेरी पिक्चर बन गई, मेरा घर का सब काम पूरा हो गया, बराबर गाड़ी में पेट्रोल था, ये था वो था, सब लोग अपने काम करने लग गए, लेकिन उसका असर जो मुझ पर हुआ, दिस वर्सेज दैट पूछ रहा हूँ मैं.
1: इट्स नॉट दिस वर्सेज दैट, इट इज रिजल्ट ऑफ माई बिलीफ सिस्टम.
0: मैंने क्या खो दिया?
1: रिजल्ट, जब मुझे देखना है ये बिलीफ सिस्टम है और ये उसका रिजल्ट है, तो नाउ आई विल चेक कि गुस्सा आउट, प्यार से, पेशेंस से, अंडरस्टैंडिंग से काम सारे हो जाते हैं. नाउ टेक, स्टार्ट वर्किंग. ठीक है, शुरू शुरू में ये भी हो सकता है कि काम पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी, जैसे कोई दवाई हम लेते हैं. ठीक है, शुरू शुरू में बहुत कुछ होगा, कोई साइड इफेक्ट भी आ जाएगा, कोई दवाई थोड़ी सी रिएक्ट भी कर जाएगी, कोई कुछ भी, लेकिन आप अपनी डोज लेते रहेंगे और फाइनली इतनी डोज लेने के बाद आपको, अगर डॉक्टर को आप बोलो भी ना कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, बोलेगा वेट, कंटिन्यू टेकिंग एटलीस्ट फॉर 3 डेज. आप 3 दिन लो, उसके बाद देखते हैं कि आपको दवाई सूट कर रही है कि नहीं. ऐसे नहीं पहले दिन ही ली, पहली डोज ली और आपने कहा, क्योंकि बॉडी एक नई चीज

0: ले रहे हैं उसको भी उसके साथ एडजस्ट होने में वो दवाई का अपना काम. सिमिलरली एक नया बिलीफ सिस्टम, पहले दिन प्यार से बात की, व्यक्ति ने काम ही नहीं किया मेरा. हम कहेंगे ये क्या है, ये थोड़ी वर्क करता है काम ऐसे. मैं नहीं, कांट गिव अप लाइक दिस, कांट गिव अप लाइक दिस. सो वी हैव टू फिक्स अ टाइम पीरियड कि इतने टाइम तो ये डोज लेनी है नई वाली. एंड फिर रिजल्ट की डेफिनेशन कि जब रिजल्ट को चेक करना है कि डिड दिस बिलीफ सिस्टम वर्क, तो ये सब पैरामीटर्स पे चेक करना है जो आपने अभी बताया. मन लाइट फील कर रहा है, शरीर तो ऑब्वियसली अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा मन खुश है तो, लोगों के साथ मेरा रिश्ता बेटर होता जाएगा, काम डेफिनेटली होता जाएगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपने कहा कार्मिक अकाउंट मेरे जो क्रिएट हो रहे हैं सबके साथ. आज काम होता गया होता गया, लेकिन हर आत्मा के साथ कैसा कार्मिक अकाउंट क्रिएट होता गया. दर्द देते गए दर्द आता जाएगा, दर्द देते जाएंगे दर्द आता जाएगा, काम होता गया काम होता गया.
1: ये जो दर्द देते गए और दर्द आता जाएगा, इस साइकिल में मेरा जब दर्द बढ़ता है तो मेरा और गुस्सा फिर और इरिटेशन नहीं बढ़ेगा
0: नेचुरली.
1: वो पॉइंट तो सोचा ही नहीं
0: नेचुरली ना. सपोज
1: मैंने दर्द आपको दिया, फिर आया, फिर दिया, फिर आया, अगर तो फिर और चिड़चिड़ा हो जाऊंगा मैं. हाँ, और पकता जाएगा.
0: क्यों? क्योंकि अभी मैंने गुस्सा किया. मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने अभी गुस्सा किया. गुस्सा करते ही मेरी बैटरी थोड़ी कम हुई, टर्बुलेंट एनर्जी यूज की, फिर दर्द क्रिएट हुआ, मतलब पावर, आत्मा की पावर थोड़ी सी कम हुई. फिर आपको दिया तो आपने भी मेरे बारे में कैसा सोचा? फिर
1: आपको लौटाया अंदर से,
0: लौटाया
1: मीन्स
0: आपने मेरे बारे में गलत सोचा. गलत नहीं भी सोचा, आप सिर्फ हर्ट ही हो गए उस बात से, उदास ही हो गए. तो आपकी वाइब्रेशन तो है, व्हाट विल गो विल कम बैक. तो आपने मेरे बारे में ऐसा सोचा तो मेरा थोड़ा सा और कम हो जाएगा. अब मैंने आपके साथ किया, फिर एक और के साथ किया, फिर और के साथ किया, धीरे धीरे वो मेरा बन गया संस्कार. अब ये संस्कार बड़ी बातों में नहीं, छोटी बातों में भी आने लगा. अब हर बार जब ये आया, हर बार ये मेरी पावर को कम किया. अब ये एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट है, गुस्सा कर करके मेरी पावर जो कम होती है वो संस्कार की सिर्फ बात नहीं है, वो ओवरऑल आत्मा की पावर कम होती है. सी, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, एक ही सोर्स है. ऐसा नहीं ये काम के लिए अलग, ये काम के लिए अलग, ये रिश्ते के लिए अलग. चलो ये रिश्ते में मेरे को प्रॉब्लम है लेकिन मेरे बाकी रिश्ते ठीक हैं, ये काम में प्रॉब्लम है बाकी सब चीजों में तो मैं ठीक हूँ. एनर्जी इज वन. सपोज आपके अंदर 20 ब्यूटीफुल संस्कार है, लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग, हेल्पिंग, एवरीथिंग, और एक सपोज जेलसी का है या एक एंगर का है, कोई भी एक ऐसा है, लेकिन वो एक बहुत स्ट्रांग है. तो वो मेरी बैटरी ये है, लेकिन वो एक जैसे मेरी बैटरी को
1: डिप्लीट
0: डिस्चार्ज करता है बहुत. एंड डिस्चार्ज जो होता है, क्योंकि वातावरण बहुत पावरफुली नेगेटिव है इस टाइम, तो जो लीकेज है कंपेयर टू द चार्जिंग बहुत फास्ट होती है. अब एक बार ये लीकेज होने शुरू हो जाती है, मतलब सोल पावर कम हो रही है. इट्स पावर ऑफ द सोल, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड. इट्स नॉट वन क्वालिटी ओनली. जैसे हम कहेंगे गुस्सा किया तो शांति कम हो रही है, राइट? नफरत किया तो प्यार कम हो रहा है. इट्स नॉट ओनली दैट, इट्स लाइक ये किया तो आत्मिक शक्ति कम हो रही है
1: और कार्मिक अकाउंट भी बन रहा है.
0: कार्मिक अकाउंट तो बन रहा है. ये आत्मिक शक्ति कम होने से उसका इफेक्ट हमारी सारी पॉजिटिव क्वालिटीज पर आएगा. पॉजिटिव क्वालिटीज को यूज करने के लिए आत्मा को शक्तिशाली होना होगा. अब जब ये आत्मिक शक्ति कम होगी तो विल पावर पे भी इफेक्ट होगा. आज क्यों लोग एडिक्शन नहीं छोड़ पाते हैं, हम अपनी छोटी छोटी आदतें नहीं छोड़ पा रहे हैं. यहाँ हम बात कर रहे हैं बड़े संस्कारों को छोड़ने का, अभी तो हम छोटी आदत भी नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि सोल पावर कम है.
1: इसलिए हिंदी में कहते हैं ना आत्मिक बल,
0: आत्मिक बल, सोल पावर. इसलिए जब हम कहेंगे कि नए बिलीफ सिस्टम का रिजल्ट तो इतना लॉन्ग टर्म है कि वी विल बी सरप्राइज्ड विद द रिजल्ट दैट वी गेट. एंड ये जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम चल रहा था उसका रिजल्ट भी कितने सारे एस्पेक्ट्स पर पड़ रहा था विच वी वर नॉट अवेयर. तो इसीलिए फिक्स टाइम करते हैं, एक नया बिलीफ सिस्टम एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेट्स सी द रिजल्ट ऑन अ बिग पिक्चर. एंड एक बार हमें रिजल्ट मिलेगा हम अपने पुराने बिलीफ सिस्टम के पास नहीं जाएंगे. बिकॉज वी लाइक द रिजल्ट. वी विल लाइक द रिजल्ट. तो ये जो आपने कहा कि हमने दो बिलीफ सिस्टम सुने और फिर भी हमने उसके ऊपर चिंतन ही नहीं किया, वर्क नहीं किया. अब तब क्या हुआ, हम आउट ऑफ कन्वीनियंस दोनों में से किसी को भी यूज करते गए.
1: जब मर्जी है उसको यूज कर ली, जब मर्जी उसको यूज कर ली.
0: जैसे अगर मैंने देखा कि मेरे पड़ोसी के साथ जीवन में कुछ गलत हो रहा है, मैंने कहा कर्म ही ऐसे किए थे. कर्म ऐसे किए थे, क्या क्या उसने किया है, होना ही था ऐसा. मेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया.
1: ना इंसाफी
0: अपने साथ नहीं बोलेंगे, मैंने कर्म ऐसे किए थे. सी सो वी स्टार्टेड यूजिंग बोथ फॉर वैलिड फॉर अस, कि कब क्या यूज करना, कब क्या अप्लाई करना. अब हमें दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा एंड चेक कर लें कि कौन सा यूज करना है. वो वाला यूज करें जो आपको एम्पावर करेगा, आपको शक्तिशाली बनाएगा. दोनों की चेकिंग कर लें. भगवान हमारा भाग्य लिखता है, गॉड राइट्स आवर डेस्टिनी, इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिखे तो हमारा भाग्य ऐसा नहीं होगा. इट विल बी अ ब्यूटिफुल डेस्टिनी, परफेक्ट डेस्टिनी.
1: एक सत्संग में सिस्टर एक आदमी ने बोला था कि एक आदमी था जो बार बार बोलता था चोरी करता था, बोलता मैं क्या करूं, भगवान ने मेरा भाग्य बनाया, भगवान करवाता है मुझसे चोरी. फिर दूसरे दिन करते, तीसरे दिन, तो फिर उसको उसके सत्संग में बोला उसको कि ठीक है, जब पुलिस पकड़ के मारेगी, जेल में डालेगी, तब भी यही कहना कि देखो ये भी भगवान ने लिखा और वो भी एक्सेप्ट करना. फिर वहां एक्सेप्ट नहीं करते हैं.
0: एक्चुअली ये क्यों सिखा है, सी दिस इज ऑल्सो के रिलीजन ने या फिलोसोफर्स ने हमें क्यों सिखाया. ये इतनी सुंदर बात आपने बताई है. जब कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है, हमारा बहुत चिंतन चलता है कि क्यों क्यों क्यों. इम्पोर्टेंट, एक परिस्थिति को फेस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज पहले चाहिए होती है, परिस्थिति को एक्सेप्ट करो. जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी ना, नेक्स्ट स्टेप्स टूवर्ड सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि उलझन में होते हैं. परिस्थिति एज इट इज को एक्सेप्ट करना, जैसे लोगों को एक्सेप्ट करना, परिस्थिति को एक्सेप्ट करना होता है. अब हम कर नहीं पाते थे तो फिर किसी ने कहा भगवान ने की मर्जी, एक्सेप्ट कर लो, ताकि हम उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे. फिर उसको और मोटिवेट करने के लिए हमें कहा भगवान ऐसी बात देता ही उसको है जिसके अंदर उसको फेस करने की पावर होती है. दिस वॉज ऑल बींग डन विथ चिल्ड्रन, यू नो, एक बच्चे के साथ कैसे हम बोलते हैं बाहर नहीं जाना, रात को भूत है, क्योंकि शायद उसको उस समय उस एज में उससे ज्यादा गहरी बात समझ में नहीं आएगी. इसीलिए इंटेंशन क्या है, बस वो जाए नहीं ना अंधकार में, इसलिए किसी भी तरह रोक दिया उसको, क्लैरिटी तो नहीं दी उसको. इसी तरह हमें गलत कर्म करने से बचाना था तो कहा भगवान हरेक के अंदर है, भगवान सब कुछ देख रहा है, भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है. तो ये सब करने से हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी, इंटेंशन बहुत सुंदर था.
1: लेकिन मुझे आप वाली बात ज्यादा सूट करती है कि जब मैं कहता हूँ कि हाँ मैं आज जो चीज भी जिस चीज से सपोजिंग मैं दुख वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, सुख का नहीं, चलो आज मुझे कोई दुख दे रहा है, ठीक, मेरा पास कार्मिक अकाउंट के साथ था, तो जैसे मैंने एक्सेप्ट किया उस पॉइंट को, तो दर्द तो हुआ, तकलीफ भी हुई, लेकिन मैंने बोला ठीक है भाई, पुराना कार्मिक अकाउंट है और मेरा ही किया हुआ है. मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि मेरे से मेरी गाड़ी का कहीं लग जाए ना थोड़ा स्क्रैच, तो मैं लोग हाँ यार लग गया मुझसे,
0: वेरी गुड,
1: मेरी नई गाड़ी, मेरा ड्राइवर बोले दिखता नहीं, ये नहीं वो नहीं, निकाल दूंगा, पैसे काट दूंगा, कितना गुस्सा आता है. तो वैसे मुझे जब एक्सेप्टेंस हुआ कि हाँ भाई मैंने किया था, मुझसे गिर गया दूध, मुझसे नुकसान हो गया, मेरे से कांच टूट गया, मुझसे ये कपड़े मेरे खराब हो गए, एयर होस्टेस प्लेन में मुझ पर गिरा दी और मेरे से गिर जाए, चाहे कितना अंतर होता,
0: कितना अंतर.
1: तो मुझे इतनी अच्छी लगी आपकी बात की भाई ठीक है मैंने किया, आज मैं भुगत रहा हूँ बोलूँ या फेस कर रहा हूँ बोलूँ या कम्प्लीशन कर रहा हूँ बोलूँ.
0: right.
1: जैसे मैंने लोन लिया बैंक से, आज चुका रहा हूँ.
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि
1: ये बहुत पसंद आया इंस्टेड ऑफ दैट फॉल्स बिलीफ से, तो ये मुझे क्लैरिटी right. देती है.
0: इट्स नॉट ओनली फॉल्स बिलीफ, इट इज डेस्टिनी चेंज हो जाती है ना. अगर हम ये बिलीफ लेकर चले कि परमात्मा मेरा भाग्य लिख रहा है, सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो मेरा जीवन जीने का तरीका कैसा होगा. हर स्टेप पे बातें आएंगी, हम कहेंगे भगवान मेरे से खुश नहीं, भगवान की मर्जी से, वेट करो भगवान अच्छा करेगा ही, फिर भगवान पर फेथ रखो, भगवान सब ठीक कर देगा, मतलब फिर भगवान को बोलेंगे सब ठीक कर दो, डेस्टिनी। और ये

0: दूसरा बिलीफ सिस्टम कि मैंने, जैसे आपने कहा, मेरा कोई किया हुआ कर्म है जो मेरे सामने आया है, अब मुझे इसको प्यार से फेस भी करना है और आगे के लिए ठीक भी करना है, ठीक भी करना है. अब डेस्टिनी अलग. सो इट्स गोइंग टू बी टू कम्प्लीटली, जो भगवान की मर्जी से चल रहा है वो डेस्टिनी में आई एम गोइंग टू बी लाइक दिस, मेरे हाथ में कुछ नहीं, वेट करो, भगवान ने प्रॉब्लम दी, इंतजार करो, भगवान
1: अंदर अंदर दुख भी,
0: दुख तो होगा ही क्योंकि प्रॉब्लम ठीक भी तो नहीं हो रही. हम जब ठीक करेंगे नहीं तो वो ठीक होगी नहीं. आपका कंप्यूटर खराब हो जाए, आप ऐसे लेकर बैठ जाओ, हाय भगवान ने मेरा कंप्यूटर खराब कर दिया, ऐसा क्यों किया, फिर रोज उसको पूजा करो, प्लीज मेरा कंप्यूटर ठीक कर दो, प्लीज मेरा कंप्यूटर ठीक कर दो. नहीं, भगवान जरूर ठीक करेगा, हम उसके बच्चे हैं, वो जरूर ठीक करेगा, वेट एंड वॉच. और एक है, मेरा कंप्यूटर खराब हुआ है, मैंने गलत बटन दबाया था, अब मैं बेटर डू समथिंग टू इट एंड जल्दी उसको ठीक करूं. टू डिफरेंट थिंग्स. आई विल गेट सेट टू डूइंग इट राइट, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसको ठीक मुझे करना है. हाँ, परमात्मा से शक्ति लेंगे, तरीका सीखेंगे, ज्ञान लेंगे, लेकिन उसको ठीक मुझे करना है. तो फिर डेस्टिनी अलग. आपका चाहे आपके सामने कितने भी कार्मिक अकाउंट्स आए, बड़े बड़े आ जाए. आज सुबह ही मुझे एक बहन कह रही थी, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, दूसरी पहले ही रेडी वेट कर रही है, कहते ये कब खत्म होगा. सो ये खत्म नहीं होना है, ये खत्म नहीं होना है, ये कार्मिक अकाउंट है जो सामने आएंगे. लेकिन इक्वेशन राइट है तो पता है जीवन की जर्नी क्या है, पुराने कार्मिक अकाउंट को सेटल करते जाना और नए करने वाले कर्म पर ध्यान रखना. अब इसमें भी देखो, जो कहेगा भगवान की मर्जी से, वो अपने नए कर्मों पर भी अटेंशन नहीं रखेगा. लेकिन जिसको ये अवेयरनेस होगी अब सारा दिन कि कार्मिक अकाउंट कितनी पावरफुल चीज है, तो वो पुराने को तो सेटल करेगा ही, लेकिन प्रेजेंट में कितना अटेंशन रखेगा कि अब ना मेरे से कुछ किसी को दुख मिले, अब ना मेरे से कोई ऐसी बात हो जाए जो मेरे सामने फिर बहुत भारी होकर आए, डेस्टिनी चेंज हो जाएगी.
1: ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मिला सिस्टर, लेकिन हमें अगले एपिसोड में डिस्कस करना पड़ेगा. थैंक यू सो मच.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति. थैंक यू.
2: थॉट्स are influenced by information, past experiences and belief systems. Every situation will be perceived through the belief system. Anger is necessary. Happiness is an achievement. Stress is natural. Life is a competition are some of our belief systems today. Even one wrong belief system reduces the power of the soul. If we hold the belief system, anger is necessary, then we will use anger to get work done. Even if we decide to work peacefully, it will be temporary. We need to create a new belief system. Anger is damaging. Love is the way to get work done. When we experiment with a belief system, check if we are feeling lighter, health is improving, relationships are becoming simpler, and karmic accounts are settling. Then that belief system is right for us.
3: Namaskar, apan aikat ahat radio Puneri Awaz 107.8 FM. Me स्मिता जयकर आनंदी रहा, आनंद वाटा.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं, तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ये मर के अल्लाह रखा तेरा दत्ते वाला है है अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: ना अमर ना अकबर ना मैं ना अमर ना अकबर।

السلام علیکم.

0: मर के अल्लाह रखा तेरा रखे वाला है है अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: ना अमर ना अकबर नाम है ना अमर ना अकबर।

अल्लाह रखा तेरा शक्ति वाला।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या, यहां नहीं कर सकते। क्यों स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई, क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं, सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहाँ वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना MP छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। और मैं आपके बीच ज्ञान की कुछ बातें लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं, आज का विषय है हमारा, क्या सर्वश्रेष्ठ परमात्मा सर्वव्यापी है? तो आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। बात यह है कि एक दिन एक सुबह हमारे घर के आगे सड़क पर मैंने कुछ लोगों के इकट्ठे समूह को देखे, तो मैंने व्यक्ति से पूछा कि वहां पर क्या हो रहा है। पूछे जाने पर उस व्यक्ति ने मुझे जवाब दिया कि कुछ नहीं मैडम, उनके 7 साल के बच्चे को किसी ने मजाक में बंदर गधा कह दिया। तो इसे वे क्या क्यों गंभीरता से लेकर झगड़ा कर रहे हैं। तो इस घटना का उल्लेख यहाँ पर मैं इसलिए कर रही हूँ कि हमारे घर के छोटे से बच्चे को किसी ने मजाक में अगर बंदर या गधा संबोधित किया तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और उस सर्वश्रेष्ठ सर्वेश्वर परम पवित्र परमपिता परमात्मा को हम हर जगह

जीव आत्माओं में, हम में, तुम में, सुअर में, मगरमच्छ में, कछुए में, सांप में और कण कण में हम व्याप्त मान लेते हैं। क्या यह उचित है? कई सवाल मन में उठते हैं। इस तरह के कई सवाल हमारे मन में उठते हैं। जरा सोचे, मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार पवित्र आत्मा, पाप आत्मा, महात्मा, धर्म आत्मा, पुरुष, हाँ यहाँ तक कि पुण्य आत्मा, देव आत्मा कहलाता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर एक सर्वोच्च भगवान है तो वो हत्या, लूटमार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार आदि दुष्कृत्य कर सकता है क्या? प्रभु की महिमा सर्वोच्च है, सर्व के कल्याणी परमेश्वर द्वारा इस तरह के नीच कर्म संभव है क्या? यदि हम में परमपिता परमात्मा विराजमान है तो हम मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि का निर्माण करके पूजा, प्रार्थना, नमाज, वंदना इत्यादि क्यों करते हैं? यदि ऋषियों के अंदर भगवान है तो उन्हें भगवान की तलाश क्यों करनी चाहिए और मन की शांति के लिए हिमालय में भटकना ही क्यों चाहिए? अगर प्रभु हम में ही है तो दुख, दर्द, बीमारी आदि होने पर उनको याद करने की क्या आवश्यकता है? स्वास्थ्य, धन, रोजगार, परिवार की खुशी, शांति और संतोष के लिए हम प्रार्थना क्यों करते हैं? ऐसे कई सवाल मन में अवश्य उठते हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आकर फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए।

तो स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में और हम अपनी चर्चा इसी तरह जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो भगवान को सर्वव्यापी मानना केवल एक अंधविश्वास ही है, फिर परमात्मा को सभी जीवों में उपस्थित मानकर और परमात्मा के कई अवतार मान लेना कहाँ तक उचित है? क्या वो परम पवित्र परमात्मा गंदगी खाने वाले सुअर में भी है, मांस खाने वाले मगरमच्छ में भी है, क्या वे जहरीले सांप में भी है? वास्तव में भगवान को सर्वव्यापी मानना केवल एक अंधविश्वास ही है। क्या वे कोटि कांटों पत्थरों और कणकण में है? हाँ, कणकण में भी है, जिन्हें रास्ते में हम खुद उठा के फेंकते हैं ताकि किसी को लग ना जाए। हाँ, ऐसे ही चर्चा करते हैं, करते हाँ चिंतन करते चले तो यहाँ सिद्ध होता है कि सर्वश्रेष्ठ जो सर्वोच्च परमात्मा को सर्वव्यापी कहना उनका बहुत बड़ा अपमान करना है और उनके अस्तित्व के प्रति असम्मान है। तो यहाँ पर अगर माना जाए कि पंचभूत कहलाने वाले वायु अग्नि जल पृथ्वी आकाश में परमात्मा है तो यह वायु तूफान बनकर अग्नि एक ज्वाला बनकर जल एक सुनामी बनकर पृथ्वी भूकंप बनाकर और क्या करती है? आकाश तत्व प्रदूषण द्वारा दुख क्यों दे रहा है? भगवान कौन है और उनका निवास स्थान कहाँ है? तो उपरोक्त चिंतन में हमें यह एहसास होता है कि सर्वशक्तिमान भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो हमें यह जानना अति आवश्यक है सर्वोच्च भगवान कौन है और उसका निवास स्थान कहाँ है। वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ बाइबल कुरान गुरु ग्रंथ साहब आदि सब का सार यही कहता है कि सर्व आत्माओं का एक ही सर्वोच्च परम ज्योति परमात्मा है, परंतु उनके नाम और स्मरण करने की विधियां अलग अलग है। हम त्रिलोकीनाथ भगवान को शांति सागर हा? आनंद सागर दया सागर करुणा सागर गुणों के सागर

0: भक्तियों के सागर, कृपा सागर, क्षमा सागर कहकर उनकी महिमा करते हैं। जैसे यह स्थूल जगत शरीरधारियों का घर है, वैसे ही अशरीरी, अकाय, अभोक्ता, अयोनिज, अजन्मे परमात्मा का निवास, पांच तत्वों से परे सर्वोच्च घर परम धाम है, जिसे ब्रह्मा महातत्व या मूल वतन या शांति धाम भी कहा जाता है। हम सभी आत्माओं का सच्चा घर ही परम धाम है। तो हम कहाँ के निवासी हैं? परम धाम के हम निवासी हैं। हम आत्माओं का सच्चा घर कहाँ है? परम धाम ही है हमारा सच्चा घर। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर आकर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और आइए सुनते हैं इस गीत को।
1: ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, वो बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है।

गुलाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, हो बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, हो बड़ा जबरदस्त।

हो बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है, ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, वो बड़ा जबरदस्त।

0: छूत हमको समझे तो रखिए चले नहीं, वो अछूत हमको समझे तो रखिए चले नहीं, वो अछूत हमको समझे तो रखिए चले नहीं।
1: तो स्वागत है आपका फिर से ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में और हम अपनी आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। क्या सर्वश्रेष्ठ परमात्मा सर्वव्यापी है? तो भगवान जानी जाननहार है। अगर पिता के गुण स्वभाव और व्यक्तित्व

होते हैं तो पुत्र पिता जैसा कहा जाता है, मगर पुत्र को ही पिता कहना अमान्य है। अगर हम उस परमात्मा के सर्वगुण शक्तियों को धारण कर लेते हैं तो उन जैसे महिमा योग्य बन सकते हैं, परंतु हमको ही परमात्मा कहना अनुचित है। कहा जाता है कि वैद्यो नारायण हरि, इसका मतलब यह है कि एक चिकित्सक नारायण की तरह है जो बीमारी रूपी आपदा में व्यक्ति की इलाज करता है, मगर चिकित्सक को ही नारायण नहीं कह सकते हैं। जब एक गुरु ने अपने एक शिष्य को एक केला देकर कहा कि उसे इसे वो मतलब उस जगह पर जाकर खाए जहाँ कोई देखने वाला न हो, तब शिष्य ने क्या कहा, भगवान न देखे ऐसा कोई भी स्थान नहीं है। मतलब भाव यही है कि सर्वोच्च भगवान सब कुछ जानने वाला है, जाने जाननहार है, सभी के कर्म विकर्म सुकर्म को जानने में सक्षम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे सभी में विराजमान है। मतलब इसी तरह कहा जाता है जिंदगी हमेशा एक स्कूल की तरह है, एक ऐसा स्कूल जहाँ कोई किताब नहीं होती, न ही कोई शिक्षक होता है, यह एक ऐसा स्कूल है जिसमें सभी शिक्षक भी होते हैं और सभी विद्यार्थी भी हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते हैं और हमेशा सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जिंदगी की इस पढ़ाई में परीक्षा नहीं होती, परीक्षा भी होती है। हर परिस्थिति एक परीक्षा ही तो है जिसमें हर कोई सफल नहीं हो पाता। इसमें सफल वही होते हैं जो अपनी सीखने की प्रक्रिया जारी रखते हैं। कुछ लोग परिस्थितियों से घबराकर क्या करते हैं, हार मान लेते हैं, क्योंकि उनमें सीखने की प्रक्रिया कम होती है, इसलिए हमेशा हारते रहते हैं। अपने आसपास रहने वाले को शिक्षक मानकर हर एक से सीखते रहना ही हमारी सफलता का राज है। हर एक में कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है, आवश्यकता है स्वयं की और दूसरों की विशेषताओं को जानने की, और प्रत्येक व्यक्ति और परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखने की। जब तक जीवन है सीखने की प्रक्रिया जारी रखिए और जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को सफलतापूर्वक पार करिए। जिंदगी की हर राह पर क्या है, एक दौड़ है। जिंदगी का ये तजुर्बा बेतुड़ और बेजोड़ है। तो इसी के साथ हम अपने आज के कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं, और तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म। वन सेकेंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट

0: चतुर घोड़ा, ये क्या रहा घोड़ा चतुर, घोड़ा चतुर एक पे रहना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला का।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत

चल चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकत आहेत रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

किससे आउट हुआ, लोगों को डाउट हुआ, मेरी वजह से वो गया गया गया गया, किस्मत तो बदल

0: हम कहां तुम कहां हम कहां ताल कहां तम कहां तुम कहां हम कहां
1: ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ताते के ता

0: 一刻都。
1: 这里给我忙的还叫我忙个买猪包还什么

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणे की आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: इतिहास से, भूगोल से,
3: समाज से, संस्कार से,
2: आधुनिकता से और विचार से,
3: खूबियों से भरा अनोखा है मेरा भारत।
2: एक महान राष्ट्र है मेरा भारत,
4: अतुल्य भारत।
3: चलिए आपको बताते हैं
2: भारत की 69 ऐसी विशेषताओं के बारे में
3: जो बनाती हैं भारत को पूरी दुनिया से अलग
2: और प्रदान करती हैं हमें एक गर्वित भारतीय नागरिक होने का हक। क्या आपको पता है कि किसी भी देश में कार से की गई लॉन्गेस्ट जर्नी यानी सबसे लंबी यात्रा 31,798.2 किलोमीटर है। यह यात्रा भारत में ही की गई है और इसे करने वाले 3 भारतीय हैं जिनके नाम हैं आतिफ अब्दुल्ला, शीतल श्रीवास्तव और दीपक श्रीवास्तव। इस यात्रा को इन तीनों भारतीयों ने 30 अप्रैल 2015 से लेकर 7 जून 2015 तक संपन्न किया जिसे वे ड्राइव अगेंस्ट कैंसर कहते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य कैंसर डिटेक्शन और उसके ट्रीटमेंट के लिए फंड्स रेज करना था। भारत की विशेषताओं को करते रहिए सलाम।
3: पुणे की आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो। जय हिंद,
2: जय भारत।

चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

गिन गिन हर तकदीर देखी एक हंसता है दस रोते हमने जग की अजब तस्वीर देखी एक हंसता

किया है तो फिर निभाना, आज खुल के यूं आँख मिलाना, देखता रहे मुंह ये जमाना। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ जैसे गिरे शम्मा पे परवाना, तू भी आजा क्या करेगा जमाना। जैसे कोई टूटता है सितारा, झूम के या थाम ले हाथ हमारा। जैसे कोई मौज उठे वल खाके, आजा आजा आग जाल है।

साधन था। उसकी आंखों में हमेशा बाजू में ताकत और दिल में हिम्मत थी। बिजली की तरह नाचता हुआ मेरे पास आता था।

जन्नत है, जन्नत में क्या होगा, देखे यहाँ लाखों वहाँ तो एक खुदा होगा। आदम भी आदम है, इस बात में कम है, इसको बनाया

जब तक है दम बाकी तू आप ही पैमाना बन और आप ही साफी जिंदा वो दुनिया में रहा।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो,
0: जल रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो,
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हट जाए
1: हो जाए।

जो करता है पाता है। अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

0: मैं कहूंगी ना तुम्हें जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप मिल जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, जिंदू जिंदू।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

क्या समझे बिना पिए कोई, क्या समझे किसी का भेद निराला, बन जा तू मतवाला मतवाला मत।

के वो पहले बहुत शर्माएगी, मिलके वो पहले बहुत शर्माएगी।

आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का, मट्टी में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का।

मुखड़े से जुल्फ जरा सर कंगा, मुखड़े से जुल्फ जरा सर कंगा, सुलझेगा प्यार उलझ मैं जाऊंगा, पाके दिहाई बहुत बचताऊंगा, ऐसा सुकून कहाँ फिर पाऊंगा, और नहीं है ठिकाना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का, मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई